गीत मेरे होठों को दे गया कोई, कभी अजनबी थे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है तेरी कसम फिल्म से, आवाज अमित कुमार की।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि यानी 3 जुलाई 2026। सुबह के इस समय 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। आइए अब आपको विवरण देते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। श्री रामचरितमानस के तहत बालकांड का भाग 110 प्रसारित किया जाएगा, जिसका प्रसारण समय रहेगा 6:44। गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर और आज सवेरे कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30।

म्यूजिकल दिल्लगी प्रोग्राम हम आपके लिए लाएंगे सुबह 8:45 पर। विश्व दर्पण कार्यक्रम होगा सुबह 10:10 पर। दिल का मेल बॉक्स, आपकी पसंद पर आधारित इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह 10:30 पर। 11:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा मेरा वजूद का भाग 3।

तस्वीर कार्यक्रम में सुबह 11:25 पर आप जानेंगे हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के बारे में। एक कदम बुजुर्गों की ओर सीनियर सिटीजन पर आधारित इस कार्यक्रम को हमारे श्रोता सुन सकते हैं दोपहर 12:10 पर। अभिनेता राजकुमार पर आधारित होगा हमारा आज का कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। प्रसारण समय रहेगा 1:10 और उन्नत किसान कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर।

मन भावन कार्यक्रम होगा 3:10 पर और फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे शाम 4:10 पर। 4:30 पर परिक्रमा कार्यक्रम होगा। शाम 5:10 पर हम आपके लिए लाएंगे पानी पर लिखी कहानी वापसी। विश्लेषण कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर और मार्केट मंत्रा 6:30 पर। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:10 पर। सांझ ढले कार्यक्रम होगा 7:25 पर और मधुरिमा कार्यक्रम का आनंद लीजिए रात 8:10 पर। ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिश

0: विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sane Takayuchi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. In the India-Japan annual summit joint statement, both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April last year. They also noted the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front TRF. They also condemned in the strongest terms the terror incident in Delhi on 10th of November last year. The two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific. India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Both sides will strengthen bilateral cooperation in 5 key sectors: semiconductor, critical minerals, information and communication technology, clean energy and pharmaceuticals. The annual Sri Amarnath Yatra will begin today from both Pahalgam and Balthal routes in Jammu and Kashmir. The Yatra will culminate on August 28, coinciding with the festival of Raksha Bandhan. The first batch of pilgrims reached the twin base camps in Nunwan in Anantnag district and Balthal in Gandharbal district yesterday under tight security.

भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

साथियों, कहते हैं कि सच्चा प्रेम आसान नहीं होता, वो त्याग मांगता है, धैर्य मांगता है और सबसे बढ़कर अटूट विश्वास मांगता है। और जब यही प्रेम भगवान से हो जाए तो वो भक्ति बन जाता है, जिसका सबसे सुंदर उदाहरण है मीराबाई। सच ही तो है जो कहती हैं कि कठिन लगन की प्रीत रे, जिसे उन्होंने आत्मसात कर दिखाया।

साथियों, जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन मन की शांति कहीं पीछे छूट जाती है। ऐसे समय में प्रभु का नाम, एक छोटी सी प्रार्थना या दो पल का स्मरण हमारे भीतर नई ऊर्जा भर देता है, और भक्ति हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे साथ है।

सब किछ घर में ही भीतर बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। गुर परसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जीव। अर्थात सब कुछ शरीर रूपी घर में ही है, शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है। और जो व्यक्ति भगवान को हृदय से बाहर ढूंढता है, वह भ्रम में पड़कर भटकता रहता है। गुरु की दया से जिसने भगवान को हृदय में पाया है, वो अंदर और बाहर से सुखी है।

6:32 और 42 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी एफ एम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

साथियों, जीवन में माता पिता और गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि अपने आराध्य तक पहुंचने का मार्ग यही दिखाते हैं हमें। और भक्ति केवल मंदिर तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचानने का नाम है। कहते हैं कि जब मन में प्रेम हो, वाणी में मधुरता हो, कर्म में सेवा हो और हृदय में विश्वास हो, वहीं से सच्ची भक्ति का आरंभ होता है।

साथियों 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं इस वक्त भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण और अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय गान का। तो आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं इस सुंदर संगीतमय पाठ का और आनंद लेते हैं रामचरितमानस के इस गान का।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ का गायन। और अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का, क्योंकि कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है। लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ, क्योंकि अब देश और दुनिया का हाल हम जानेंगे समाचार बुलेटिन्स के जरिए। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन्स होंगे, और समाचारों के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी 7:10 पर कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को फिलहाल कार्यक्रम अर्पण से दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलती हूँ 7:10 पर। नमस्कार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेष् रूपेष् अभिव्यक्तिष् आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेष् अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां सम्बद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मन्त्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मन्त्रिणाम् एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मन्त्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मन्त्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मन्त्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेष् केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः अष्टाशीत्यधिक अष्टशतोत्तर त्रीणि सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू

0: कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said, the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions Mahasagar initiative provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Both sides will strengthen bilateral cooperation in 5 key sectors: semiconductor, critical minerals, information and communication technology, clean energy and pharmaceuticals. Election Commission of India ECI has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress AITC regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. In a statement, the Commission said it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Rituprato Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The Commission said both sides have been directed to submit the responses by 5:30 p.m. on Monday. Ministry of Panchayati Raj will organize a national workshop of state Panchayati Raj ministers in New Delhi today to deliberate on the recommendations of the 16th Finance Commission. The workshop will be chaired by Union Minister of Panchayati Raj Rajiv Ranjan Singh Lallan Singh in the presence of Union Minister of State Professor S.P. Singh Baghel. During the workshop, the discussions will focus on the operational guidelines for implementation of the 16th Finance Commission Rural Local Body Grants issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. The annual Sri Amarnath Yatra began this morning from both the Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day-long pilgrimage. Pilgrims travel to the holy Amarnath Cave, located at an altitude of nearly 3,888 meters, to seek the blessings of Lord Shiva and witness the naturally forced ice shivling. The yatra will culminate on August 28, coinciding with the festival of Raksha Bandhan.

0: जनाब, नई सुबह, नई उम्मीदें और नई मुस्कान लेकर हाजिर हैं हम 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर 7:11 और 18 सेकंड पर। ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। उम्मीद है कि आपकी सुबह अच्छी शुरू हुई होगी और अगर अभी तक चाय नहीं मिली है तो ईश्वर आपको धैर्य दे, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना चाय के तो कई लोगों का गुड मॉर्निंग भी बस मॉर्निंग ही रह जाता है। चलिए, चाय तो आपको अपने आप अपने लिए लेनी पड़ेगी फिलहाल, लेकिन आपकी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाते हैं हम रफी साहब की आवाज में 1958 में आई फिल्म अमरदीप के इस खूबसूरत गाने के साथ।
1: लेने से इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं,

जी हाँ, बेशक पैसे के यार तो सभी हैं, और पैसे के लिए ही तो सुबह से शाम करते हैं काम हम सभी। बट असली दौलत तो दोस्त पैसा नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य है। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने दुनिया भर की दौलत और बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखे हों, लेकिन कोई ऐसी बीमारी या ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो कि आप उसे एंजॉय न कर पाए, तो फिर वो धन दौलत और ऐशो आराम किस काम के। इसलिए कहते हैं कि फोकस कीजिए अपनी हेल्थ बनाने पर, और उससे भी ज्यादा बीमारियों से दूर रहने पर, जिसमें आपकी मदद करेंगी योग और एक्सरसाइज, और साथ साथ होगी अच्छी डाइट। बस आपको बनानी है एक हैबिट हर रोज अपने लिए आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा निकालने की, और वो समय कब निकालेंगे आप ये आपको डिसाइड करना होगा अभी। फिलहाल अभी 7:16 पर आपके फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात में हम जुड़े हुए हैं आपके साथ 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर, और आशा रफी की आवाज में एक खूबसूरत गाना मेरी प्लेलिस्ट में मचल रहा है आप तक पहुंचने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गाने को एंजॉय करते हैं। 7:16 और 22 सेकंड हो गए आपसे इसी तरह बात करते करते।

0: चलना,
1: क्यों माने
0: संभल के चलना,
1: क्या जाने
0: यही तो मौसम
2: जी हाँ जनाब, मौसम मस्ती में जीने का जरूर है और बादल भी दिख रहे हैं, बालों के तो नहीं लेकिन बाहर बादल हमें दिखाई दे रहे हैं फिलहाल आज भी। और मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि आज थोड़ा थोड़ा धूप छांव का खेल रहेगा। हालांकि बारिश के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिलहाल तो बारिश नहीं हो रही है, किसी एरिया में हो सकता है कि बारिश हो भी रही हो लेकिन मौसम विभाग के अनुसार मानसून बस हमारे आसपास ही है। और मौसम मस्ती में जीने का जरूर है, मौसम म्यूजिक एंजॉय करने का भी है, मौसम चाय पकौड़े का भी है लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी हमें बहुत परेशान कर रही है कई दिनों से। और आज का फोरकास्ट भी यही कहता है कि आज भी ह्यूमिडिटी आपको परेशान करेगी। हवा की गति रहेगी करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। और पार्टली सनी कहा गया है, यानी बीच में कहीं धूप कहीं छांव कहीं बादल आपको शायद मिल सकते हैं और हो सकता है कि बारिश की थोड़ी बहुत फुहार भी हो जाए। बट बात कुल मिलाकर यही है कि ये जो मौसम है ना, ये आपको अफेक्ट भी करता है, खासतौर से नाक और गले की जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं लोगों को इस वक्त। और शायद मेरी आवाज़ में भी आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा क्योंकि पिछले दो दिन से मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि नाक बंद है और गले में थोड़ी सी खराश है। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि आप दवाइयों की जगह अगर थोड़ा सा अपनी डाइट में या घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो काफ़ी हद तक इनसे बचा जा सकता है, इन इन्फेक्शन से। और दवाई लेने की भी ज़रूरत जब तक ना हो तब तक आप इनसे काम चला सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ऑफकोर्स आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर सबसे पहली चीज़ जिसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए वो है हाइजीन, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, इसमें बारिश के कारण जब हम भीग जाते हैं तो गीले कपड़े और गीला फुटवियर सबसे पहले हमें यही अफेक्ट करता है। और अपनी डाइट में अगर हम विटामिन सी को शामिल कर लें तो काफ़ी हद तक हम गले वाले जो इन्फेक्शन है इनसे बच सकते हैं। तुलसी और अदरक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि हम बोलें कि वन साइज फिट्स ऑल, बट एब्सोल्युटली ये बात ज़रूर हम सबको ध्यान रखनी है कि चाहे कैसे भी हम इसे मैनेज करें, कोशिश करनी है कि हम अपनी इस जो हेल्थ है, जो मॉनसून के टाइम हेल्थ है, इसको मेंटेन करें और इन्फेक्शन से बचें ताकि हम बारिश का पूरा मज़ा ले पाएं। फिलहाल 7:22 पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर और गोल्ड स्टूडियो से। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और एक और गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में और साथ में आशा ताई की आवाज़ में आपके लिए आगे बढ़ रहा है प्रोग्राम में।
3: हुस्न जब जब

आशा रफी की आवाजों में ये गाना आपने सुना, फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से। और इसी तरह का बेहतरीन गोल्डन म्यूजिक रहेगा सारा दिन आपके साथ 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। और कौन कौन से प्रोग्राम्स आप तक पहुंचेंगे अब आपको ये बताते हैं। तो 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में आपके साथ रहूंगी मैं, और 9:10 पर म्यूजिकल दिल्ली का दूसरा सेगमेंट होगा। 10:30 दिन में आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, और 11:10 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद। 11:25 पर तस्वीर में आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में लेकर चलेंगे। 12:10 पर आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर। 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज अभिनेता राजकुमार के बारे में बात करेंगे। और 2:30 से 3 बजे तक आप सुनेंगे प्रोग्राम उन्नत किसान, जिसमें आज का विषय रहेगा अमरूद की बागवानी से उद्यमिता, बाग स्थापना से प्रसंस्करण तक। और इसमें शामिल होंगे एक्सपर्ट डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पूसा संस्थान नई दिल्ली में। 5:10 पर पानी पर लिखी कहानी में आज की कहानी रहेगी वापसी। 6:30 आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा, और 7:25 पर सांझ ढले। 8:10 पर मधुरिमा, 10:30 हर सिंगार, और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत। और फिलहाल लता रफी की आवाज में इस खूबसूरत गाने के साथ मैं आपको छोड़ रही हूँ यहीं। 8:45 पर मिलती हूँ आपसे फिर म्यूजिकल दिल्ली में एक बार। इसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड पर एक सुहावनी और मनमोहक प्रभात में कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी श्रोताओं को का एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम आज सवेरे के इस अंक में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग लिसनर्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल यू गाइज ट्यून इन टू अस फॉर आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो वी हैव लॉट्स टू शेयर विद यू ऑल, सो स्टे विद अस, एंजॉय द प्रोग्राम। सो मुकेश, लेट्स स्टार्ट विद सम न्यूज हेडलाइंस।
0: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया है। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
1: Election Commission of India, ECII, sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. In a statement, the commission said it has written a separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritobrata Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The commission said both sides have been directed to submit their responses by 5:30 PM on Monday. The development comes amid a dispute within the Trinamool Congress over the party's organizational structure and the authority to act on its behalf before the Election Commission. The ECI has not expressed any view on the merits of the rival claims and has sought written responses from both factions before proceeding further in the matter.
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतर मार्गो से शुरू हो गई है।
2: नमामि आदिशंकरम, नमाम्य हम महेश्वरम, डमा डमा नमाम्य हम श्री अमरनाथ ईश्वरम।
0: पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन सम्पन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। पहले जत्थे को कल सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया था। इस जत्थे में 4,822 यात्री हैं, जिनमें से 22,510 पहलगाम मार्ग से और 2,312 बालतल मार्ग से यात्रा करेंगे। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो अमरनाथ जाने वाले सभी यात्रियों को इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं आकाशवाणी की तरफ से।
1: Governor of Bihar, Lieutenant General Retired Syed Attar Hasnain and Minister of State for External Affairs Pavitram Margarita will visit Iran today to attend the funeral ceremony of late Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayed Ali Khamenei. Minister of External Affairs said the high-level representation in the ceremony underscores the importance of civilizational ties, including people-to-people connection between the two countries, providing a robust foundation to political and economic engagements.
0: और अब बात करते हैं खेलों की खबरों की। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, जबकि दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में पांचवें स्थान पर है। श्रीलंका के दौरे से पहले भारत इंग्लैंड के साथ वर्तमान में जारी पांच मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला समाप्त करेगा। इसके बाद टीम जिम्बाब्वे के साथ तीन मैचों की T20 श्रृंखला के लिए रवाना होगी। इस बीच मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मैच बुधवार को चेस्टर ले स्ट्रीट में वर्षा के कारण रद्द कर दिया गया था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच कल मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और अब जानते हैं उधर फीफा विश्व कप में क्या कुछ हो रहा है सुभद्रा से।
1: यस मुकेश, इन द फीफा वर्ल्ड कप स्पेन डिफीटेड ऑस्ट्रिया 3-0 इन द राउंड ऑफ 32 एट लॉस एंजेलिस स्टेडियम इन इंग्लवुड कैलिफोर्निया टू बुक अ प्लेस इन द राउंड ऑफ 16। मिखेल ओयरज़बाल स्कोर्ड ट्वाइस इन द 36th एंड 89th मिनट्स व्हाइल पेड्रो पोरो एडेड द सेकंड गोल इन द 66th मिनट। मीनवाइल पुर्तगाल आल्सो एडवांसेस द राउंड ऑफ 16 आफ्टर डिफीटिंग क्रोएशिया 2-1 in their round of 32 match in Toronto, Canada. Portugal will face Spain in the round of 16 in Dallas on Tuesday. Later today, Switzerland will face Algeria in Vancouver at 8:30 a.m. IST, while Australia will take on Egypt in Arlington at 11:30 p.m. IST. Yesterday, Belgium, the United States, England also reached the round of 16. England will play co-host Mexico on Monday, while the United States will face Belgium on Tuesday. France, Norway, Canada, Morocco, Brazil and Paraguay have also qualified.
0: और अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का। सबसे पहले जानते हैं हाल चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु की खबरों का सुभद्रा से।
1: यस मुकेश, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। Climate Action Month, which is to be held this year, will focus on short-life electronic accessories and their environmental impact alongside ocean science, green employment opportunities. The Citizen Consumer and Civic Action Group will have the fifth edition, which will feature a month-long program of public events and technical sessions. All the events will be held in Chennai, and among the programs for this weekend is a nature walk in the evening at Adyar Eco in association with the Tea and Wetlands. We have another news from Chennai. A major fire broke out near the Navy's 2N detachment area at an outdoor storage facility on Pudupakkam forest land near Kalpakkam. The fire engulfed an inventory of 520 rubber-coated iron desalination water pipes belonging to the Chennai Metro Waterworks. The fire was sighted by the Navy's 2N detachment personnel and reported immediately to civil fire authorities. The flames spread rapidly as strong winds fanned the highly combustible rubber material. The fire was brought fully under control in a timely manner and no casualties were reported.

0: Moving to Bengaluru now, Greater Bengaluru Development Minister Krishna Baira Gowda has said that the ongoing footpath clearance drive is aimed at relocating, not evicting, street vendors from major arterial and sub-arterial roads to ward roads, while ensuring that pedestrian movement remains safe and unobstructed. He directed officials to remove encroachments, abandoned vehicles, illegally parked vehicles, ramps and other obstacles from footpaths in a phased manner. Reviewing the progress of the drive through a virtual meeting, the minister instructed officials to immediately begin footpath development works in areas cleared of encroachments and continue the clearance drive across the city. Hyderabad News now. Next generation therapeutic formulations integrating artificial intelligence, nanotechnology and advanced biomedical research are paving the way for safer, targeted treatments for autoimmune diseases, skin disorders and chronic wounds. Developed through extensive preclinical evaluation animal studies at the BRIC Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics, BRIC-CDFD Technology Incubator by Hyderabad-based biotechnology startup AcuBiosys Private Limited, these innovative medical solutions aim to address critical unmet clinical needs. Two new patented AI-driven topical formulations have entered the market, manufactured in India under Ayush, regulatory compliance and good manufacturing practices standards. The first formulation, BOCUGL, utilizes nanotechnology for the management of psoriasis, atopic dermatitis and melasma. The second, AZBECO, an advanced wound care treatment engineered to accelerate the healing of chronic ulcers. To safeguard the global commercial potential of these technologies, patent applications have been filed in India, China and the United States. Sand Mukesh, over to the next three metro cities news.
1: जी बिल्कुल सुभद्रा, इस कड़ी में हम शुरुआत करते हैं दिल्ली से जुड़े समाचारों की। तो दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। दिल्ली में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन और उसके अद्यतन के लिए वर्तमान मतदाताओं को पहले से छपे दो दो प्रपत्र वितरित करेंगे। इसी क्रम में बूथ स्तर अधिकारियों ने रिठाला और आरकेपुरम, मेहरौली, मंगोलपुरी सहित राजधानी के अन्य स्थानों पर घर घर गणना प्रपत्र वितरण का कार्य किया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और नवाचारकर्ताओं को एक साझा मंच लाकर दिल्ली की वास्तविक नागरिक और शहरी चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित समाधान तलाशना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में 2.5 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 5,000 से अधिक तकनीकी प्रस्तावों का विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया और अंतिम चरण में देश भर से चुनी गई शीर्ष 60 टीमों ने अपने कार्यशील प्रोटोटाइप और नवाचारों का प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राजधानी के सबसे पुराने जल शोधन केंद्र को अब आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1935 में स्थापित चंद्रावल जल शोधन केंद्र अब 105 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता वाला जल शोधन केंद्र बन रहा है, जिसमें ग्रेन्यूलर एक्टिवेटेड कार्बन, ओजोनेशन और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। जल बोर्ड ने बताया है कि लगभग 75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रही इस परियोजना का 82% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने से करीब 22 लाख नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित पेयजल का लाभ मिलेगा। इस वर्ष सितंबर तक शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो भिवंडी टीईटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी कपिल दहिया को जम्मू से गिरफ्तार किया गया। दो अन्य आरोपी सोनू सिंह और मिथुन सिंह को बिहार के पटना से हिरासत में लिया गया। तीनों आरोपियों को भिवंडी अदालत में पेश किया गया। अब तक इस मामले में अगर बात की जाए तो कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और महाराष्ट्र के उच्च और

तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने प्रथम वर्ष के डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया कैप के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब तक 161,786 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। संशोधित सीएपी अनुसूची, प्रवेश दिशा निर्देश, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन सुविधा तकनीकी शिक्षा निदेशक

0: प्रख्यात कलाकारों को सम्मानित करने के लिए आशा भोंसले संगीत लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार शुरू करने का भी निर्णय लिया है। अगर बात की जाए कोलकाता की तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और सुभद्रा के साथ। अब जानते हैं आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के मौसम की।
1: चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मोस्टली क्लाउडी स्काई विद द चांस ऑफ स्कैटर्ड आफ्टरनून थंडर स्टॉर्म्स। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 37। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मोस्टली क्लाउडी weather with a chance of afternoon thunderstorms. Minimum temperature was 21 degrees Celsius. Maximum will be around 28 degrees Celsius. And Hyderabad again is expected to have cloudy skies with a few showers, especially early in the day, and increasing winds. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees Celsius and a maximum of 29 degrees Celsius. And what about the other cities?
0: जी बिल्कुल, इधर राजधानी दिल्ली में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उधर अगर मुंबई की बात करें तो वहां भी आज कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगर बात की जाए कोलकाता की तो शहर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब बात करते हैं सुभद्रा, आज कार्यक्रम आज सवेरे में आज के दिन की विशेषता के बारे में।
1: यस,
0: तो आज 3 जुलाई है। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: यस, इट इज ऑफ कोर्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव एम्ड एट कर्टेलिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स।
0: ये दिवस हमें प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर संकट की याद दिलाता है और उससे किस तरह से हम बच सकते हैं उसके निपटान के मार्ग खोजने का भी ये दिवस हमें अवसर उपलब्ध कराता है।
1: प्लास्टिक फ्री लाइफस्टाइल इज द नीड ऑफ आवर टाइम्स, लाइक नीड ऑफ द आवर। सो लेट्स कीप दिस इन आवर माइंड्स। प्लास्टिक पोल्यूशन इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस द वर्ल्ड फेसेस टुडे। सो ऑल वी नीड टू डू इज थ्रो अवे ऑल योर प्लास्टिक बैग्स, सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड विथ यू नो अदर ऑल्टरनेटिव्स यू हैव सो मेनी।
0: अगर हम बात करें प्लास्टिक की तो प्लास्टिक एक तरह से मनुष्य के लिए सुविधा का कारण है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखें तो ये पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी के लिए घोर संकट बन के उभरा है।
1: That तो is true. Yes, of
0: ये
1: course.
0: समय की वर्तमान समय की मांग है कि प्लास्टिक के बैग्स को जितना हो सके से नो टू प्लास्टिक।
1: यस ऑफ कोर्स, से देयर आर हेल्थी अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल।
0: भी बिल्कुल उसके लिए अपने पास बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि जूट का थैला हम अपने साथ रख सकते हैं। कागज का जितना हो सके हम उतना अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।
1: दैट रिमाइंड्स मी आई नीड टू थ्रो दिस आउट, नो दिस प्लास्टिक वाटर बॉटल ऑफ माइन।
0: जितना हो सके, बिल्कुल जितना हो सके, मैंने कहा जितना हो सके। तो श्रोताओं प्लास्टिक का जैसा कि हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में कि कम से कम यूज करें और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में अपना अपेक्षित योगदान दें।
1: यस, अब मूविंग ऑन टू द हिस्ट्री सेक्शन,
0: बिल्कुल
1: the events of the day.
0: Bilkul.
1: We are going to the year 1661. The archipelago of Mumbai was transferred to the British crown via the Anglo-Portuguese treaty. As part of Catherine of Braganza's dowry to King Charles II, this acquisition served as a cornerstone for establishing British imperial commercial power in India. And in 1884, Dow Jones and Company published the world's first stock index, originally known as the Dow Jones Railroad Average.
0: अगर हम बात करें 1989 के बरस की तो कोलकाता में विद्यासागर सेतु का निर्माण आज ही की तारीख को शुरू हुआ था और 2004 में मारिया शारोपोवा ने विंबलडन महिला एकल का खिताब भी आज ही की तारीख को अपने नाम किया था। इसके अगले बरस यानी कि वर्ष 2005 में महेश भूपति और मैरी पियर्स ने भी विंबलडन टेनिस का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीता था।
1: And yes, and also 1985, the classic science fiction comedy Back to the Future was officially opened in American theaters. The

0: फिल्म बिकेम द हाईएस्ट अर्निंग फिल्म ऑफ द ईयर।
1: जी बिल्कुल श्रोताओं, अब समय है उन विशेष व्यक्तित्वों को याद करने का जो आज के ही दिन दुनिया में आए, जिन्होंने आज के दिन इस जगत को अलविदा कह दिया या आज जिनका जन्मदिन है। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं हंसा मेहता की। आज उनकी जयंती है। समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के रूप में वे प्रसिद्ध रही। उन्हें वर्ष इनके पिता मनुभाई मेहता बड़ौदा और बीकानेर रियासतों के दीवान थे। हंसा मेहता का विवाह देश के प्रमुख चिकित्सकों में से एक गांधी जी के निकट सहयोगी जीवराज मेहता के साथ हुआ। उन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, आज ही कैप्टन मनोज पांडे ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के इस वीर सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दी।

कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने दिलेरी के साथ कई हमले किए। दुश्मन के एक के बाद एक ठिकानों को उन्होंने अपने कई हमलों से निस्तनाबूद किया। नतीजा युद्ध का रहा कि भारत कारगिल पर विजय पताका लहराने में कामयाब रहा। कारगिल युद्ध के दौरान मनोज पांडे 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन में कैप्टन थे। कंधे और पैर पर गोली लगने के बावजूद वो दुश्मन के बंकर में घुसे। उन्होंने अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए अगले 22 दिन तक दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम किया। इस दौरान कैप्टन मनोज पांडे बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। 3 जुलाई 1999 को वो 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर गए। उन्हें सरकार ने परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया है।

0: तो जैसा कि आप पार्श्व में बज रहे कवि प्रदीप के इस गीत को सुन रहे हैं कि कैप्टन मनोज पांडे जैसे कितने ही ना जाने इस देश के वीर सपूत हैं जिन्होंने हमारे लिए, हम देशवासियों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके इस सम्मान को बिल्कुल सम्मान दें।
1: Yes, God bless them all. And friends, to 1928, today is the birth anniversary of M.L. Vasanthakumari, who was a Carnatic musician and playback singer for film songs in many Indian languages, a prime disciple of the legendary G.N. Balasubramaniam. She was the youngest among the established musicians of that era and was the youngest awardee of the most prestigious award in Carnatic music, Sangeetha Kalanidhi. Here's a film song, friends, an oldie taken from the Tamil film Mandiri Kumari.

श्रोताओं, आज अभिनेता राजकुमार की भी पुण्यतिथि है। राजकुमार ने भले ही कम फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों से उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। उन पर फिल्माया गया फिल्म नील कमल का ये गीत आज भी लोगों की जबान पर है।

राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था और फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी। राजकुमार ने सौदागर, मदर इंडिया, पैगाम, दिल एक मंदिर, वक्त, लाल पत्थर, तिरंगा जैसी हिट फिल्में की हैं। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे। आइए सुनते हैं उन पर ही फिल्माई गई एक फिल्म सौदागर से ये गीत।

0: And friends, today is the birthday of Adhoor Gopalakrishnan, film director, scriptwriter, producer, and is regarded as one of the most notable filmmakers in India. With the release of his first feature film, Swayamvaram, Gopalakrishnan pioneered the new wave in Malayalam cinema during the 1970s. And of course, he got several awards, including the Padma Vibhushan, Padma Shri, and Dada Saheb Phalke Award for his valuable contributions to Indian cinema. He was born this day in 1941 in Manadi, the kingdom of Travancore, British India. Now it's called Patnamthitta, Kerala. And today is also the birthday of Harbhajan Singh, a player of passion with talent to match. Harbhajan, India's most successful off-spin bowler. He turns 46 years of age. And sharing the same birthday is Sir Richard Hadlee from New Zealand, who is widely regarded as one of the greatest all-rounders in cricket history and among the very finest fast bowlers.
1: और अब चलते हैं फिल्मों की दुनिया में जिनका आज बर्थडे है उनकी तरफ. तो आज जन्मदिन है प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता दिग्मांशु धूलिया का. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शेखर कपूर निर्देशित फिल्म बैंडिट क्वीन से की थी. बतौर अभिनेता दिग्मांशु ने अपने करियर की शुरुआत अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर से की. इस फिल्म ने दर्शकों के सिर चढ़कर खूब बोला. और इसके साथ ही आज भारती सिंह भी अपना जन्मदिन मना रही हैं. उनका आज 42वां जन्मदिन है. अपने ह्यूमर से जनता को हंसाने वाली कॉमेडियन भारती सिंह का करियर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नामक एक कॉमेडी रियलिटी शो से शुरू हुआ, जहां उन्होंने एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया. इसके बाद उन्होंने कई कॉमेडी शोज में काम किया, जैसे कि कॉमेडी सर

0: सर्कस कॉमेडी, सर्कस महासंग्राम और कॉमेडी नाइट्स बचाओ, उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया है। तो ये थी भारती सिंह, जिन्होंने अपने ह्यूमर से दर्शकों को खूब हंसाया। तो इसी के साथ मुकेश और सुभद्रा को भी इजाजत दी दिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की, और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए अपने,
1: एंड डोंट यूज प्लास्टिक,
0: बिल्कुल
1: स्टे अवे फ्रॉम प्लास्टिक।
0: जैसा कि सुभद्रा कह रही हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, और
1: यस
0: प्लास्टिक को जितना हो सके अपने जीवन में से हटाकर फेंकें, और उसके एवज में कुछ अच्छे विकल्प अपनाएं जो हमारी दिनचर्या को बेहतर करें।
1: Yes, stay tuned for coming up now with Samachar Prabhat, the Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के

0: क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने

और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

दो। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 और 10 सेकंड पर गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

वेल जनाब, हम भी आपसे प्यार करने वाले हैं। 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं इस वक्त म्यूजिकल दिल लगी, और आपका प्यार ही है जो हमें मजबूर करता है कि हम रोज आपसे मिलने चले आते हैं। लेकिन बात पर्दे की करें तो पर्दा पड़ जाता है हमारी बुद्धि पर जब हम गुस्से में होते हैं, है ना। और हर बार तो नहीं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि छोटी छोटी बातों पर जब हमारा रिएक्शन टाइम कम होने लगता है, पेशेंस कम होने लगता है, तो हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन ये होती है जो हम सबके साथ होती है हर रोज़ लाइफ में, कि हम ऑफिस के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, समय हो रहा है, चाय गैस पर रखी हुई है, इतने में किसी काम के लिए पीछे से पतिदेव की आवाज़ आए और उसी समय दरवाजे पर घंटी बजे और बाथरूम से बेटा टॉवल मांग ले, तो बेचारे पत्नी किस किस को अटेंड करेगी। और अक्सर सब कुछ परफेक्टली करने के चक्कर में हम सारा लोड अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है और गृह युद्ध छिड़ जाता है। ये हम सब के साथ होता है कभी ना कभी। इसलिए कहते हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन करें चीज़ों को कभी कभी, ताकि एक रिफ्रेश बटन की तरह हम भी वापस उसी एनर्जी और जोश से चलें अपने रूटीन वाले सफर पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

8:56 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिलगी और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और वैसे आपने दोस्त अगर गांव का कोई पुराना घर देखा होगा तो फिर नोट किया होगा कि उसके दरवाजे काफ़ी छोटे और नीचे होते थे, और क्यों होते थे इसका भी कारण है। ऐसा इसलिए होता था कि पुराने समय में आज की तरह ना तो 24 घंटे बिजली हुआ करती थी और ना ही उन लोगों के पास उस वक्त एसी या हीटर खरीदने की सुविधा होती थी, तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए दरवाज़ों का आकार अक्सर छोटा रखा जाता था ताकि गर्मी के मौसम में गर्म हवा बाहर से अंदर ना आ सके और सर्दी के मौसम में छोटे दरवाज़ों के कारण घर गर्म रहता था और वेंटिलेशन भी बना रहता था, और सुरक्षा से जुड़े कारण भी थे और दरवाजे की मजबूती भी, क्योंकि मिट्टी की दीवारें होती थीं तो छोटे दरवाज़ों की वजह से उन पर वेट कम पड़ता था, और सामाजिक कारण ये था कि प्राइवेसी बनी रहती थी। लेकिन सांस्कृतिक कारण क्या था, वो ये था कि जब व्यक्ति झुक कर किसी के घर में प्रवेश करता है तो वो अपना अहंकार बाहर छोड़कर आता है, ऐसा मानना होता था उस वक्त लोगों का। और बात सही है, क्योंकि अगर हम अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करें कि अहंकार को अपने से दूर रखें और जीवन में शिकायतें कम और शुक्रिया अदा करना ये भाव ज़्यादा रखें तो जीवन ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल ज्ञान की बातें बाद में करेंगे, आपको सुनवाती हूँ एक खूबसूरत गाना और इसी के साथ देती हूँ आपसे इजाज़त, क्योंकि म्यूज़िकल दिल्ली का ये जो पहला सेगमेंट है ये अपने समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि समाचारों के बाद म्यूजिकल दिल्ली का दूसरा सेगमेंट भी होगा आपके साथ 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। सो टिल देन कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक, और आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ आपसे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार के विवाद में चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश द्वारा संचालित होते हैं, जिसके अंतर्गत आयोग निर्णय लेने से पहले प्रतिद्वंद्वी दावों, सहायक दस्तावेजों और विवाद से जुड़े गुटों की दलीलों की जांच करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं

दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है सुबह के 9:11 और 1 सेकंड। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी में।

दोस्तों, ज़िंदगी हर सुबह हमें एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का और अपने सपनों को सच करने का। अगर सुबह अच्छी सोच के साथ शुरू हो तो पूरा दिन अच्छा बीतने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए बेहद ही ज़रूरी है कि आप बीते दिन की सारी बातें, खासकर नेगेटिव बातें, भूल जाएं, क्योंकि अगर आपका मन, आपका दिमाग पिछली बातों में घूमता रहेगा तो आप आज सारे दिन के छोटे छोटे महत्वपूर्ण फैसले सही ढंग से नहीं ले पाएंगे और इसका असर आपकी पूरी दिनचर्या पर पड़ जाएगा। तो भाई, बीती बातों की चिंता छोड़ दीजिए और निकल पड़िए मेरे साथ इस सुहाने सफर पर, जहां मैं आपको सुनवाऊंगा खूबसूरत गीत और साथ ही बताऊंगा आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म काला पत्थर से, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत राजेश रोशन का और बोल साहिर लुधियानवी के।

दोस्तों, हर दिन अपने साथ कोई ना कोई नई सीख, नई प्रेरणा और नया संदेश लेकर आता है। और आज 3 जुलाई का दिन भी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मना रही है, यानी एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि अगर धरती को मुस्कुराते हुए देखना है तो प्लास्टिक की आदत को बदलना होगा। दोस्तों, हम अक्सर बाजार जाते हैं और बिना सोचे समझे प्लास्टिक की थैली ले आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हम केवल 5 मिनट करते हैं, उसे पूरी तरह नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यही प्लास्टिक जब नदियों में पहुंचता है तो समुद्र को प्रदूषित करता है और बेजुबान जानवरों के लिए भी खतरा बन जाता है। तो क्यों ना आज एक छोटा सा ही संकल्प लिया जाए, क्योंकि इसके लिए आपको कोई बड़ी क्रांति लाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस स्वयं को बदलने की। तो आइए हम सभी ये संकल्प करें कि आज से हम प्लास्टिक नहीं बल्कि किसी कपड़े या जूट के थैले का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे।

फिल्म अनाड़ी से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में, संगीत आनंद मिलिंद का और बोल समीर के।

दोस्तों आज यानी 3 जुलाई को भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे सितारे का जन्मदिन है जिन्होंने अपनी शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को चौंका दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह की। 24 मार्च 2000 कोलकाता का ऐतिहासिक टेस्ट मैच, और इस दिन हरभजन ने रच दिया था इतिहास। वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। ये उपलब्धि आज भी भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। हरभजन सिंह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारत को कई यादगार जीत दिलाई। वे 2007 के T20 विश्व कप और 2011 के एक दिवसीय विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के अहम सदस्य भी रहे। उनकी जुझारू सोच, आत्मविश्वास और टीम के प्रति समर्पण हर युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है। आज उनके जन्मदिन के इस खास अवसर पर FM गोल्ड के पूरे परिवार की ओर से हरभजन सिंह को हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें, खुश रहें और खेल जगत में अपनी नई भूमिकाओं के माध्यम से युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते रहें।

ये खूबसूरत गीत आप ताल फिल्म से सुन रहे थे, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल आनंद बख्शी के और संगीत ए आर रहमान का।

दोस्तों, दिल जब खुश होता है तो हमें हर चीज प्यारी लगने लगती है। वही बातें, वही चीज जो कल तक हमें परेशान कर रही थी, आज उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। इससे साफ जाहिर है कि खुशी चीजों में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है, और इसके लिए जरूरी है कि हम छोटी छोटी बातों में खुशियों को ढूंढना सीख जाएं। देखिए, हम हर चीज को, हर व्यक्ति को अपने अनुसार नहीं बदल सकते, इसलिए जरूरी है कि हम खुद को ही परिस्थितियों के अनुसार बदलना सीख जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर गुलदस्ते की तरह बन जाता है।

0: हिना फिल्म से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत रविंद्र जैन का और बोल रविंद्र जैन के। दोस्तों, अगला प्रोग्राम और कुछ खास बातें आप तक पहुंचाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम म्यूजिकल दिल्ली की सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ।

जाने वाली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी मातृत्व लाभ योजना है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 से 6,000 तक की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना, महिलाओं को आराम करने का अवसर देना और माँ एवं बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना है। नए नियमों के अनुसार इस योजना का लाभ परिवार के पहले दो बच्चों तक मिलता है। पहले बच्चे के जन्म पर कुल 5,000 की सहायता राशि दो किस्तों में दी जाती है और दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 की सहायता राशि एक बार में ही यानी एक मुश्त ही दे दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है लिंगानुपात को सुधारना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। इस योजना का लाभ पाने के लिए आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे इस खूबसूरत गीत के बाद।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म प्रेम रोग से, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल नरेंद्र शर्मा के।

दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए है। इसके लिए जरूरी है कि महिला की उम्र कम से कम 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए या वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST वर्ग की होनी चाहिए। इसके साथ ही वो BPL राशन कार्ड धारक, ई श्रम कार्ड धारक या मनरेगा जॉब कार्ड धारक होनी चाहिए। ध्यान रहे, जो महिलाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से नौकरी कर रही हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकता। इस योजना का लाभ पाने के लिए आप बच्चों के जन्म के 270 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दो तरीके हैं, एक ऑफलाइन माध्यम और दूसरा ऑनलाइन माध्यम। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आवेदन फॉर्म नंबर 1A भरें। इसके लिए आप आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता की मदद भी ले सकते हैं। और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आप PMMVY के आधिकारिक नागरिक पोर्टल पर जाकर खुद भी पंजीकरण कर सकते हैं। बात करें इसके लिए जरूरी दस्तावेजों की, तो आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। दूसरा, मां और बाल संरक्षण कार्ड भी आपके पास होना जरूरी है। तीसरा, बैंक या डाकघर की पासबुक की जानकारी भी आपको देनी होगी। और इसके साथ ही आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ध्यान रहे, इस योजना के लिए आवेदन बिल्कुल मुफ्त यानी निशुल्क है। तो ये थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गीत।

0: फिल्म शक्ति से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत आर डी बर्मन का और बोल आनंद बख्शी के। दोस्तों, जुलाई का महीना अपने साथ बारिश की फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और ढेर सारी यादें लेकर आता है। ये मौसम सिर्फ धरती को ही नहीं बल्कि दिलों को भी तरोताजा कर देता है। मई जून की तपती गर्मी के बाद जब जुलाई का महीना आता है तो ठंडी हवाएं हल्की हल्की फुहारों के साथ जब हमारे तन बदन को स्पर्श करती हैं तो उसका सुखद अनुभव शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब संगीत का साथ हो तो सफर और भी खूबसूरत बन जाता है।
1: तू भी ना आती।

तो दोस्तों, ये था आज का खूबसूरत कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। उम्मीद है कि आज की दिलचस्प बातें, महत्वपूर्ण जानकारी और खूबसूरत नगमे आपको जरूर पसंद आए होंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा ठीक 10:30 पर कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स के साथ, जहां हम शामिल करेंगे आपके ईमेल्स और आपके द्वारा भेजे गए संदेश, और साथ ही आपको सुनवाएंगे आपकी फरमाइश पर आपके पसंदीदा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुस्तफा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए रूस के हमलों में 27 लोग मारे गए। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: और आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे संवाददाता सखलीन अख्तर के पास।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, AI, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक DNA को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3: The leaders reflected on the very strong foundation.
4: दोनों नेताओं ने हिंदी

0: प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि तथा स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया है। ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।
1: इन द इंडो-पैसिफिक एंड इवन बियॉन्ड इज कंसर्न।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। इससे पहले बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने अमरीका को कड़ी चेतावनी दी। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई इसराइल के निशाने पर हैं। श्री अराकची ने कहा कि ईरानी नेतृत्व के खिलाफ किसी भी धमकी का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये बयान कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच बातचीत के बाद आए। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए। हमले में 30 स्थानों पर मुख्य रूप से आवासीय भवन और नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों से जारी हमलों का जवाब बताया। इन हमलों में मुख्य रूप से तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। इस कारण यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के 4 साल से अधिक समय बाद रूस में ईंधन संकट पैदा हो गया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह

0: इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच दो मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए रूस के हमलों में 27 लोग मारे गए। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है सुबह के 10:31 और 8 सेकंड। ये वक्त है कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स का, तो तैयार हो जाइए अपना संदेश और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम खोल चुके हैं अपने दिल का मेल बॉक्स। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना फोन उठाइए और लिख भेजिए हमें अपने दिल का संदेश अपने नाम और अपने पते के साथ। ये मेल आपको भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, एक बार फिर नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com पर। दोस्तों, आप हमें कोई शायरी, कोई अच्छी लाइनें, कोई ऐसी बात जो आपके दिल के करीब हो, वो भी लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसे आज के प्रोग्राम में शामिल करें, और तब तक आप सुनिए ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

फिल्म जानी दुश्मन से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का और बोल वर्मा मलिक के।

दोस्तों आइए अब रुख करते हैं दिल के मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि पहला संदेश हमें किसका प्राप्त हुआ है। तो पहला संदेश हमें चंडीगढ़ सिटी से आया है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का, और ये लिख रहे हैं, नमस्कार भाई जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जी हम भी एफएम गोल्ड के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि लड़ लो झगड़ लो लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिर कर अलग हो जाते हैं। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत बात कही है आपने और मुझे लगता है कि आज के समय पर इन बातों का ध्यान में रखना और अमल में रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है जिला मुरादाबाद दूल्हापुर गांव उत्तर प्रदेश से, और इसे लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक, बलवीर सिंह। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है लक्ष्मण लोखंडे का महाराष्ट्र से।

दिल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक, बलवीर सिंह। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है लक्ष्मण लोखंडे का, महाराष्ट्र से ये हमें लिख रहे हैं। इनके साथ इस मेल में शामिल हैं कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे और रक्षता लोखंडे। इसी के साथ अगला मेल हमें उत्तम नगर दिल्ली से प्राप्त हुआ है और इसे लिखने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। और अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है अफरोज शेख, पता नेमुआ, सुपौर बिहार से हमें लिख रहे हैं मेल। तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगला मेल हमारे पास पहुंचा है मेरठ से, ये मेल हमें अनिल जैन लिख रहे हैं। इनके साथ जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम भी शामिल हैं इस मेल में। और अगला मेल हमें भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का प्राप्त हुआ है। तो आपका भी बहुत स्वागत है इस मेल में। दोस्तों अगला मेल हमें कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, स्वीटी दीवाना का प्राप्त हुआ है और ये एक खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

इसी के साथ अगला मेल हमें वीरमगंज जंक्शन से अजीत भावसार का प्राप्त हुआ है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखी हैं कि नहीं कोई फिक्र करता कुठारा घात करता है, हमारी पीठ पीछे वो हमेशा बात करता है। भरोसा तोड़ कर देखो दिए आंखों में आंसू, बस करे नाटक दिखावा भर बहुत उत्पात करता है। समझ आती नहीं उनको जो पहले से ही शातिर है, भरी महफिल में बस शब्दों की सुन बरसात करता है। भाई बड़ी ही अनुभव युक्त बात कही है आपने, तो इस सुंदर लाइनों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें अगला मेल प्राप्त हुआ है ऊपर कोटा मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से और इस मेल को लिख रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी

अली का साया, ठंडी हवा की सौगात, पेड़ों के बिना अधूरी है सारी कायनात। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों शिव नारायण का, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश से ये मेल लिख रहे हैं और एक बेहद ही खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

फिल्म नदिया के पार से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। दोस्तों आइए अब शामिल करते हैं आज के कुछ और स्पेशल संदेश जो आपने हमें लिखकर भेजे हैं, आज के प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लेते हैं। दोस्तों अगला मेल हमें मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर का प्राप्त हुआ है। ये लिख रहे हैं, वर्मा सर जी वेलकम। तो जी आपका भी बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। इसी के साथ हमें अगला मेल प्राप्त हुआ है कृष्ण नगरी मथुरा से, और इस मेल को लिख रहे हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। अगला मेल हमें नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है और इस मेल को लिख रहे हैं कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है नवाब अहमद भारती का, और इनके साथ इस मेल को लिख रहे हैं सलीम अख्तर। इन्होंने लिखा है, आदाब सरजी, कोई भी सॉन्ग में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। तो देखिए जनाब, हमने आपका नाम शामिल कर लिया। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, और इस मेल को लिख रहे हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। इन्होंने लिखा है, श्रीमान राम प्रकाश वर्मा जी नमस्कार। तो जी आपको भी नमस्कार। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है दतरेंगी से, और इसे लिख रहे हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। और इसी के साथ एक और मेल हमें मोहाली चंडीगढ़ से प्राप्त हुआ है। माफ़ कीजिएगा, कई बार आप सही शब्द नहीं लिखते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइप करते वक्त ध्यान दें। ये मेल हमें लिख रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप जी। और अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है सोमेश्वर उत्तराखंड से, और ये लिखने वाले हैं दीपक जोशी, गणेश जोशी, विमला जोशी, माया जोशी, अजय नेहा, शालिनी, आयुष और हिया। ये खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत नगमा।

दोस्तों डालें नज़र मेल बॉक्स की तरफ तो कुछ और मेल हमें प्राप्त हुए हैं, और ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन का ये मेल हमें लिख रहे हैं चंडीगढ़ से। इन्होंने लिखा है, राम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, एनी सॉन्ग में मैसेज ले लीजिए। तो देखिए

हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना का। ये मेल हमें लिख रहे हैं और साथ ही ये लिख रहे हैं कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स पेश करता आदरणीय रामप्रकाश जी, आपको सादर नमस्कार। तो जी आपको भी नमस्कार। आप लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत दिनों बाद सुनकर हमें अच्छा लगा। तो जी आपका मेल बहुत दिनों बाद पढ़कर हमें भी अच्छा लगा। अगला मेल हमें रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन का मेल हमें प्राप्त हुआ है। ये लिख रहे हैं कि रामप्रकाश जी नमस्कार, कोई भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। तो लीजिए जनाब, हमने आपको इस खूबसूरत गीत में शामिल कर लिया। अगला गीत हमें, माफ़ कीजिएगा, अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल मक्कड़ का। और ये मेल हमें लिख रहे हैं, इन्होंने एड्रेस नहीं लिखा है, माफ़ कीजिएगा। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा ठीक 11:25 पर कार्यक्रम तस्वीर के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत अपनी मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इस मुश्किल समय में स्थानीय लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की निस्वार्थ सेवा की सराहना कर रहे हैं। भारत वेनेजुएला में सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बैनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बैनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुज्तबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के टोरंटो में आज पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा। इससे पहले लॉस एंजलिस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of the 29th of July 2025 mentioning the resistance front. Election Commission of India ECI has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress AITC regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. In a statement, the commission said it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritobroto Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The commission said both sides have been directed to submit the responses by 5:30 p.m. on Monday. The annual Sri Amarnath Yatra began this morning from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India are expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day-long pilgrimage. Pilgrims travel to the holy Amarnath Cave, located at an altitude of nearly 3,888 meters, to seek the blessings of Lord Shiva and witness the naturally formed eyes shivling. The yatra will culminate on August 28, coinciding with the festival of Raksha Bandhan. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings to devotees undertaking the annual Amarnath Yatra. In a letter written to the pilgrims, Mr. Modi described the annual Amarnath Yatra as an external chapter in the spiritual tradition and cultural unity of the country. He said that the divine darshan of Baba Barfani is an unforgettable and deeply auspicious experience in the lives of millions of devotees. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Minister of External Affairs said that the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela, while the Indian Embassy in Venezuela has said that India's humanitarian relief efforts in the South American nation have received widespread acclaim from the public for its professionalism and quality of service. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the two-day orientation program for newly elected members of the West Bengal Legislative Assembly in Kolkata today. The program aims to familiarize newly elected members with various aspects of parliamentary and legislative functioning, including committee systems, financial oversight, parliamentary privileges, and emerging digital initiatives in legislatures. Minister of Panchayati Raj will organize a national workshop of state Panchayati Raj ministers in New Delhi today to deliberate on the recommendations of the 16th Finance Commission. During the workshop, the discussions will focus on the operational guidelines for implementation of the 16th Finance Commission rural local body grants issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. In Andhra Pradesh, four people were killed and eight others injured after a speeding fertilizer-laden lorry rammed into a parked auto near Kamban Y Junction in Markapuram district early this morning. The victims, all from Giddalur, were travelling to Kamban to attend a wedding and had stopped near a Vinayak temple to offer prayers when the accident occurred. The injured were shifted to hospitals in Giddalur and Kamban. Police registered a case and are investigating the cause of the accident. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei will not attend the funeral of his father, former Supreme Leader Ali Khamenei, due to security concerns. According to the current leader's representative in India, Ayatollah Hakim Ilahi, threats and surveillance risks made it unsafe for the leader to appear in public. And that is the end of this news bulletin.

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: दोस्तों, एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है कि विशाल यार से दूना हुआ इश्क, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। इसका मतलब है कि इश्क वो तकलीफ है जिसका इलाज आसान नहीं होता। अपने किसी खास से मिलने की चाहत कुछ इस तरह से दिल और दिमाग पर छा जाती है।
1: जैसे जैसे अपने किसी खास से मिलने की चाहत पूरी होती है या मिलने की कोशिश की जाती है, वैसे वैसे इश्क और दीवानगी दोगुनी हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी बीमारी का इलाज करने पर वो बीमारी कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ती चली जा रही हो।
0: इश्क और मुश्क छुपाने से नहीं छुपता। जैसे कि खुशबू को आप चाहे कितने ही कमरों में बंद क्यों ना कर दें, उसकी महक बाहर आ ही जाती है। ठीक उसी तरह किसी के दिल में छिपा हुआ प्यार भी लोगों की नजरों से छुप नहीं पाता, ये अपने आप जाहिर हो ही जाता है।
1: कहते हैं कि अगर एक बार किसी के दिल में सच्चे प्यार का एहसास हो जाए तो दुनिया की कोई भी मुसीबतें या रुकावटें उसे रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी आंधी प्यार की इस आग को बुझा नहीं सकती।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: दोस्तों, अब जब बात दिल और मोहब्बत की चली है तो फिर एक बात ये भी कह दी जाए कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि सच्ची मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं होती।
4: इसके लिए एक खास और पवित्र दिल की जरूरत होती है। जैसे हर धुन हर इंस्ट्रूमेंट पर नहीं बज सकती, वैसे ही प्यार के जज्बात हर साधारण दिल में नहीं पनपते। वैसे कहने को तो ना जाने कितने ही लड़के और लड़कियां आजकल ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें प्यार हो गया है और अब हम अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाएंगे।
3: लेकिन सच इसके बिल्कुल अलग होता है। जरा सी दोस्ती को जो प्यार का नाम दे देते हैं, वो बहुत जल्दी इस रिश्ते से बाहर भी हो जाते हैं। फिर बहाना चाहे समाज का हो या परिवार के ना मानने का, लेकिन सच तो ये है कि उनको प्यार का मतलब ही नहीं पता होता। वो बस टाइम पास करते हैं।
4: और ये जो टाइम पास करते हैं, उनके अलग होने के बहाने भी अलग होते हैं। वो कभी कहेंगे कि परिवार नहीं मान रहा, कभी कहेंगे कि क्या करूं, हमारी सोसाइटी तुमसे बहुत ऊपर है, या फिर तुम कमाते कितना हो।
3: बहाने तो बहुत हैं, मगर जिसका दिल टूटता है, दर्द वही जानता है।

0: सारा दिन बस नाश्ता लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.मेरावजूद.com पर।
2: वैसे अगर सच में कहा जाए तो प्यार सिर्फ प्यार ही नहीं होता, बल्कि प्यार एक जिम्मेदारी है, एक विश्वास भी है। और जब दोनों ही चाहने वाले इस बात को समझते हैं तो उनकी मंजिल आसान हो जाती है। हो सकता है कि शुरू में किसी के परिवार वाले या किसी का समाज इस बात को ना समझे,
1: लेकिन जो दिल से साथ होते हैं वो परिवार को और समाज को ठीक से समझा ही लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के लोग इस वजह से भी तैयार नहीं होते कि दोनों में से कोई शायद अपनी जिंदगी में तब तक कामयाब न हुआ हो,
2: तो आगे चलकर वो जीवन का बोझ कैसे उठाएगा, ये भी एक टेंशन की बात है। लेकिन अगर दिल में सच्ची चाह हो तो पुरुष हो या महिला, जिंदगी के किसी भी दौर में कामयाब हो सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी पैसा कमाने के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। जरूरी है तो बस उन्हें समझने की जरूरत है, तो बस उन्हें समझने की।
1: अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने समवन स्पेशल की खुशियों का ख्याल रख सकते हैं या नहीं। वैसे कुछ भी कहा जाए, प्यार को चीज ही ऐसी है कि अगर किसी को दिल से हो जाए तो फिर दोनों ही लोग एक होने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी।

0: कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
1: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
2: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
3: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे? मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
0: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
4: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
0: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
4: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
0: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
4: और अदिति को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है सुबह के 11:25:44। मैं आपका रेडियो हम सफर, आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम तस्वीर में।

आज के कार्यक्रम तस्वीर में हम आपकी आंखों के सामने लाएंगे एक ऐसी तस्वीर जिसे देख करने के बाद आप घर बैठे ही इस गर्मी के मौसम में भी ठंडक का अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि आज जहां हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस जगह को भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो भाई देर किस बात की, चलिए आपको लेकर चलते हैं इस बेहद ही खूबसूरत सुहाने सफर पर।

दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी मन चाहता है कि कुछ पल ऐसे मिल जाएं जहां सिर्फ सन्नाटा हो, पहाड़ों की ठंडी हवाएं हो, नीले आसमान के नीचे सफेद बादलों का कारवां हो और दूर तक फैली प्रकृति बस मुस्कुराती हुई ही दिखाई दे। तो आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी ही जादुई दुनिया में, जिसे देखकर लगता है कि मानो धरती ने यहाँ खुद अपने हाथों से स्वर्ग सजाया हो। और इस जगह का नाम है स्पीति घाटी। जी हाँ, स्पीति का अर्थ होता है मध्य भूमि, यानी भारत और तिब्बत के बीच की धरती। तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसी ये घाटी दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए इलाकों में गिनी जाती है। यहाँ की सड़कें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और दूर तक फैली शांत वादियां हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। स्पीति घाटी में मुख्य रूप से स्पीति नदी बहती है और इसके साथ कई अन्य नदियां भी इस घाटी में शामिल होती हैं। स्पीति घाटी चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी होती है। इसके उत्तर में लद्दाख, पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में बुशहर और पश्चिम में कुल्लू शामिल है। भारत और तिब्बत के बीच बसी इस घाटी ने सदियों से संस्कृति, आध्यात्म और प्रकृति को अपने आंचल में समेट रखा है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ बारिश तो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ प्रकृति अपनी खूबसूरती बरसाने में कोई कमी नहीं रखती और इसीलिए स्पीति में लगभग 250 दिन आसमान बिल्कुल साफ रहता है। रात के समय यहाँ तारों की चादर दिखाई देती है, जिसे देखकर लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में आसमान और तारे आपके बिल्कुल पास आ गए हों।

दोस्तों, स्पीति की पहचान केवल उसके पहाड़ ही नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा बसती है यहाँ के मठों में, और उनमें सबसे प्रसिद्ध मठ है की मोनेस्ट्री। तकरीबन 1000 साल पुराना ये बौद्ध मठ पहाड़ की ढलान पर इस तरह से बना हुआ है कि मानो बादलों ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया हो। सुबह जब यहां घंटियां बजती हैं तो पूरा वातावरण मंत्रों की मधुर ध्वनि से भर जाता है। यहां रहने वाले भिक्षु सादगी, धैर्य और प्रेम का संदेश देते हैं। कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मन अशांत हो तो एक बार की मोनेस्ट्री की पहाड़ी पर बैठकर यहां का सूर्योदय देख लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। अगर स्पीति की बात हो और चंद्रताल झील का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। चंद्रमा के आकार की ये झील समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुबह इसका रंग नीला, दोपहर में फिरोजी और शाम होते होते इसका रंग सुनहरा हो जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति हर घंटे कोई नई तस्वीर बना रही हो। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात चंद्रताल का दृश्य जिंदगी भर नहीं भूलता। दोस्तों, चंद्रताल के अलावा यहाँ कई और भी पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जैसे चीचम ब्रिज, धनकर झील और धनकर मठ, डेमुल गांव, काजा, कुंजी मठ, किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंजुम दर्रा, लोसर, शेरखाग मठ, माने योगमा गांव, मिट्टी का गांव, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, तावो मठ और उसकी गुफाएं, और हिक्किम गांव भी आप जा सकते हैं। हिक्किम गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर है और यहां से भेजे गए संदेश यानी पत्र हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं।

0: दोस्तों, आज के कार्यक्रम तस्वीर में हम बात कर रहे हैं स्पीति घाटी के बारे में, और भी बहुत ही दिलचस्प बातें हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है, अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, अपडेट यून क्या है, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम तस्वीर सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आज की तस्वीर में हम बात कर रहे हैं स्पीति घाटी के बारे में। दोस्तों, स्पीति के लोग बेहद ही सरल, मेहनती और अतिथि देवो भव की भावना वाले होते हैं। उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनका भोजन, सब कुछ अनोखा होता है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से जौ और काली मटर की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हरी मटर और अन्य कई छोटी मोटी फसलें भी उगाई जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा होने की वजह से यहाँ साल में सिर्फ एक ही बार फसल उगाई जा सकती है। यहाँ के स्थानीय लोग बकरी और भेड़ जैसे पशुओं का पालन भी किया करते हैं। बात करें यहाँ के स्थानीय त्योहारों की, तो यहाँ मुख्य रूप से गुईटोर,

काफी पसंद है और साथ ही मशहूर है यहाँ की बटर वाली चाय। तो भाई जब भी आप स्पीति जाएं तो यहाँ की बटर वाली चाय बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। स्पीति घाटी केवल प्राकृतिक सुंदरता का ही नहीं बल्कि रोमांच का भी दूसरा नाम है। यहाँ पर बाइक राइडिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी का अलग ही आनंद आता है। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया दृश्य और एक नया अनुभव आपका इंतजार करता है। दोस्तों, अगर आप भी स्पीति जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है मई से सितंबर के बीच का, क्योंकि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।

दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं स्पीति घाटी तक कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों यहां तक पहुंचने के लिए आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां जाने के लिए आपको मनाली या शिमला में से किसी भी एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो शिमला से रेकोंग पेओ के लिए सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ना जरूरी है और फिर इसके बाद काजा के लिए जाना होगा। इस सफर में आपको तकरीबन 24 घंटे का वक्त लग सकता है। अगर आप मनाली होकर जाना चाहते हैं तो मनाली से भी आपको सुबह 5 बजे वाली बस पकड़नी होगी जो कि आपको काजा तक ले जाएगी।

वहीं अगर आप ट्रेन का सफर करना चाहते हैं तो आपको जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा। ये रेलवे स्टेशन स्पीति घाटी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है और स्पीति घाटी से तकरीबन 360 किलोमीटर दूर है। जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पठानकोट पहुंचना होगा और वहां से आप टॉय ट्रेन पकड़कर जोगिंदर नगर जा सकते हैं। उसके बाद आप मनाली होते हुए स्पीति घाटी जाने के लिए टैक्सी या बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग का प्रयोग करना चाहते हैं यानी आप एरोप्लेन से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चंडीगढ़ या शिमला जाना होगा और यहां से आप कुल्लू हवाई अड्डे तक की फ्लाइट ले सकते हैं। कुल्लू हवाई अड्डे पर टैक्सी, एटीएम और निशुल्क सामान ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। कुल्लू हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप स्पीति घाटी के लिए टैक्सी या बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, स्पीति घाटी के सफर पर निकलने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो और साथ ही आप कुछ गर्म कपड़े भी रख लें और यहां जाने से पहले मौसम का हाल भी जरूर जान लें।

दोस्तों, यात्रा सिर्फ किसी जगह तक पहुंचने का नाम नहीं होती। यात्राएं हमारे व्यक्तित्व में नई समझ, नए अनुभवों को जोड़ती हैं, या यूं कहिए कि हमें खुद से भी मिलवा देती हैं। स्पीति घाटी की यात्रा भी एक ऐसी ही यात्रा है। अगर कभी जीवन में अवसर मिले तो आप यहां जरूर जाइएगा। हो सकता है कि यहाँ की खामोशी आपके भीतर का शोर हमेशा के लिए शांत कर दे। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं राम प्रकाश वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। आज की तस्वीर में फिलहाल इतना ही। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडस्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council Monitoring Team report of the 29th of July 2025, mentioning the Resistance Front. The two leaders called for the perpetrators, organizers, and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their proxies. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The finance minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Vikasit Bharat 2047. She called for strengthening the India-France strategic partnership to achieve shared prosperity. She said India and France are trusted partners in shaping the global AI ecosystem. She noted that this partnership offers new opportunities in trusted AI, digital infrastructure and next-generation technologies. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Ministry of External Affairs said the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela. While the Indian Embassy in Venezuela has said that India's humanitarian relief efforts in the South American nation have received widespread acclaim from the public for its professionalism and quality of service. The Department of Youth Affairs today organized an industry association conclave of My Bharat in New Delhi. Leading industry bodies including ASSOCHAM, FICCI, CAIT and CII participated in the conclave. The event aimed to introduce the My Bharat ecosystem to industry stakeholders and invite industry associations, corporates and public sector undertakings to join the initiative. The conclave also focused on exploring frameworks for future collaboration on youth development and aligning national youth goals with industry-led initiatives. Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, said the youth of the country are the key drivers in realizing the vision of a Vikasit Bharat by 2047. The annual Sri Amarnath Yatra began this morning from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India are expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day-long pilgrimage. Pilgrims travel to the holy Amarnath Cave, located at an altitude of nearly 3,800.

당근. नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है घर आंगन और आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी, आपके साथ राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज है 3 जुलाई। आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। यह हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगल उपयोग यानी एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक बैग के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण को बचाना है। प्लास्टिक बैग को गलने में करीब 100 से 500 साल तक का समय लगता है, इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपनी तरफ से हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि जमीन और समुद्र के जानवर इसे भोजन समझकर खा जाते हैं, इससे उनकी जान भी जा सकती है। नालियों को जाम करता है, हवा और पानी को जहरीला बनाता है ये प्लास्टिक। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ बाजार जाते समय हमेशा कपड़े या जूट के थैले को साथ लेकर जाएं। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग को लेने से मना कर दीजिए। और जब भी आप मार्केट जाएं ना, हमेशा घर से कपड़े का या जूट का बैग साथ लेकर निकलें। जैसे पहले होता था, अपने साथ एक थैला लेकर जाते थे, वो लेकर जाइए और अपने पास रखिए। प्लास्टिक

के कंटेनर्स में रखते हैं ना, वो स्टील या कांच के जार का इस्तेमाल करें। तो बहुत छोटे छोटे उपयोग हैं जिनसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, प्लास्टिक को नो कह सकते हैं, नो यूज टू प्लास्टिक। जो हम ये स्ट्रॉ लेते हैं ना प्लास्टिक के, उसकी जगह भी पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफर के दौरान जो हम प्लास्टिक की पानी की बोतलें बार बार खरीद लेते हैं ना, ये भी ठीक नहीं है। एक स्टील की बॉटल आप अपने साथ रखिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी जो दिन भर की आपकी जरूरतें हैं, आपकी आदतें हैं, उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। और आज का हमारा घर आंगन कार्यक्रम का जो प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप बाजार जाते हैं तो क्या प्लास्टिक बैग लेकर जाते हैं, और नहीं जाते तो प्लास्टिक बैग के अलावा कौन सा वो ऑप्शन है जो पर्यावरण के अनुकूल है और आप इस्तेमाल करते हैं, हमें बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। एक बार फिर से पूछ लेती हूँ कि बाजार आप जाते हैं तो किस तरह का बैग आप लेकर जाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होता है, प्लास्टिक के ऑप्शन के रूप में आप क्या इस्तेमाल करते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें मेल्स भेजिए, हम आपकी मेल्स को शामिल करेंगे आज के कार्यक्रम में। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं शमशाद बेगम उषा मंगेशकर की आवाजें ब्लफ मास्टर फिल्म से। और हमने एक प्रश्न कार्यक्रम के शुरू में ही पूछ लिया है कि प्लास्टिक की थैली के बजाय आप बाजार जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं। तो हमें ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं, मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं। तो जो सबसे पहली ईमेल आई है वो मैं पढ़ देती हूँ। नवीन भाटिया मोती नगर से लिखते हैं कि हम कपड़े का थैला लेकर जाते हैं। और रोहिणी से लिखते हैं, डॉक्टर विनोद, पुनीत रावत, संजय, प्रवीण कुमार और प्रदीप, ये लिखते हैं कि जूट का बैग लेके जाते हैं जो सबसे मजबूत और टिकाऊ विकल्प है। इसमें आप भारी राशन और सब्जियां भी आसानी से ला सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। इस तरह से आप ईमेल भेजते रहिए क्योंकि हम पूछ लिया है हमने आपसे एक प्रश्न। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके अनुभव, संस्कार और स्नेह से हमारे परिवार और समाज की नींव मजबूत होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने वरिष्ठ नागरिकों की। वरिष्ठ नागरिक हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनका सम्मान करना, उनकी बातों को सुनना, उनके अनुभवों से सीखना, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बुजुर्गों को सम्मान, स्नेह और सहयोग देकर उनके जीवन को अधिक सुखद और सार्थक बना सकते हैं। और अक्सर ये माना जाता है कि सपनों को पूरा करने की एक उम्र होती है, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता। कुछ सपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कहीं पीछे छूट जाते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि अब तो उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे सपने पूरे करके, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर एक नई शुरुआत की जा सकती है। अनेक वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्ति के बाद नई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कलाएं सीख रहे हैं, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, समाज सेवा में योगदान दे रहे हैं। उम्र तो केवल एक नंबर है। यदि मन में उत्साह और आत्मविश्वास हो तो हर सपना साकार किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां जीवन के दूसरे दौर में नई शुरुआत करके सफलता हासिल की है। तो निकालिए उन रुचियों को, उन सपनों को जो कभी यादों के पिटारों में दब गए हैं। पहन लीजिए उन यादों के संदूकों को, निकालिए, एक लिस्ट बनाइए, सपनों को फिर से खोजिए। और अब समय है उन्हें पूरा करने का। चाहे शिक्षा प्राप्त करनी हो, कोई आर्ट सीखनी हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, इसमें उम्र बाधा नहीं होनी चाहिए। और परिवार का दायित्व है कि उनका साथ दें, उनको प्रोत्साहित करें।

chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick. ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में काला बाजार फिल्म से। और हमें ईमेल्स और आ गई हैं कि लोग प्लास्टिक बैग को लेकर कितने सचेत हैं कि बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करते। अब रश्मि कपूरिया, गौरी शंकर, पुलक की तक्षरा, प्रीति और मिली वैशाली गाजियाबाद से लिखती हैं कि वो तो डेनिम बैग लेकर जाती हैं। पुरानी जीन्स को काट कर घर पर ही बहुत मजबूत और फैशनेबल थैला बनाती हैं और वही बाजार लेके जाती हैं और उनके पतिदेव भी यही लेकर जाते हैं और बच्चों के लिए भी उन्होंने कागज के बैग बना रखे हैं ताकि हल्के सामान को बच्चे ले जा सकें और बाजार से ला सकें। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अगर बाजार से सामान लेने जाते हैं तो अपने कागज के बैग बना रखे हैं, यानी जो लिफाफे पहले बना करते थे वो बना रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि सामान का इस्तेमाल भी हो गया, पुरानी जीन्स को काट कर डेनिम बैग बन गया और आप लेके जाते हैं, खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए ना कितने अच्छे अच्छे सुझाव हमारे श्रोता दे रहे हैं। तो आप भी भेजिए ऐसा सुझाव कि आप क्या करते हैं, अगर बाजार जाते हैं तो कौन सा बैग लेके जाते हैं, क्योंकि आज है इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे। और हमारा ईमेल आईडी फिर से बता देते हैं fmgoldga@gmail.com। और आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो हम बुजुर्ग के लोगों की बात तो जरूर करेंगे और उसी पर तो हमारा कार्यक्रम आज आधारित है। बुजुर्ग जो है वो समाज की अमूल्य धरोहर हैं, या कहिए जड़ हैं। उनके अनुभव, उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं, उनके जीवन से मिली सीख नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। आज जब युवा तेजी से बदलती दुनिया में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो बुजुर्गों की सलाह और सुझाव उन्हें सही दिशा दिखा सकती है। उनके अनुभवों की विरासत नई पीढ़ी को मजबूत और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करती है। बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं, इसलिए हमारे बड़े जो घर में होते हैं उनके अनुभव, उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी और हम है, हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, हमें मार्गदर्शन देती है। तेजी से बदलती दुनिया में जीवन, उनके जो जीवन अनुभव हैं हमें और युवाओं को सही दिशा दिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अनुभवों की विरासत हैं हमारे बुजुर्ग।

भूले आप जवाब दीजिए fmgoldg@gmail.com पर। आप बताइए कि आप जब बाजार जाते हैं तो कैसा बैग लेकर जाते हैं, प्लास्टिक मुक्त अगर देश को करना है, पर्यावरण को अच्छा करना है तो क्या करते हैं। हमें बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं। अब एक और मैसेज मिला है बहादुरगढ़ से प्रीति गर्ग, सत्यकाम गर्ग और स्वस्तिका का। ये लिखते हैं कि इन्होंने फल और सब्जियां खरीदने के लिए पारंपरिक बांस की टोकरियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और ये बांस की टोकरियां जब ये पहाड़ों पर गए थे तो वहां से लेकर आए थे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप बांस की टोकरियां लेकर आए। सब लोग ऐसा कर सकते हैं कि कहीं जाएं तो ऐसा पर्यावरण अनुकूल आइटम लेकर आए घर में ताकि प्लास्टिक बैग की जगह इस्तेमाल किया जा सके। और अब बात करें हैं फिर से अपने बुजुर्गों की। विकास और आधुनिकता बहुत जरूरी है लेकिन अपनी संस्कृति अपने मूल्यों को भूल जाना उचित नहीं है। नई तकनीक और नए विचारों को अपनाने के साथ साथ हमें अपने बुजुर्गों के अनुभव और पारंपरिक ज्ञान का भी सम्मान करना चाहिए। यही संतुलन तो समाज को आगे बढ़ाता है। प्रगति और विकास के लिए नए विचारों और तकनीकों को अपनाना आवश्यक है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने पुराने मूल्य अनुभव और बुजुर्गों को त्याग दें। पुराना और नया एक दूसरे का पूरक हो सकता है लेकिन इन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत होती है। आधुनिक तकनीक हमें सुविधा देती है जबकि पुरानी संस्कृति हमें जीवन जीने की दिशा देती है। यदि हम केवल नए के पीछे भागेंगे तो अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन कमजोर भी पड़ सकता है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत फिल्म ओपेरा हाउस से था। और जो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके जवाब ईमेल द्वारा आने शुरू हो गए हैं। अब देखिए ना, राजू अग्रवाल, केशव, विनोद, ममता चौधरी जिला हिसार हरियाणा से लिखते हैं कि हमने वो जमाना भी देखा है कि विवाह शादियों में खाना खाने जाते थे, दुकान में सामान लेने जाते थे, बर्तन घर से लेकर जाते थे। जी हाँ, पहले प्लास्टिक के लिफाफे नहीं थे, साफ सुथरा वातावरण था। आज भी मैं अपनी साइकिल पर कपड़े का बैग हमेशा साथ रखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर विचार है। हमें और ईमेल मिली है चरण दास जी की, और ये मेल भी मैं पढ़ देती हूँ। ये लिखिए, रामेश्वर राव जी ने लिखी है, शकरपुर से लिखते हैं कि मैं हमेशा अपनी गाड़ी में चाय पीने के लिए एक कांच

कच्चे धागे फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और अब जो पर्यावरण की बातें चल ही रही हैं, तो एक ईमेल और हमें मिल गया है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि हम जब भी मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हम लेकर जाते हैं कॉटन का बैग। देखिए कितने अच्छे अच्छे सलाह, मशवरे और सुझाव हमें मिल रहे हैं, और हमारे जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं कि आगे पर्यावरण को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। अब हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप बुजुर्गों से पूछेंगे ना, तो पहले यही होता था, प्लास्टिक के बैग्स नहीं होते थे, वो प्लास्टिक के बैग्स की बजाय एक कॉटन का, या जैसे घर में पुराने कपड़े टी शर्ट्स बच जाती थी, उन टी शर्ट्स को भी काट कर सिया जाता था, सिल लिया जाता था, एक बैग बनाया जाता था। हर घर में ऐसा ही होता था। जी हाँ बिल्कुल, और आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं हुआ करती थी, एक थैला बनाया जाता था पुराने कपड़ों से, नए कपड़ों से अगर सुंदर सुंदर हैं वो भी बनाए जाते थे, सिलाई मशीन पे उनको सील कर बैग या थैला बना लेते थे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, और बाजार जा रहे हैं तो लेकर जाते थे। अब यही तो पुरानी परंपराएं हैं जो आगे ले जाने का कार्य करते हैं हमारे बुजुर्ग। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, त्यौहार और लोक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों के माध्यम से ही तो आगे बढ़ती हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान कितनी समृद्ध है। उनके मार्गदर्शन से नई पीढ़ी अपनी परंपराओं को समझती भी है और अपनाती भी है। भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और लोकाचार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इसी प्रक्रिया में हमारे बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वे त्योहार, रीति रिवाज, लोक कथाएं, पारिवारिक मूल्य, सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। आधुनिकता के दौर में जहां परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक उन्हें जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। उनकी बदौलत हमारी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है, समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, और वरिष्ठ नागरिक न केवल परंपराओं के संरक्षक हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण सेतु का कार्य भी करते हैं हमारे बुजुर्ग।

ये गीत आप सुन रहे थे गोरा और काला फिल्म से उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी आवाजें। आप हमें ईमेल प्राप्त हुई है रेखा देवी, निर्मला देवी, प्रीति चौधरी की, हिसार हरियाणा से। वो लिखते हैं कि हम प्लास्टिक बैग का जो लिफाफा है वो फट जाता है, इसलिए हम कपड़े का बैग जरूर साथ रखते हैं ताकि सामान बिखर नहीं पाए, और बाजार में लोग आप पर हंसे ना, इसलिए आपको जरूरत है कि आप कपड़े का बैग ही साथ रखें। जी हाँ, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कपड़े का बैग। और एक मेल हमें, एक मैसेज और मिला है हमें फरीदाबाद से नरबीर, त्रिलोक और मोहित का। ये भी यही लिखते हैं कि आप कपड़े का बैग लेके जाएं, इन्हें मोड़कर जेब या गाड़ी में रखना आसान होता है, और गंदा होने पर इन्हें धोकर बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, यानी हमें बहुत सारे सुझाव और आइडियाज मिल रहे हैं आज मेल पर कि पर्यावरण अनुकूल हम क्या काम कर सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को हम नो कह दें, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और हमें पर्यावरण को खुश रखना है। पर्यावरण खुश रहेगा तभी तो हम भी खुश रहेंगे।

जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और ये गीत हमने लिया था पारस मणि फिल्म से, लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की थी आवाजें। बातें चल रही थी बुजुर्गों की, अब बुजुर्गों की बात चली है, और देखिए बुजुर्गों की बात है हमारे घर में, जो हमारे बड़े रहते हैं, दादी नानी है, उनके किस्से कहानियां कैसे भूले जा सकते हैं। दादी नानी की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिकता, ईमानदारी, साहस और संस्कारों की सीख मिलती है। ये कहानियां बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ती हैं। नानी माँ की कहानियां, दादी माँ की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का एक अनमोल खजाना है। दादी नानी की ये जो कहानियां होती है ना, इससे बच्चों का सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि बच्चों को जीवन के गहरे नैतिक मूल्य और समझदारी और साहस भी मिलता है। ये कहानियां हमें सही गलत का फर्क सिखाती हैं। ये पीढ़ियों के बीच एक मजबूत पुल का काम करती हैं। जब हम दादी या नानी या नाना या दादा की गोद में सिर रखकर इन कहानियों को सुनते हैं, तो हम अपने परिवार और संस्कारों से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। और ये जो दादी पोते का रिश्ता है, दादा पोते का रिश्ता है, बेहद गहरा भावनात्मक और प्यार से भरा होता है। ये कहानियां हमें परंपराओं से जोड़ती हैं। जो दादी नानी दादा नाना प्यार करते हैं, वो बिना किसी शर्त के ढेर सारा प्यार होता है। एक मजबूत भावनात्मक आधार होता है जिंदगी जीने का। कई परिवार जो होते हैं, उसमें नानी दादी बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, बड़ी मार्गदर्शक होती हैं, जिनसे बच्चे खुलकर अपनी बातें कह सकते हैं।

ये गीत आप सुन रहे हैं घर घर की कहानी फिल्म से शब्बीर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजें। और देखिए कार्यक्रम का समय अब सिमट गया है, इसलिए कार्यक्रम घर आंगन संपन्न करने की राधा पाठक को दे इजाजत, आप सुनते रहिए ये गीत।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक

0: राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. Prime Minister Sanae Takaichi has since departed from India. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat tomorrow. During his visit, he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth around 1.06 lakh crore rupees in Balotra, Rajasthan. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister will inaugurate the new terminal building at Jodhpur Airport. He will

नमस्कार, आकाशवाणी की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। हर अभिनेता या अभिनेत्री की अपनी अलग शख्सियत होती है, चेहरा मोहरा, चाल ढाल, बोलने का अंदाज और गाने या नाचने का अंदाज। और आज कलाकार बेमिसाल की इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे ही अनोखे एक्टर से रूबरू कराएंगे, स्टाइलाइज्ड एक्टिंग के बेताज शहंशाह, या फिर यूं कहें प्रिंस।

नमस्कार, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कलाकार बेमिसाल के आज के खास मेहमान हैं फिल्म अभिनेता राजकुमार। आज 3 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है। राजकुमार जी का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में लोरालाई बलूचिस्तान में हुआ था। मूल रूप से आपका परिवार कश्मीरी पंडितों का परिवार था जो श्रीनगर से बलूचिस्तान गया था। जन्म के वक्त इनका नाम कुलभूषण पंडित रखा गया। इन्होंने अपना नाम कुल का आभूषण या गहना सार्थक किया और हिंदी सिनेमा के सबसे अलग पहचान रखने वाले अभिनेताओं में से एक कहलाए।

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता राजकुमार की और आज आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। 1940 के दशक में राजकुमार बंबई आए और बंबई पुलिस में इन्होंने सब इंस्पेक्टर की नौकरी की। 1960 के दशक में इन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की जो एक हवाई उड़ान में इनसे मिली थी और फिर इनके तीन बच्चे हुए, पुरु राजकुमार, पणिनी राजकुमार और वास्तविकता पंडित।

कहो जी, राजकुमार ने अपना फिल्मी सफर 1952 में फिल्म रंगीली से शुरू किया। फिर 1952 में ही अनमोल शहर फिल्म आई, 1953 में आबशार, 1955 में घमंड। इन सभी फिल्मों का राजकुमार जी के फिल्मी सफर पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। फिर 1957 में आई महबूब खान की मदर इंडिया। मदर इंडिया से आए राजकुमार निकलकर एक बड़ा कलाकार, एक स्टार।

मदर इंडिया फिल्म के बाद रिलीज हुई एसएस वासन की फिल्म पैगाम, जो कि एक सामाजिक फिल्म थी, राजकुमार जी को उनके रोल के लिए बहुत सराहना मिली। वो एक जिम्मेदार बड़े भाई की भूमिका में थे और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड भी मिला।

0: पंडित लोगो सुनो सुनो मौलाना, अरे अपना ये संसार हुआ है
1: क्या?

0: गजब भयारे भाई हाय हाय हाय, चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को ज्योतिषी उल्लू बनाए, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए। आदमी भी कैसा काजी है हाय, मौका मिले तो भगवान भेज खाए।
0: मौका मिले तो भगवान भेज खाए। हाय हाय हाय हाय, कुछ लोगों का धंधा हुआ है।
1: क्या
0: मंदिर में

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। बात कर रहे हैं सबसे स्टाइलिश एक्टर की, हिंदी सिनेमा के राजकुमार जी के बारे में। 60 के दशक में आई फिल्म दिल अपना और प्रीत पर आई, जिसने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजकुमार जी अब तक अपने आप को एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में स्थापित कर चुके थे। क्या समझे जानी। 1961 में वो घराना फिल्म में राजेंद्र कुमार और आशा पारेख के साथ नजर आए। फिर एक साल के अंतराल के बाद वो राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी के साथ फिल्म दिल एक मंदिर में नजर आए। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और राजकुमार जी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता

अरे भी रिलीज हुई थी इस फिल्म के बाद, दिलेक मंदिर के बाद 1964 में राजकुमार जी ने रामानंद सागर की बतौर निर्देशक दूसरी फिल्म जिंदगी में काम किया। 1965 में जब दूसरे हीरो सेकंड लीड का किरदार निभाते निभाते राजकुमार जी को कई साल बीत गए थे, तब एक फिल्म आई थी वक्त, और राजमहेश्वरी जी की फिल्म काजल में इन्होंने काम किया। दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, ये आपको आपने गौर फरमाया ही होगा। तो हम ये सोच रहे थे कि आपको क्या हम वक्त फिल्म का एक गीत सुनवा सकते हैं। कौन सा गीत? वही गीत जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, ए मेरी जोहरा जबी। देखते हैं ये गीत कहाँ पे लुप्त हो गया है। राजकुमार जी की ये कमाल की बात थी कि उनमें स्क्रीन प्रेजेंस बहुत थी। अगर पूरी फिल्म में उनका जो रोल था चाहे 15 मिनट का हो, वो ऐसी छाप छोड़ते थे कि बड़े से बड़े अभिनेता जो है थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करते थे। स्क्रीन प्रेजेंस का ये कमाल था राजकुमार जी की। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक गीत सुनाते हैं, ऐ मेरी जोहरा जबी, जैसे कि हमने कहा। और याद आ जाती है ना पूरी, देखिए क्या माहौल था, है ना, बलराज साहनी, राजकुमार जी, ऑल द ग्रेट्स वर देयर, तो बहुत कमाल का आलम था। आइए सुनते हैं ये गीत।

राजकुमार जी भी ऐसे ही अभिनेता थे जिन पे पूरा हिंदुस्तान कुर्बान था। राजकुमार जी की फिल्म एक और जिसने बहुत धूम मचाई वो थी फणी मजुमदार की ऊंचे लोग। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। फिर राजकुमार जी ने वक्त के निर्माताओं के साथ फिर से मिलके हमराज फिल्म में काम किया। अरे हमराज फिल्म कितनी ज़्यादा चली थी। इस फिल्म का वो गीत नीले गगन के तले धरती का प्यार पले कितना मशहूर हुआ था, रेडियो पर भी और संगीत की महफिलों में भी। इसके बाद मेरे हुजूर, नीलकमल फिल्मों के बाद भी और भी फिल्में आईं। 70, 80, 90 तक के दशक में काम किया। 1970 में आई थी चेतनानंद जी की फिल्म हीर रांझा, जो मैंने आपको गीत सुनवाया था, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्या कमाल की एक्टिंग की थी। ये रांझा बनेंगे तो भी राजकुमार तो राजकुमार हैं, है ना। तो 1972 में राजकुमार जी ने कमाल अमरोही के साथ फिल्म पाकिजा में भी ये नज़र आए थे। इसके बाद इन्होंने

बहुत सारी फिल्में आगे की हैं जिनकी फहरिस्त इतनी लंबी और इतनी दिलचस्प है। हमराज मैंने बताया, मेरे हुजूर, नीलकमल, बुलंदी, चंबल की कसम। तो आपने कई बार सौदागर, आपने कई बार ये देखा होगा कि आप फिल्मों के नाम कई बार याद नहीं रख पाते या उनको रिकॉल नहीं कर पाते, पर अगर मैं आपको गीत बताऊं तो ऐसे कमाल कमाल के गीत हैं जो इन्होंने जो इन पर फिल्माए गए। तो अब मैं पशुपेश में हूँ कि आपको किस फिल्म का गीत सुनाऊं। एक नई पहेली, शरारा, राज तिलक, इतिहास, मोहब्बत के दुश्मन, मरते दम तक, पुलिस और मुजरिम, तिरंगा, है ना। तो मैं धर्मकांटा, मैं ये सोच रही थी चंबल नहीं, ये सौदागर फिल्म का गीत, आइए सुनते हैं, क्योंकि अब कार्यक्रम जो है संपन्न होने की कगार पर भी है। तो राजकुमार जी जो है ना, ये इतने कमाल की चीज़ हमें ऐसे अभिनेता ऐसा संदेश देते हैं कि आप जो हैं, अगर आप अपनी यूनिकनेस बरकरार रखते हैं तो दुनिया आपको उसी रूप में स्वीकार करती है। कलाकार बेमिसाल में बात हो रही है राजकुमार जी की, संभवतः ये आखिरी गीत रहेगा इस कार्यक्रम का। कलाकार बेमिसाल, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर आपके साथ हैं हम, रूमी मलिक। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद को एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा। मगरबी बंगाल में कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोज़ा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहाँ तकरीबन 2,600 अफराद हलाक हो गए और हजारों अब भी लापता हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश के इलाकों में कल तक के लिए शदीद और बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा आलमी कप में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। अकीदतमंदों के नाम एक खत में जनाब मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिले फरामोश और नेक लम्हा होता है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर सभी अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे और भक्ति की जारी और सारी रिवायत की अक्कासी होती है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल दोनों रियासतों से शुरू हुई। उम्मीद है

0: इस 57 रोजा यात्रा के दौरान श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी, जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। यात्रा का पहला जत्था श्री अमरनाथ गुफा के लिए ननमान और बालतल के दोनों बुनियादी कैंपों से आज सुबह रवाना हुआ। तफसील हमारे नवनिगार से।
1: बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ हजारों यात्रियों ने आज सुबह अपनी यात्रा शुरू की, जिसके दौरान ये लोग 3,880 मीटर

ब्रिग्स ने मुल्क में 7 रोज के कौमी शोक का ऐलान किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए शदीद जलजिले में हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 2600 हो गई है। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। नौजवानों के उमूर के महकमे ने आज नई दिल्ली में माई भारत की सनती तंजीमों के कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। इस कॉन्क्लेव में एसओचएम, फिक्की, CAIT और CII समेत सरकर्दा सनती तंजीमों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद सनती इदारों को माई भारत के निज़ाम से मुतारिफ कराना और सनती अंजुमनों, कॉरपोरेट इदारों और सरकारी सेक्टर की कंपनियों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए मदु करना है। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कल तक के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। ये पेशगोई भी की गई है कि छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गुजरात गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये मैच कनाडा के वैंकूवर में खेला गया। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदु किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। मगरबी बंगाल में कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोज़ा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है उस

0: विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए।

0: बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जो कि किसान भाइयों के लिए हम लेकर आते हैं दोपहर ढाई बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक। और आज भी हम आ गए हैं आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर, और मैं हूं आपके साथ सुषमा, और मेरे साथ हैं आज
1: विनोद कुमार
0: जी। हम दोनों का नमस्कार।
1: नमस्कार
0: विनोद, हम बहुत सारी बातें करते हैं, फलों की भी बातें होती हैं, सब्जियों की भी बातें होती हैं, अनाज की भी बातें होती हैं, लेकिन आज एक हम ऐसा फल कहेंगे कि जिसमें हम प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और अब क्योंकि बारिश का जब मौसम होता है तो उस फल की डिमांड भी बढ़ जाती है, और कई बार उनकी खेती बाड़ी का भी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो मेरा इशारा आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ।
1: सब बिल्कुल समझ रहा हूँ। और अभी जो आने वाला टाइम है, हम देखेंगे सड़क किनारे इधर उधर आसपास जो हमारे किसान साथी हैं वो भी काफी स्मार्ट हो गए हैं, अपनी जो बागवानी है उसको बड़े अच्छे से, मतलब पहले क्या होता था भाई, लेके जा रहे हैं मार्केट में, रेट उस तरीके से नहीं मिलते थे। तो ऐसी ही एक फल की आज बात करेंगे
0: जी, और बहुत जरूरी है वो फल हम सब के लिए, क्योंकि पौष्टिकता से भरपूर तो होता ही है और भी बहुत सारे गुण होते हैं उसके अंदर।
1: सभी की पसंद
0: जी, सबकी पसंद है। और ये आज का विषय भी हम यही लेकर आए हैं, अमरूद की बागवानी से उद्यमिता, यानी हम एंटरप्रेन्योरशिप तक पहुंच सकते हैं इसकी बागवानी करके। बताइए, बिजनेस का एक बहुत अच्छा ये रूप ले सकता है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि बाग की स्थापना से लेके प्रसंस्करण तक का जो सफर होता है उस दौरान हमें कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखना है। और विनोद इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आज के जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय दे देती हूँ। और डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपको।
2: धन्यवाद आपका।
0: सर हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा जो हमारे श्रोता हैं हम उनको भी बता दें, अगर वो कोई अपना प्रश्न जानना चाहते हैं तो फोन लाइन हमेशा की तरह 2342-1081, और दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो दिल्ली का कोड 011 जरूर डायल करें।
0: बिल्कुल सर। सर अमित सर एक बार फिर से स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं अमरूद की, बहुत सारे फलों की भी यहाँ पर बाग लगे होंगे लेकिन आज हम अमरूद की बात करें, तो इसका जो समय है वो अगस्त सितंबर या जुलाई से लेकर सितंबर तक का है बाग लगाने का जो समय?
2: पूरे उत्तर भारत में बाग किसी भी फल वृक्ष का, अमरूद का भी लगाने का सबसे अच्छा समय होता है 15 जुलाई से 15 अगस्त, अप्रू 31 अगस्त तक। ये जो बारिश है, बारिश के साथ आर्द्रता है, ये बहुत अच्छा कन्वीनियंट मौसम होता है फलों की वृद्धि के लिए, फलों के सर्वाइवल के लिए और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये बिल्कुल उचित समय है बाग लगाने का। इसकी तैयारी जरूर किसान भाई अप्रैल से शुरू कर देते हैं,
1: क्योंकि कर दिए होंगे। बिल्कुल।
2: हाँ बिल्कुल। और जिन जिन लोगों ने अपनी तैयारी करी है वो बिल्कुल 15 जुलाई के बाद में अपने पौधे, जहां जहां से उन्होंने अपने पौधे बुक किए हैं, अपने पौधे लाके रखें। पौधे लगाने के 2 दिन पहले अपने खेत पे पौधे पहुंचा के उन्हें छायादार जगह पे रखें, उनमें थोड़ा

0: के छिड़काव करके वो एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, उसके बाद में आराम से एक जिस दिन भी बारिश आई उस दिन फिर शाम को या नेक्स्ट डे आप आराम से पौधे लगाएं और 100% सक्सेस रहता है उसमें।
1: बिल्कुल सर, ये तो बात है कि भाई जिन लोगों ने खेत की तैयारी कर ली है, कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो प्रोग्राम सुनते हैं वहाँ से वो इंस्पायर होके फिर चीज़ों करना चाहते हैं, तो क्या पौधे अभी भी वो लोग बुक करा सकते हैं? और अगर खेत की तैयारी नहीं भी करी है तो अपना आजकल तो हम देखते हैं ट्रैक्टर से भी गड्ढे खोद के और खाद वहाँ पे भी जो देना है वो दे सकते हैं, अगर उन्होंने पुलाव वगैरह खेत में अच्छे से चला रखे हों पहले।
0: आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि गर्मियाँ आते ही जब अपनी रबी की फसल कट जाए तब हम अप्रैल 15 के बाद से खेत की तैयारी शुरू करते हैं। उसके कई लाभ होते हैं। एक तो हम जब गड्ढा खोद के रखते हैं सोलराइजेशन हो जाता है, अगर कहीं हार्ड पैन है और आपको सड़ी हुई गोबर की खाद मिला के रखनी है उसको भर के रखना है। ये तो हुआ एक नॉर्मल रूटीन में। अब आपने पूछा है कि अगर अभी भी कोई, तो इन जनरल ICR की जितने भी सेंटर्स हैं जो कि फलों वृक्ष पर काम करते हैं उनकी बुकिंग अप्रैल माह में ही शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ जो NHB की एक्रेडिटेड नर्सरीज हैं, किसान भाइयों को उन्हीं जगहों से पौधे लेने हैं जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की एक्रेडिटेड नर्सरीज हैं या ICR के सेंटर्स हैं,
1: मतलब प्रमाणित पौधा
0: या राष्ट्रीय जितने भी हमारे नॉर्थ सिस्टम या कृषि विश्वविद्यालय के जो सेंटर्स हैं, तो वहाँ से पौधे पहले से ही प्री बुक होते हैं
1: जी।
0: अगर आपके पास में पौधे उपलब्ध हैं तो तब भी अभी 15 दिन का समय है, आप अपने लैंड को प्रिपेयर करके गड्ढे के गड्ढे से दूरी आराम से तय करके उसके बाद में आप पौधे लगा सकते हैं।
1: जी सर, तो अभी जैसे सर मान लो गड्ढों की तैयारी अभी नहीं करी है, डायरेक्ट वो अगर खेत में लगाएं कि भाई गड्ढा खोद लिया अपना और जो भी उसको जरूरी खाद देना है इस तरीके से, क्या ऐसा भी कर सकते हैं? बल्कि हम देखते हैं आमतौर पे जमीन अब छोटी हो गई है, जिन किसान साथियों को खेत में नहीं लगाने हैं अपने, भाई कहीं खाली जगह है प्लाट में लगाने हैं घरों में लगाने हैं, तो वो लोग तो तैयारी नहीं करते, वो तो ये होता है कि बारिश का सीजन आ गया अब मैं पौधा ले आऊंगा और अपने यहाँ लगा लूंगा।
0: वो जो विषय है वो विषय ऐसा है कि जब हमको कुछ, आपने बोला ना कमर्शियल बागवानी, जब हमें कमर्शियल करना होता है तो हमें कितने पौधे लगाने हैं, कम से कम हमें 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ की प्लांटेशन जब हम प्लान करते हैं कम से कम मिनिमम 1 एकड़ की, तभी हम उसको व्यावसायिक रूप दे सकते हैं।
1: वो तो तैयारी
0: 5-7-10 पौधे जिसको लगाने हैं वो इस समय आराम से गड्ढा करे। गड्ढा क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं, गड्ढे से क्या होता है आपकी 1 मीटर की ऊपर से नीचे तक की मिट्टी ऊपर नीचे करके, अगर कहीं हार्ड पैन है नीचे कुछ गंदगी है वो सब अलग हो जाता है, उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ट्राइकोडर्मा कंपोस्ट सब मिला के उसको दोबारा से रिफिल करते हैं, फिर उसमें पौधा लगाते हैं, तो उसकी भोजन की जो आवश्यकता है पौधे की वो उससे पूरी हो जाती है। जब हम कमर्शियल प्लांटेशन की बात करते हैं तो हमें डिस्टेंस का ध्यान रखना है, हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का ध्यान रखना है, हमें उसके पूरे सोलराइजेशन करना है, हमें ट्रेडिंग प्रूनिंग का ध्यान रखना है, हमें वैरायटीज का ध्यान रखना है कौन सी वैरायटी लेनी। अभी आप डिमांड करेंगे किसी अच्छी वैरायटी की तो 99% पौधों की बुकिंग हो चुकी है,
1: तो अब तो वैरायटी के
0: क्योंकि 1 साल पुराना पौधा हम लोग देते हैं तो जिस उसी हिसाब से जैसी डिमांड आती है वैसे ही पौधे का मल्टीप्लाई किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो सब एक डिमांड सप्लाई का सीन है, इसलिए हमें पहले से ही, जो किसान भाई अभी लगाना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं इन सारे सेंटर्स पे, अगर पौधों की उपलब्धता है तो बिल्कुल
1: वो ले सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है, जो प्रमाणित पौधा है वहीं से लें, नहीं तो भाई पता लगेगा ये आपको किस्म बता के दे दी जाएगी लेकिन जब वो 5-6 साल उसको हो जाएंगे आपके खेत में बाद में देखोगे फल उस पे कुछ हो रहा है जो कि किसी भी कमर्शियल तरीके से सही नहीं है।
0: और सरकार बहुत अच्छे प्रोग्राम चला रही है इसमें, इसलिए गुणवत्ता युक्त फलों के पौधों की उपलब्धता पिछले 10 सालों में कम से कम इसमें 100% की वृद्धि हुई है।
1: तो सर इसमें ये तो चलो ठीक है, अभी जिन साथियों ने तैयारी कर रखी है तो उन्होंने अपनी किस्में इसमें ले रखी होंगी, लेकिन हम बात करें जिन साथियों ने 1 साल हो गया पौधे लगाए हुए या फिर अभी बाद में लगाए 6 महीने जिनको हुए हैं, तो फरवरी में मतलब जिन्होंने पौधारोपण किया था, उन पौधों की हमें क्या देखभाल करनी है बारिश के मौसम में?
0: हाँ देखिए, बारिश के मौसम में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो 6 महीने या साल भर पुराने पौधे हैं उसका तो हमें ध्यान रखना है कि उसकी सदाई एवं क्रंदन कैसे करना है। उसकी सदाई एवं क्रंदन का समय ये नहीं होता, वो होता है अप्रैल और मई का महीना। अप्रैल का महीना इस पूरे NCR वाले क्षेत्र में 15 मार्च से 15 अप्रैल तक हमें देखना है, नीचे से कोई कल्ले फूट रहे वो निकाल देना है, शाखाएं एक दूसरे की तरफ भाग
1: नीचे
0: रही
1: से है। मतलब जो हमारा जो अगर कलमी पौधा है जहां से हमारी कलम है उसके नीचे वाला जो तना है वहां से हटा दें हम।
0: हाँ, जितने भी सकर्स निकल रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो अपनी जमीन से ऊपर वाला भाग है उसके नीचे से आपको जब भी पत्ते निकलते हुए होंगे तो समझ लीजिए वो रूट स्टॉक से स्प्राउट हो रहा है और हमें उसको निकाल देना है, पहली चीज। दूसरी चीज इस समय ध्यान रखना है कि कई बार ना बहुत ऊपर ऊपर भागता है पौधा, तो हमें ऊपर से टिपिंग कर देनी है, जिससे क्या होगा हमारी साइड की जो चार शाखाएं हमने चारों डायरेक्शन में छोड़ रखी उनमें स्ट्रेंथ आएगी, उसमें नए कल्ले फूटेंगे।
1: मतलब जिसको अमरूद की प्रूनिंग करना,
0: हाँ, अमरूद का सदाई एवं कृंतन ट्रेनिंग एवं प्रूनिंग का वो चीज ध्यान रखनी है अप्रैल मई के महीने में। इस समय में क्या

0: है, क्योंकि अगर बहुत तेज बारिश हो रही है,
1: हाँ,
0: बहुत तेज बारिश हो रही है, तो अमरूद में जल भराव ना हो। क्या होता है, जल भराव उकठा जैसे रोग का कारण बनता है, तो हमें जल भराव होने से रोकना है। और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी जो बाग लगे हुए हैं उसमें हमें एक चीज का ध्यान देना है कि इस समय फल मक्खी का बड़ा प्रकोप होता है। तो अमरूद के पौधों में 90% जो फलन आता है वो बरसात की फसल में आता है।
2: अच्छा।
0: और बरसात की फसल की गुणवत्ता फसल लेने के लिए, और हमको जैसे कि हमारे पूरे देश में आजकल रासायनिक खेती की जगह हम लोग अब नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि अमरूद में इस समय आप देखेंगे कि पूरे बाग फलों से भरे हुए हैं, फलों का आकार बेर के साइज का हो गया है। और यही एक समय है जिसमें फल मक्खी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो किसान भाइयों को बहुत अच्छे से बैगिंग मटेरियल अब उपलब्ध है। जब हम बैगिंग करना शुरू करेंगे तो हमारे मन में एक आता है, इतने सारे फलों की बैगिंग कैसे करेंगे? इसी समय बैगिंग करना है, इसी समय फ्रूट थिनिंग करनी है। आप देखेंगे कि अमरूद के एक प्रोह में अपन को 3 से 4 फल रखने हैं, यानी एक पौधे में करीब हमको 40 से 50 फल रखने हैं 3 साल और उसके ऊपर के पौधों में। इन पौधों की साइज आपकी डबल हो जाएगी, इनके फलों की साइज, और अपन ने बैगिंग किया, इनमें एक भी फल मक्खी का प्रकोप नहीं होगा। बैगिंग के साथ साथ, फ्रूट थिनिंग के साथ साथ, तीसरा सबसे जरूरी काम है वो है हमें फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना। और फेरोमोन ट्रैप में भी किसान भाई याद रखें कि आजकल कोई बोलता है स्लो रीजिंग है, कोई बोलता है लॉन्ग है, लेकिन फिर भी 21 दिन के बाद में हमें वो फेरोमोन ट्रैप के जो गत्ते हैं जिसमें कि हमने फेरोमोन लगा के रखा हुआ है उसको हमें बदलते रहना है। इससे किसान भाई तीनों काम करेंगे तो कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, फलों का स्वाद भी अच्छा होगा, फलों की साइज भी अच्छी होगी, उत्पादन भी अच्छा होगा, और कोई केमिकल का खर्चा नहीं होगा। इन सारी चीजों का किसान भाई याद रखेंगे तो उनकी बहुत अच्छी फसल हो जाएगी, और इसके साथ साथ सर्दियों की फसल भी बढ़ जाएगी जब यहाँ पे हम फ्रूट थिनिंग करेंगे और बाकी सारी चीजों का जो मैंने बताया ध्यान रखेंगे। तो
2: जी, इसके अलावा जैसे खाद पानी की आपने बात की, तो समय अंतराल भी एक बहुत ज़रूरी होता है। उनको पता नहीं होता, हमारे जो किसान होते हैं, कि कितने अंतराल में पानी की ज़रूरत पड़ेगी हमारे इस बागवानी में।
0: जो पुराने किसान हैं, हमें अपने मन में समझना है कि वो देख के समझ जाते हैं मिट्टी पकड़ के, मिट्टी को उठा के, कि अब मिट्टी में मॉइस्चर कम हो रहा है।
2: अनुभवी,
0: बिल्कुल। तो एक तो हमारे किसानों को बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जो नए लोग हैं, कई लोग आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की, जैसे आपने बात की, तो कई लोग हॉर्टिकल्चर में अब एंटरप्रेन्योरशिप ढूंढ रहे हैं। तो इन जनरल जैसे बरसात की फसल है तो हमको अब सब कुछ हमारे मोबाइल पे उपलब्ध हो गया है। हमें बरसात का प्रेडिक्शन भी पता चल जाता है, हमें ये भी पता चल जाता है कि 3 दिन सब बारिश नहीं होने वाली है। तो जो नए पौधे हैं उन्हें 3 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी है, और जो पुराने बड़े बाग हैं उनमें अपन को 7 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी है। अगर हम सिंचाई के भी तरीकों की बात करें तो अमरूद में, क्योंकि उकठा बहुत खतरनाक बीमारी होती है, और उकठा का मुख्य कारण फ्लड इरिगेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि
1: खुली
0: सिंचाई कर लेते हैं। अमरूद में किसान भाइयों को मैं निवेदन करूंगा कि एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है ड्रिप इरिगेशन, जिसको हम टपक सिंचाई कहते हैं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे, थाला बनाते हैं हम लोग अपने पौधे के पास में, और उसके बगल में नाली बनाते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारा पानी भी बचेगा, हमारे पौधे की उम्र भी अच्छी होगी, हमारे पोषण तत्वों का नुकसान भी नहीं होगा, हमारे खेतों में बीमारी भी नहीं होगी, और इसके साथ साथ हमारे सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि हम उसमें किसी तरीके का खरपतवार भी अननेसेसरी पैदा नहीं होगा, तो हमें कोई केमिकल नहीं डालना पड़ेगा, कोई लेबर का इंटरवेंशन नहीं होगा। तो अगर सिंचाई का ये तरीका अपनाएंगे तो आपको एक तो आपका पैसा भी बचेगा, पौधा भी बचेगा, मिट्टी का पोषण भी बनेगा, और साथ में हमें किसी वीडिसाइड का स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो चीज़ें जैसे अभी आप नेचुरल फार्मिंग पे कर रहे थे, जैविक पे कर रहे थे, तो पहले तो किसान साथियों को जो अपना खेत है उसकी जो तासीर है, कंडीशन है, वो सुधारनी पड़ेगी, इसमें उसको जैविक बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा, अभी जैसे हमने बात करी, ये तो लागत बढ़ जाएगी यहाँ पे कि भाई हर पौधे के ऊपर मैं उसकी बैगिंग करूँगा। चलो ठीक है, ट्रैप लगाना तो वो एक ईजी है और वो प्रोसेस है, वो करते हैं। क्या कुछ मतलब ऐसे अपने जैविक तरीके भी हैं जिससे कि फल मक्खी से हम अपने पौधों को बचा पाएं, मतलब लेबर कॉस्ट इतनी ना बढ़ा लें?
0: देखिए मैं बताऊँ आपको, कॉस्ट बेनिफिट का रेशियो एक बार आप ही, आपको बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और आपने ऐसा प्रश्न पूछा जो 100% किसानों के मन में आता है। जब हम थिनिंग करते हैं और बैगिंग करते हैं तो जो हमारी कॉस्ट आती है वो पर फल करीब 10 से 30 पैसे बढ़ती है टोटल कॉस्ट से। और जब उसका हम फायदा देखते हैं, थिनिंग करने से क्या हुआ कि जो हमारे पौधे की जो फलों की साइज है, फलों की साइज में 1.5 से 2 गुना वृद्धि हुई, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई। तो आपकी जब साइज में 1.5 से 2 गुना वृद्धि हुई तो एक कॉमन सा वो है फंडा है कि आपकी ईल्ड जो है वो 30 से 50%
1: बढ़ जाएगी,
0: आपको उत्पादन का लागत हुआ। जब हमारे फलों की संख्या कम और अच्छी होती है तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उधर हमको प्राइस भी बहुत अच्छे मिलते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। और जो कॉस्ट की बात की, अल्टरनेट में हम लोग उसमें 10 पर्नियर का स्प्रे करने के लिए बोलते हैं या जो भी और हमारे

0: नीम बेस्ड जो पेस्टिसाइड शुरू हुए हैं उनका, लेकिन थिनिंग के सिर्फ फ्रूट फ्लाई का फायदा नहीं है, इससे हमने जो देखा है फ्रूट की क्वालिटी और फ्रूट की जो चमक है उन दोनों में तो मार्केट प्राइस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इसमें फ्रूट थिनिंग का, और आजकल आप देखेंगे थिनिंग मटेरियल, आप थिनिंग की इतनी अच्छी अच्छी लिफाफे आने लगे, पूरा आप जहां आम के बाग हैं अब आपको कोई भी बाग ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि उन्होंने बैगिंग नहीं कर रखी है। तो ये जो कास्ट का कॉस्ट का जो एग्जांपल है, उन्हीं किसानों ने इसको प्रूफ कर दिया कि हमारी कॉस्ट निकल के आ रही है, क्योंकि जो केमिकल की कॉस्ट है मल्टीपल स्प्रे करने पड़ते हैं, फ्रूट फ्लाई क्योंकि पॉलीफेगस पेस्ट है यानी बहुत सारी फसलों में लगता है, तो अगर हम अपने बाग में स्प्रे भी कर दिए तो कई बार वो दो दिन के बाद तीन दिन के बाद में बाहर से आता है उड़ते हुए और वो यहाँ पे अंडे दे जाती है,
1: अंडे दे जाते हैं और फल जब बड़ा होता है तो बाद में उसमें वो कीड़े,
0: और फिर हमारे पास में कोई कंट्रोल नहीं होता, एक बार अंडे दे दिए। तो इसका कंट्रोल यही है कि जब बेर के आकार का फल हो जाए, इन जनरल तो हम 15 जून से 1 जुलाई तक सारी बैगिंग कर लेते हैं, बरसात आने के बाद में फ्रूट फ्लाई 100% बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल वही है, पहले हम देखते थे विदेशी फ्रूट जो होते थे उन पे बैगिंग आती थी, तो किसान साथियों ने फिर यहाँ भी अब बल्कि पिछले सीजन में मैंने काफ़ी सारे देखे हैं अपने जो वैरायटी हैं, इसार सफ़ेदा है या फिर इलाहाबादी सफ़ेदा है, बड़े बड़े साइज़ के जो अमरूद हैं खूब बैगिंग होके आते हैं और दिखने में
0: मार्केट में
1: स्वाद भी अच्छा
0: होता। पहले एक टाइप का फली दिखता था जो बड़ा हुआ करता था, अब आपको क्योंकि हम थिनिंग कर रहे हैं और हमने पूसा में खुद शोध करके देखा है कि जिसकी एवरेज जो वेट है जिस फ्रूट का वो 140 से 160 ग्राम हो रहा था, बैगिंग के बाद में मुझे 265 से 315 ग्राम का फल मिला, तो आपकी उपज भी बढ़ गई,
1: बिल्कुल
0: क्वालिटी भी बढ़ गई,
1: एक किलो में चार ही अमरूद ले,
0: कोई केमिकल भी नहीं है, नहीं कोई केमिकल भी नहीं, सबसे बड़ी बात है हमें स्वास्थ्य की चिंता करना है, फल कैप्सूल की तरह खाते हैं लोग बाग। और अमरूद के बारे में आपसे बात करूं तो अमरूद एक प्रकार से औषधि फल हो गया है,
1: बिल्कुल
0: जैसे कि मैडम शुरुआत में कह रही थी
2: विटामिन सी,
0: इसमें विटामिन सी है,
2: ए है,
0: विटामिन सी ए, इसके अलावा मैं आपको बताऊं ये फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स है फलों की हम बात करें, और हमारे गट के लिए जितने भी मिनरल्स चाहिए वो इसके बीज में, इसके पल्प में, इसके पील में अवेलेबल है। तीसरी चीज हम बात करें पेट संबंधित विकारों का, ये रामबाण औषधि की तरह लोग उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर इसके हम एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट की बात करें तो इसमें आप सोचिए कि विटामिन सी भी हम लोग बोलते हैं कि संतरे से तीन गुना विटामिन सी आपके अमरूद के अंदर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमने कोविड के सामने देखा है कि प्रोटेक्टिव फ्रूट्स जिसको हम बात करते हैं कि हमको अगर रेगुलर इस फ्रूट का कंजम्पशन करें तो हमें किसी तरीके के कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है,
2: इम्यूनिटी
0: बूस्टिंग का काम करता है, आपकी स्कर्वी रोकने का काम करता है, आपके पेट को साफ रखता है, और अगर आपका पेट साफ है तो सब कुछ बढ़िया है।
1: तो सब इसमें एक चीज और भी, अमरूद की जब बात कर रहे हैं इतनी सारी अच्छाइयां आपने बताई है, अब हम देखते हैं कि ज़्यादा यील्ड के चक्कर में हम लोग अमरूद की जो मिठास है उसको खो देते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है, और देसी तरीके की अगर हम बात करें तो कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं।
0: देखिए मिठास का उपज का सीजन का डायरेक्ट लिंक है, जब हमें अच्छी मिठास के फल चाहिए तो हम बोलते हैं कि आप फसल चक्र में परिवर्तन करो, बरसात की फसल को कम करके सर्दियों की फसल बढ़ाओ। बरसात की फसल में नेचुरल है कि जब
1: साल में एक बार फसल
0: नहीं, आप देखिए किसान को जिस हिसाब से रकबा कम हो रहा है हमें समझना पड़ेगा कि उस आदमी को भी आय चाहिए
1: जी,
0: है ना। तो आप 30% फसल आप बरसात की लीजिए बैगिंग और फ्रूट थिनिंग करके, इससे आपको इनकम मिलेगी, क्योंकि आपको और हम स्वाद के लिए अमरूद खाते हैं, लेकिन अमरूद अब दवाई की तरह अपने हर घरों में उपयोग होने लगा है। डेली फ्रूट्स की एक रिक्वायरमेंट अमरूद से आदमी पूरी करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे स्वास्थ्य की बहुत सारी चीजें ठीक रख रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसमें बरसात में भी फसल मिलेगी और सर्दियों की फसल बढ़ जाएगी। सर्दियों की फसल में गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, वो नेचुरली फ्रूट फ्लाई फ्री होता है, और उसका जो आप मिठास की बात कर रहे हैं बरसात की और सर्दियों की फसल में 4 डिग्री का मिठास का अंतर हो जाता है। तो मीठे फल खाइए सर्दियों में, बरसात वाले फल स्वास्थ्य के लिए खाइए,
1: स्वास्थ्य के लिए खाइए, लेकिन सावधान ये रहे कि कीड़ा उसके अंदर ना हो।
0: हाँ, इसलिए किसान भाई बैगिंग करेंगे, फ्रूट थिनिंग करेंगे तो उनके साथ ऐसी दिक्कत
1: नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात।
2: बिल्कुल सर, और भी आपसे प्रश्न पूछेंगे। सर हम बात करेंगे प्रसंस्करण की, यानी प्रोसेसिंग की भी बात करेंगे, क्योंकि मूल्य संवर्धन भी बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारी चीजों के पल्प का इस्तेमाल है, आगे के लिए फ्यूचर के लिए बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाता है मार्केटिंग। लेकिन एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, म्यूजिकल अंतराल, जो कि

0: रहे हैं बागों की ही, वो भी अमरूद के बागों की, और बहुत सारी जानकारी हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं अमित गोस्वामी जी दे रहे हैं। लेकिन सर, हम प्रोसेसिंग की बात करें, उसके मूल्य संवर्धन की बात करें, तो कितनी संभावनाएं होती हैं
1: अमरूद में? क्योंकि आप देखेंगे कलरफुल फ्रूट है, पिंक के बहुत सारे शेड्स आ गए हैं, और व्हाइट तो अवेलेबल है ही। एक तो आप देखेंगे गुआवा नेक्टर के नाम से मार्केट में जूसेस बहुत सारी कंपनियां जूस बना रही हैं, और उसमें वो बीज भी साथ में आजकल थोड़ा सा क्रश करके थोड़ा सा बीज की भी मात्रा रख देते हैं अमरूद में, सारा का सारा। तो एक तो सबसे बड़ा इसका उपयोग है। अब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, कुकीज अमरूद की बना रहे हैं।
2: कुकीज
1: किसी को नहीं पता होगा, पूरे संस्थान में पूरा पूरा इसमें शोध हुआ है। दे आर प्रिपेयरिंग कुकीज आल्सो, जेली में अमरूद से अच्छी जेली बहुत मुश्किल से, अमरूद की जेली का बहुत अच्छा रोल है, और वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। इसके साथ साथ गुआवा पाउडर की तरह आजकल लोग गुआवा को ड्राई करके गुआवा पाउडर को डिफरेंट रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स में डाल रहे हैं। ये तो हो गया वो प्रोसेसिंग वाला पार्ट सारा का सारा। इसमें तो सारे के सारे ये सारी चीजें रूटीनली ही पूरी की पूरी अमरूद की यूज की जा रही है। अब फ्लेवर कंपाउंड के रूप में इसका फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करके फ्लेवर के भी मिक्सिंग होने लगी है। अमरूद की जो लीफ है, अगर हम बात करें कि सिर्फ फलों की, अमरूद की लीफ का 150 से अधिक आयुर्वेदिक तरीके से यूज कर रहे हैं बीमारियों को दूर करने के लिए। इसकी जो ऊपर की ट्विग होती है, जो छोटी छोटी बच्चियां होती है जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है, उसको सिर्फ उबाल के उसका डिकॉक्शन की तरह उसको सिरप बना बना के लोगों को उसका काढ़ा बना बना के अमरूद का, मतलब पत्तियां भी अब अमरूद की लोगों के नॉर्मल रूटीन में आने लगी है। किसी के मुंह में छाले हो रहे हैं वो अमरूद के उसका काढ़ा पीता है। छाले क्यों होते हैं? पेट के कारण। अमरूद खाता है, अमरूद की पत्तियों का
2: काढ़ा पीता है। जो पायरिया के पेशेंट होते हैं उनको भी, और बल्कि इवन डॉक्टर्स के पास जैसे कई बार जाते हैं, टूथ से रिलेटेड कोई समस्या होती है, जब वो अपना मशीन से क्लीनिंग व्लीनिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि अमरूद के पत्तों का आप इसमें गरारे कीजिए, तो इस तरीके से वो गाइड करते हैं।
1: तो अब अमरूद ना आप एक बहुत आगे कितना मल्टीपल यूजेस हो गए हैं इसके, ये सारी चीजों में अमरूद का प्रयोग हो रहा है। आपने प्रोसेसिंग की बात की, ये फ्रूट फिक्स क्यों होता है प्रोसेसिंग में? इसकी बरसात की फसल बहुत ज्यादा आती है, तो जब कोई भी फल ग्लट में आता है तो उसका अल्टरनेट यूजेस आपके पास होना चाहिए। तो अगर हम फल मक्खी से रहित वो फल हम पहुंचा सके प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के पास में, तो एक बहुत अच्छी इनकम का स्रोत वो भी हो जाता है अमरूद का।
2: तो उसमें एक चीज और भी है, जब प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं, इसके कमर्शियलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सर इसमें जैसे हमारे किसान साथी हैं, पौधे ले लिए, अभी मैं 4 एकड़ में मैंने मेरा बाग है, मैं उसको 7-8 एकड़ में बढ़ाना है, तो सर क्या मैं जो मेरी ग्राफ्टिंग टेक्निक्स हैं क्या वो मैं प्रशिक्षण लेके और मल्टीप्लाई अपने पौधों को कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको कमर्शलाइजेशन कर सकता हूँ?
1: बहुत अच्छे से देखिए, जो जो कि संस्थान द्वारा रिलीज वैरायटीज हैं, हम जो कमर्शियल नर्सरीज हैं उनके साथ हमारा MOU साइन होता है, हम उसको अपना ब्रीडिंग मटेरियल जो हमारा रिलीज मटेरियल है उसकी स्टैटिस्टिक्स देते हैं। अमरूद में जैसे आपने बोला ग्राफ्टिंग के लिए, तो हम बेज ग्राफ्टिंग के लिए आजकल अमरूद का काफी कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ बहुत पुरानी तकनीक है लेयरिंग
2: है, बिनियर ग्राफ्टिंग है।
1: हाँ, तो एक तो आपकी ग्राफ्टिंग और दूसरी लेयरिंग, इन दोनों तरीके से अमरूद का हम प्रवर्धन कर सकते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि जब भी हम लोग किसी नई, आपके पास में अगर बाग लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो आप देखेंगे बरसात में बहुत सारे फल नीचे भी गिर जाते हैं, आप उनको निकालिए, उनका सीड निकालिए, उनको एक बेड बना के उनकी सोइंग कीजिए, उसको रूटस्टॉक की तरह यूज कीजिए जहां पे, और ग्राफ्टिंग के लिए जो वैरायटी आपके बाग में लगी है उसमें भी आप देखते हैं कई पौधों में बहुत अच्छी आपको लगता है कि इसका अच्छा है मदर प्लांट जिसको,
2: मिठास अच्छी है, फल का आकार अच्छा है,
1: उसको उसके फूल, उसमें फिर फल मत लीजिए। अगर आपको नहीं बाहर से खरीदना है तो बड़ा सिंपल तरीका है, उसी में ही आप उसकी सियान यूज करके और मूल ग्रंथ का मैं आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान दीजिए कि फिर हमें जिससे सियान लेना है, फिर उसमें हम कम से कम फसल लें, फलों की फसल लें, जिससे कि उसकी एनर्जी उसकी सियान में पूरी की पूरी रहे और वो बहुत जल्दी पौधे में परिवर्तित हो सके।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। और ये जो एक कहते हैं कि एक ऐसी फसल है जिससे कि सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी इसकी बहुत मांग है, और खाड़ी देश हैं जैसे अमेरिका है, और अमेरिका के यूरोपीय बाजार, खाड़ी देशों की अगर हम बात करें तो उसके अलावा यूरोपीय बाजार में भी इसकी बहुत डिमांड हो रही है। तो हमारे देश के जो किसान हैं उनके लिए ट्रेनिंग की गवर्नमेंट क्या क्या प्रोविजंस देती है कुछ इस तरह की, ताकि हम हमारे जो अमरूद के
1: इन सारी चीजों में अपेडा जो हमारी एजेंसी है, अपेडा बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, उनके पास में ट्रेनिंग और जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी की सारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें होता है। जो आपने खाड़ी देशों को बुलाया, बिल्कुल हमारे देश के अमरूदों की अच्छी खासी खेप खाड़ी देशों में जाती है। और अगर हम भारत की भी बात करें तो 25 देश के, अपने देश के 25 राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिला के कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं अमरूद का। देखिए इसको जरा, इसकी इकोनॉमिक्स समझिए।

0: किसी भी क्रॉप की डिमांड अगर 4 गुना बढ़ गई है, किसी क्रॉप का रकबा अगर 5 गुना बढ़ गया है, किसी क्रॉप का प्रोडक्शन अगर 5 गुना बढ़ गया है, मतलब डिमांड और सप्लाई बिल्कुल मैच खा रही है। इस देश में 150 के ऊपर अमरूद की प्रजातियां हैं। पूसा संस्थान ने अभी 4 प्रजातियां निकाली हैं। ऐसे ही हमारा लखनऊ से, बेंगलोर से, यूनिवर्सिटीज से कंटिन्यूसली अमरूद की प्रजातियां निकल रही हैं। मतलब किसानों में नई नई प्रजातियों का क्रेज है और हमारे जितने भी अमरूद के साथ में समस्याएं उनको दूर कर करके नई नई प्रजातियां निकाली जा रही हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उससे हमें इनकम तो अच्छी है ही, जल्दी इनकम है, कम लागत में वो फलों की खेती हो जाती है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो किसान जो हमारा अल्टीमेट यूजर वो है, जिसके लिए हम सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, आप और हम लोग, उसको इसका बेनिफिट बहुत मिल रहा है।
1: बिल्कुल, मतलब अच्छे से अगर चीजें मैनेज करें तो काफी अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सर। और एक चीज और भी है सर, अभी जब बात कर ही रहे हैं अमरूद की, लास्ट तक हम जा रहे हैं, तो इसमें जब बात आती है अमरूद की तुड़ाई, वो किस अवस्था में हम करें और ग्रेडिंग का कैसे ध्यान रखें?
0: देखिए, बहुत अच्छे से अमरूद में जब भी आप कोई बाग लगाते हैं तो उसकी जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, 30 से 45 दिन तक अमरूद की तुड़ाई चलती रहती है धीरे धीरे।
1: बिल्कुल,
0: उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कलर टर्न। जब वो हरापन छोड़ के हल्का सा हरापन कम होना शुरू हो, बिल्कुल आइडल स्टेज होता है वो तुड़ाई का। साइज की ग्रेडिंग की आपने बात करें तो इन जनरल वेराइटी का एक ट्रेड होता है कि अप्रोक्सीमेटली, मतलब अनुमानतः, जैसे हम बात करें हिसार सफेदा की, जैसे आपने बात की, तो 160 से आपका 200 ग्राम तक का वो फल का होता है। फलों की ग्रेडिंग में आपको ध्यान देना है कि बहुत छोटा फल, तो जब आपकी शुरुआत के जो फल गिर जाते हैं, आप किसी भी फसल में देखेंगे छोटे छोटे फल शुरुआत में सबसे पहले पक जाएंगे, उसके बाद में फलों की साइज में ना बहुत यूनिफॉर्मिटी सी होती है, लेकिन हार्वेस्टिंग करने के बाद में हमें प्री कूलिंग यानी पानी में उनको रख के उसको फिर अच्छे से निथार के और कोशिश करें कि हम उसमें कोई भी ऐसा नीचे पैडिंग मटेरियल लगा के अमरूद को रखें, या सबसे अच्छा होता है जो आप लोग बड़े अच्छे से करते हैं, अमरूद की पत्तियां के साथ साथ अमरूद की तुड़ाई कर लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप उसमें एक तो उसको एक होता ना एक नेचुरल सा वो आता है पीलिंग इफेक्ट होता है, और वो पैडिंग मटेरियल का भी काम करता है। दोनों काम साथ में करेंगे तो अमरूद की अच्छे से पैकिंग भी हो जाएगी और मार्केटिंग भी हो जाएगी।
2: बिल्कुल, और बस ऐसे ही लगता है कि बाजार में अभी पेड़ से टूट कर ही आए हैं।
0: हाँ।
2: तो उसकी खूबसूरती बढ़ाता है और वो दिखता है कि ताजगी बनी हुई है।
1: ताजगी बनी हुई है और हाँ। इस ताजगी को बरकरार रखने के लिए सर एक आखिरी सवाल है कि अब जो कीड़े आ जाएंगे उनसे कैसे बचाव करना है?
0: मैंने शुरुआत में ही बताया था, 3 चीजें बस किसान को याद रखनी है। फल मक्खी के निदान के लिए आपको थिनिंग करनी है, बैगिंग करनी है और फेरोमोन ट्रैप लगाना है। मिथाइल यूजेनाइल का ट्रैप होता है, मार्केट में इतने अच्छे से उपलब्ध हो गए हैं, इन सब चीजों में हमारी उपलब्धता बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं, आप उसका भी इस अवस्था में 2 स्प्रे करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से फल मक्खी को थोड़ा दूर करता है। बट ये शुरुआत की जो 3 चीजें बताई हैं हमने, उसका ध्यान रखें। दूसरी चीज ध्यान रखें जो आपकी फल मक्खी के अलावा समस्या है, वो है नेमेटोड की और बिल्ट की। बिल्ट से बचाने के लिए, उकटा से बचाने के लिए पानी ना भरने दें। आपने भी जैसे बोला अभी चर्चा की कि हम लोग तने के किनारे पे मिट्टी चढ़ा दें, थाला बना लें और कोशिश करें कि बरसात होने के बाद में हम जल निकास का उचित प्रबंधन करके रखें। गर्मियों में कोशिश करें किसान भाई हर बार इंटरक्रॉप में कोई हरी खाद का प्रयोग जरूर करें,
1: जरूर करें।
0: आपके पोषण की 70% रिक्वायरमेंट इसी से पूरी हो जाएगी। उचित वैरायटी का चयन, इन सब चीजों का साथ आपको बहुत अच्छी आय देगा,
1: ध्यान रखना है। बिल्कुल
2: बिल्कुल सर, अमित गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी सी जानकारी दी आज की फसल के बारे में, जो हम बात कर रहे थे अमरूद के बारे में। लेकिन इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और बताना चाहेंगे कि ये जो एक अच्छी फसल है, इससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाइए और उद्यमिता को बढ़ाइए और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, इसका इस्तेमाल भी करें, खाते रहें। और इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं विनोद।
1: बिल्कुल,
2: आज्ञा लेते हैं अपने सभी किसान भाइयों से, दीजिए इजाजत। तो इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और कार्यक्रम का संयोजन था शिवनंदन लाल जी का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा

0: यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश वाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परम्परा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली राज्य सरकार के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था और विधायी प्रक्रियाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। आज बंगाल की जनता ने मतदान के माध्यम से स्थिति बदल दी है। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। और मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has described the annual Amarnath Yatra as an eternal chapter in the spiritual tradition and cultural unity of the country. He said the divine darshan of Baba Barfani is an unforgettable and deeply auspicious experience in the lives of millions of devotees. He also extended his greetings to devotees undertaking the annual Amarnath Yatra in Jammu and Kashmir. In a letter written to the pilgrims, the Prime Minister also urged devotees to take 5 resolutions during the pilgrimage. These include maintaining cleanliness throughout the yatra, strictly following all safety and administrative guidelines, supporting the local economy by spending at least 10% of their travel expenses on local products under the Vocal for Local initiative, gifting a sapling to a sibling on Raksha Bandhan to promote the Ek Ped Maa Ke Naam campaign, and carrying the spirit of nation first by performing their duties with honesty and contributing to the vision of a Vikasit Bharat. Meanwhile, the annual Sri Amarnath Ji Yatra, which began officially this morning, is proceeding smoothly from both Nunwa and Pahalgam and Baltal routes. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The finance minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Vikasit Bharat 2047. She called for strengthening the India-France strategic partnership to achieve shared prosperity. She said India and France are trusted partners in shaping the global AI ecosystem. She noted that this partnership offers new opportunities in trusted AI, digital infrastructure and next-generation technologies. Highlighting the growing economic ties, Ms. Sitharaman said bilateral trade between the two countries has doubled over the past decade. She also appreciated the presence of around 1,000 French companies operating in India. A 2-day orientation program for the newly elected members of the West Bengal Legislative Assembly was inaugurated by Lok Sabha Speaker Om Birla today at the New Town Convention Center in Kolkata. Om Birla was given a guard of honor before the inauguration ceremony. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari, Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju and other dignitaries were present in the inaugural ceremony. Addressing the ceremony, Lok Sabha Speaker Om Birla said, alongside a thorough understanding of the legislative process and system, it is essential for legislators to make effective use of new technologies, innovation, AI and digital technology.
4: This is a time for digital innovation and AI technology. The digital parliament brings debate, discussion, government policies, laws, welfare initiatives and budget information into a single platform. It provides access to both the union budget and the state budget, making governance more transparent and accessible. Under the leadership of our Prime Minister, all government ministries have been brought together under the digital parliament. It enables citizens to stay informed about the parliamentary proceedings and consequently debates and discussions from across the country.
3: India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Ministry of External Affairs said the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela. The Indian Embassy in Venezuela has said India's humanitarian relief efforts in the South American nation have received widespread acclaim from the public for its professionalism and quality of service. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez has declared 7 days of national mourning as the death toll from the powerful earthquakes that struck the country on the 24th of June rose to 2,595. In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. And with that, we end this news bulletin.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं अपनी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल को। जी हाँ, और ये कार्यक्रम है आपकी पसंद का, यानी कार्यक्रम मन भावन, जहां आपके मन के गीत की फरमाइशें आप हम तक पहुंचाते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, लिख भेजिए, नोट कीजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldair@gmail.com। और सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, जिसकी फरमाइश हमसे की है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं राजू मिगलानी जी, राजेश वर्मा जी, विजय जी, सीताराम जी, बोधराज जी और साथ ही विजय जी। ये सब सुनना चाहते हैं किशोरदा की आवाज़ में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत आपने सुना किशोर दा की आवाज़ में। और हमसे जुड़े हैं हरियाणा से अंकित कांगड़ा जी, मोनी जी, प्रिंस जी, सीताराम जी और साहिल जी। मुझे लगता है कि सब परिवार ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और उत्तम नगर दिल्ली से होली चौक से हमारे साथ जुड़े हैं जयराम खोरवाल जी, सचिन जी, अमन जी, दीपांशु जी। फिल्म हकीकत से गीत को सुनना चाहते हैं जी, पूरी कोशिश। राजेश कुमार चौहान जी जालंधर से जुड़े हैं और आया सावन झूम से सुनना चाहते हैं, पूरी कोशिश रहेगी। मैं सबसे पहले आपके नामों को एक बार सम्मिलित कर लूँ। प्रताप वर्मा जी हमारे साथ महावीर कॉलोनी सोनीपत से जुड़े हैं और कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। हमारे साथ उषा चंदन जी जुड़ी हैं, मास्टर अशोक कुमार जी और हरजिंदर सिंह भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और ये सब सुनना चाहते हैं कोई भी गीत मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। तो आपकी फरमाइशें आप तक।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुझे सुन रहे हैं यानी आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। कार्यक्रम मन भावन, जहां आपके फरमाइशें, आपकी दिल की बात हम आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, फरमाइशों का पिटारा हम तक लगातार पहुँच रहा है और मोताला महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं विजय सुरलकर जी, रतनमाला जी और कुमकुम गुड़िया जी। ये लिखते हैं कि अंशु दीदी, प्रोग्राम हमें आपका अच्छा लग रहा है और जो प्रस्तुति है गीतों की वो भी इन्हें अच्छी लग रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही प्रकाश वर्मा जी हमसे जुड़े हैं, हम राज फिल्म से सुनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ से ये जुड़े हैं और सब परिवार प्रिंस जी, निखिल जी और यशस्वी जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और गीतों की फरमाइशें भी हम तक आ रही हैं। सतीश अनेजा जी हमसे जुड़े हैं, लिखते हैं नमस्कार बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चंडीगढ़ सिटी से ये हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं और हम देख सकते हैं कि अब्बासी जी और मुकेश जी और डी के बी परिहार जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और सुनना चाहते हैं मुकेश जी की आवाज़ में खूबसूरत गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल कार्यक्रम मन भावन में। हमारे साथ जुड़े हैं गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुधार और सारिका सुतार जी। लिखते हैं, दीदी आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, पेशकश भी बहुत इन्हें पसंद आ रही है। मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में गीत को सुनना चाहते हैं जी, पूरी कोशिश। और देखते हैं कौन हमारे साथ में जुड़ा है। MD इरशाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मरियम जी, शाहजा बेगम जी और इरशाद अहमद शाह जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और पसंद आ रहा है कार्यक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र प्रसाद मोदी जी फिल्म तिरंगा से सुनना चाहते हैं गीत को। रामगढ़ कैंट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल जैन जी, अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। लिखते हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? और संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिवियम जैन, मुझे लगता है एक नन्हा श्रोता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। और राशिद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आसना जी, नौरीन अंसारी जी, नसरीन जी और मोहम्मद कैफ अंसारी जी भी। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ये गीत आपके लिए।
4: कहूँगा, एक बार नहीं हज़ार बार कहूँगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो।
5: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराया है?
6: मेरा दिल।
5: क्या?

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

दोस्तों, कार्यक्रम मन भावन और जलंधर से हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति मक्कर जी, मन्नत जी, भरत जी, कमल सहनी जी और संदीप जी, और फिल्म जंगली से ये गीत को सुनना चाहते हैं। और धर्मेंद्र छिप्पा जी हमारे साथ

फिर से जुड़ चुके हैं और भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं। सब परिवार कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पूजा परिहार जी, ईशान छिंपा जी, कपिल छिंपा जी और धर्मेंद्र जी, आप तो हमारे साथ जुड़े ही हैं, कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं परमिंदर सिंह जी, लिख रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है लेकिन फिल्म चौकीदार से गीत को सुनना चाहते हैं, तो कह रहे हैं अगर आप सुनवा देंगे तो कार्यक्रम और अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश है। ताज मोहम्मद जी जुड़ चुके हैं, अहमद जी, सोहिल जी, साथ ही रस क्रिएशन से हमारे साथ एक मेल हमें प्राप्त हुआ है। नवी हसन जी जुड़े हैं और शीशपाल जी हमारे से कार्यक्रम में जुड़े हैं, डीके जी, बबलू जी, साथ ही कुछ लगातार हमारे पास में जो जुड़ चुके हैं उनके भी मेल हमें फिर से प्राप्त हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है नए श्रोता को मौका दिया जाए। सोहम लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और मुकेश जी की आवाज़ में एक और अगला खूबसूरत गीत आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है अपनी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल को। कार्यक्रम मन भावन, जहाँ पर आपके मन पसंद गीत, आपके दिल की बातें, आपकी फरमाइशें आप हम तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशल्या देवानगन जी, रोशन लाल जी और हेमलता डिम्पल देवानगन जी। साथ ही हमें मेल प्राप्त हुआ है स्वर्ण सिंह जी का, ये हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ से। स्वर्ण सिंह जी, दलजीत सिंह जी, राजदीप जी, गुरनूर जी, गुरलाल जी और अविराज जी, मुझे लगता है कि सपरिवार ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप सपरिवार कार्यक्रम को सुनते हैं, जुड़ते हैं। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल जी, सचिन और दीपांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिल्म रोटी से गीत को सुनना चाहते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइशें मैं आप तक पहुंचाऊं। लालगिरी जी जुड़े हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, गीत को सुनना चाहते हैं। सपरिवार जुड़े हैं, आपको बता दें हम, श्री गंगानगर राजस्थान से हेमलता जी, हीना जी, हर्षित जी और खुशी गोस्वामी जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और जाकिर जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं मन भावन कार्यक्रम इन्हें पसंद आ रहा है और आज की जो पेशकश इनको सुनाई जा रही है वो भी इन्हें बहुत ही पसंद आ रही है। इसी तरह लगातार आप कार्यक्रम में जुड़ते रहें और जैसा कि आप सबने फरमाइश की कि लता जी की आवाज़ में गीत को आप सुनना चाहते हैं, तो ये लीजिए आपकी फरमाइश आप तक।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और कार्यक्रम मन भावन में सुरेश नारंग जी का हमें मेल प्राप्त हुआ है। लिखते हैं, प्रेजेंटेशन गीतों के साथ बहुत ही शानदार हैं और शुरू से ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सपरिवार सहारनपुर चंद्रनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। आशा नारंग जी, आशु नारंग जी और सोनाली नारंग जी के साथ में ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथ ही जगदीश जी, अभी हमें इनका मेल प्राप्त हुआ है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और माफ़ कीजिएगा, MP से हमारे साथ जुड़े हैं। और जगदीश

गहरा दाग से कार्यक्रम में इस गीत को सुनना चाहते हैं, और साथ ही शेख जी और अदनान जी और बबलू जी भी महाराष्ट्र से कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जुड़े हैं हमारे साथ उग्रसेन यादव जी, लिखते हैं राम राम जी, राम राम, और लिखते हैं कि हम सब आपके रेगुलर लिसनर्स हैं, प्रेम पर्वत से गीत को सुनना चाहते हैं। नई दिल्ली से जुड़े हैं शकुंतला यादव जी और गरिमा जी भी कार्यक्रम को सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गिरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग मैम, कार्यक्रम सुन रहे हैं और रिमझिम गिरे सावन किशोरदा और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में सुनना चाहते हैं। मोहम्मद सदीक जी जुड़े हैं, साथ ही कुणाल सिंह जी भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, विजय महोबिया सुन रहे हैं कार्यक्रम, और गंगाधर जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। ओम कुमार जी, जैसा कि हमने बताया, इनका फिर से हमें मेल प्राप्त हुआ है, तो चलिए आपकी फरमाइशें आप तक जल्दी से पहुंचा देते हैं। राजवीर सिंह जी और जगदीश जी भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन और हमें महाराष्ट्र से कुंडलवाड़ी से मेल प्राप्त हुआ है गंगाधर जी का, जो अपनी शायद सपरिवार सुन रहे हैं, विजय लक्ष्मी जी के साथ में कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और साथ ही जॉन द कैस्ट्रो का हमें मेल प्राप्त हुआ है, कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है। राम कुमार जी का मेल प्राप्त हुआ है, लिखते हैं कार्यक्रम पसंद आ रहा है लेकिन हमारे गीतों को शामिल नहीं किया जा रहा है। जी पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो नाम मुझ तक पहुँचे हैं मैं उन्हें आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ, बस वो

नाम ना रह जाएं। निसार अली जी लिखते हैं, नमस्कार आरजे मैडम जी, जी नमस्कार। और अल्तमश जी का भी हमें मेल प्राप्त हुआ है, साथ ही एसएम जावेद जी का, कुणाल सिंह जी का, और ये हमें मेल प्राप्त हुआ है, कुणाल जी का हमने आपको बताया, और साथ ही रणबीर जी का ये हमें मेल प्राप्त हुआ है, सुरेश जी का हमें एक बार फिर से मेल प्राप्त हुआ है। गीत सुनना चाहते हैं, आइए इनके गीत आप तक पहुंचाएं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और मैं हूं आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल आपके साथ कार्यक्रम मन भावन, जहां आपकी गीत, आपकी पसंद, आपकी फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं। अनूप कुमार जी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं और हमें मेल लिख रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं और मीठी से शिकायत भी इन्होंने की है। इनको ऐसा लगता है कि इनके मेल्स को पढ़ा नहीं जाता है या बहुत समय के बाद पढ़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लगातार मेल आते हैं और जैसे ही हमारे सामने मेल आती है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कार्यक्रम हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके नामों को गीत के साथ में सम्मिलित कर सकें। उमेश कुमार जी जुड़े हैं।

और लिखते हैं, नमस्कार मैडम जी, आपका आज का कार्यक्रम हमें ठीक लग रहा है। और साथ ही इशक मोहम्मद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, किसान सपकाल जी भी जुड़े हैं, दिग्दर्शन गौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, गांव शोभापुर से बाईपास मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और सपरिवार कार्यक्रम को सुन रहे हैं। कविता गौड़ जी कार्यक्रम में ये सुन रहे हैं और लिखते हैं कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। दिलीप रामेकर जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सो मुझे लगता है कि दिल्ली के बाहर से बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये कार्यक्रम। बस आज इतना ही था, मैं आपसे फिर से मिलूंगी 4:10 पर, जहां फिर से मैं आपके लिए कुछ फिल्मी नगमों को लेकर आऊँगी। अब आप 4 बजने को हैं, सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक शाह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन्हें ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दे दिया गया है। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार

0: ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंपों में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबलों में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, वहीं पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has described the annual Amarnath Yatra as an eternal chapter in the spiritual tradition and cultural unity of the country. He said the divine darshan of Baba Barfani is an unforgettable and deeply auspicious experience in the lives of millions of devotees. He also extended his greetings to devotees undertaking the annual Amarnath Yatra. In a letter written to the pilgrims, the Prime Minister urged the devotees to take 5 resolutions during the pilgrimage. These are maintaining cleanliness, follow safety rules, support local products, gifting a sapling to sibling on Raksha Bandhan, and contribute to a developed India. Prime Minister of Japan Sanai Takaichi has departed from India following her highly successful visit. Ms. Takaichi was seen off by Minister of State Dr. Jitendra Singh. During her visit, she attended the 16th India-Japan Annual Summit in New Delhi. In a social media post, External Affairs Ministry said the visit reaffirmed the commitment of both sides to nurture a partnership pivotal to the shared growth and prosperity of both the countries and an anchor for promoting peace, prosperity and stability in the Indo-Pacific and beyond. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanai Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. Japan's Cabinet Public Relations Officer today highlighted the significance of the traditional Indian greeting, Namaste, after Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanai Takaichi greeted each other with folded hands during the Japanese Prime Minister's visit to India. In a post on social media platform, the Japanese Cabinet Public Relations Officer explained the meaning of the gesture known as Anjali Mudra. Globally, the Namaste gesture is practiced as it represents greeting, humility, and gratitude. The Ministry of Information and Broadcasting has directed the Broadcast Audience Research Council, BARC, to stop publishing television ratings across both news and non-news genres until its license is renewed under the Television Ratings Policy 2026. The directive pauses BARC's ratings operations until the ratings body secures license renewal and is certified as fully compliant with the new regulatory framework introduced by the ministry. The government has ordered the removal of the BATBMS, Epoch iIron and Losigy apps from the Google Play Store and Apple App Store over security concerns. The action followed after allegations that the applications were being used to remotely disable e-vehicles, including e-rickshaws. Sources in the Ministry of Electronics and Information Technology said the decision was taken due to security concerns and the possibility of misuse. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. sharing pictures of

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है और आपकी रेडियो साथी आपके साथ अंशु अग्रवाल। और ये जो समय है 4:11, ये समय है कुछ फिल्मी नगमों को आप तक पहुंचाने का। तो फिल्म सौतन से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आइए इस गीत को सुनते हैं।

जी दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल को। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म सौतन से, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, जिंदगी प्यार का गीत है। ये गीत मेरे दिल के बेहद करीब है क्योंकि इस गीत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये गीत बहुत कुछ हमें संदेश देकर चला जाता है, ज़िंदगी का दर्शन दिखाता है। और फिल्म में भी इस गीत के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से आम जिंदगी में लोगों के यहाँ पर रिश्तों में उलझने होती हैं। इस गीत के माध्यम से प्यार बताया गया है, त्याग बताया गया है, और दर्द के बीच में यह गीत हमें याद दिलाता है कि जीवन में खुशियां और गम दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसका संदेश बिल्कुल साफ है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर जीवन में फूल ना मिले तो कांटों के साथ भी मुस्कुराकर चलना सीखना होगा। इसीलिए गीत आज भी हमें प्रेरणा देता है और सदाबहार गीतों में इस गीत को हमेशा सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से आप बने रहें और सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कुछ ही देर में आप रोजगार समाचार सुनेंगे।

एफएम गोल्ड चैनल, हम आपको बता दें 4:20 पर आपके सामने प्रस्तुत होंगे रोजगार समाचार हिंदी और अंग्रेजी में। उसके बाद 4:30 पर कार्यक्रम परिक्रमा।

0: Deputy Director Engineering in its development wing on deputation, including short-term contract basis. The position is classified as General Central Group A gazetted non-ministerial post in pay level 11 as per the 7 CPC. The initial deputation period will be for 3 years. Eligible officers working under the central or state governments or other eligible organizations who fulfill the prescribed qualifications and experience can apply through the proper channel. Applications must reach the Under Secretary Administration, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Transport Bhavan, New Delhi, within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions, application format, and other instructions are available on the Ministry's website. That is at www.shipmin.gov.in under the Vacancies section. I repeat the website, it is www.shipmin.gov.in. The LGB Regional Institute of Mental Health, Tezpur, Assam, an autonomous institute under the Ministry of Health and Family Welfare, has invited applications for the post of a director on deputation basis. Eligible Indian citizens possessing their prescribed educational qualifications, experience and fulfilling the age criteria may apply in the prescribed format. The completed applications must be submitted within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions, application format and other instructions are available on the Institute's official website. Do refer to www.lgbrimh.gov.in. I repeat, it is www.lgbrimh.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। प्रबंधक डाक वाहन सेवा बेंगलुरु आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। मोटर वाहन मैकेनिक, कुशल अपहोल्स्टर, कारपेंटर कम जॉइंटर और पेंटर। शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आरक्षण और सेवा शर्तों के लिए विस्तार से जानकारी दी गई है 27 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में। आवेदन आप इस पते पर भेज सकते हैं, प्रबंधक डाक वाहन सेवा, नंबर 4 बसवेश्वर रोड, वसंत नगर, बेंगलुरु 56001। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय आवेदन आमंत्रित कर रहा है महानिदेशक के एक पद के लिए। योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, आरक्षण और सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट www.ayush.gov.in। इसके अतिरिक्त आप केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS नई दिल्ली की वेबसाइट पर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। पता है ccras.nic.in। नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड प्रयागराज आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। ऑपरेटर SS इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रिक्तियों की संख्या 8। ऑपरेटर SS फिटर, रिक्तियों की संख्या 5। ऑपरेटर SS इलेक्ट्रीशियन, रिक्तियों की संख्या 6। कनिष्ठ सहायक IMM 3 रिक्तियां। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट HR रिक्तियों की संख्या 2। कनिष्ठ सहायक वित्त रिक्तियों की संख्या 2 और कनिष्ठ सहायक सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT रिक्तियों की संख्या 2। कार्य अनुभव, आयु सीमा, योग्यता, आरक्षण और नियुक्ति के स्थान तथा सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी आप हासिल कीजिए नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड की वेबसाइट पर, जिसका पता है NAEL

0: www.ecom.co.in. भारतीय नौसेना विभिन्न एंट्रीज के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के आवेदन आमंत्रित कर रही है। ये आवेदन AT-27 कोर्स के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें कार्यकारी शाखा, पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स, नौसेना आयुध निरीक्षण संवर्ग, शिक्षा, इंजीनियरिंग शाखा, सबमरीन टेक इंजीनियरिंग, विद्युत शाखा सबमरीन टेक, इलेक्ट्रिकल, नौसेना निर्माण विशेषज्ञ पदों से संबंधित रिक्तियां उपलब्ध हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी समय रोज की तरह आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की ये जो हमारी मुलाकात होती है, इसमें लेकर आते हैं हम आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, और फिर चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास ये जानने क्या कुछ ले आए हैं आज वो हमारे लिए खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहती हमारी बराबर नजर, और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी, जी हाँ, याद है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुनीश। सो मुनीश, वी आर फेसिंग एंड गोइंग थ्रू अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर दीस डेज। द होल ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग एल नीनो कंडीशंस व्हिच हैव सेट इन, एंड देयर आर फोरकास्ट टू रैपिडली स्ट्रेंथन इनटू अ स्ट्रांग इवेंट बाय सेप्टेम्बर, raising risks of heat waves worldwide, with new regions like New Zealand also likely to be affected, with the phenomenon expected to drive hotter, drier and windier conditions. Though the southwest monsoon arrived in Delhi yesterday, 5 days after its normal onset date in the end of June, bringing rain to several parts of the city, Mumbai woke up to another rain-soaked morning as heavy showers inundated low-lying areas, slowing road and rail traffic and showing little sign of easing, with the IMD forecasting more rainfall through the day. The Delhi people are still waiting for a cooler weekend, and we hope we have a comfortable weather to enjoy in the next 2 days. In this anticipation, let's apprise you all with the news making headlines at this hour. So let's start with the headlines. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in the spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया है। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है।
2: टू डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिगिंस इन वेस्ट बंगाल।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज कर दी है। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता।
2: आईएमडी इश्यूज रेड अलर्ट फॉर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ओवर गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश टिल टुमारो।
1: और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में बना ली है अपनी जगह।
2: And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Plastic Bag Free Day.

0: Today, 3rd of July, is observed worldwide as World Plastic Bag Free Day. It's a day that reminds us that even the smallest choices we make can have a huge impact on our planet.
1: ये बिल्कुल सही है दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए होता है, शायद घर तक किराने का सामान लाने ले जाने के लिए, लेकिन फिर वो सैकड़ों बरसों तक पर्यावरण में बना रहता है और ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है.
0: Yes, Munish, it really is. Plastic pollution has become one of the biggest environmental challenges of our time. Every year, millions of single-use plastic bags are discarded, and many end up in rivers, oceans, forests, and even in the stomachs of animals.
1: जी हाँ अनुजा, और एक बात पर जरा गौर कीजिए, आपको क्या लगता है आप एक हफ्ते में कितने प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर लेते होंगे? शायद 2-5, शायद उससे कुछ ज्यादा. लेकिन जरा सोचिए कि अगर हर परिवार हर हफ्ते इसी तादाद में बस कुछ बैग की कमी कर दे तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा.
0: Exactly. That's why World Plastic Bag Free Day encourages all of us to move away from single-use plastics and switch to eco-friendly alternatives.
1: जैसे कपड़े के बैग, जूट के बैग, कागज के बैग या मजबूत और बार बार इस्तेमाल होने वाले शॉपिंग बैग. ये ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा समय तक चलते हैं और सबसे जरूरी बात, पर्यावरण के लिए भी ये बेहतरीन होते हैं.
0: सर्टेनली. एंड दिस ईयर्स थीम इज ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर. इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग सिंपल सस्टेनेबल हैबिट्स दैट कैन प्रोटेक्ट अ प्लैनेट फॉर जनरेशंस टू कम.
1: प्लास्टिक बैग अक्सर नदियों, झीलों, जंगलों और महासागरों में पहुंच जाते हैं जिनसे भारी प्रदूषण फैलता है. ये खत्म नहीं होते बल्कि सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में बने रहते हैं.
0: एंड द बिगेस्ट विक्टिम्स आर आवर वाइल्ड लाइफ. मरीन एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन कैटल ऑफन मिस्टेक प्लास्टिक बैग्स फॉर फूड एंड मेनी सफर फ्रॉम चोकिंग, स्टार्वेशन और बिकम ट्रैप्ड इन दीज प्लास्टिक वेस्ट.
1: जी हाँ, और एक और छिपा हुआ खतरा है जिसे कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक. जैसे जैसे प्लास्टिक धीरे धीरे टूटता है वो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है जो हमारी मिट्टी, पानी और यहां तक कि हमारे खाने को भी दूषित करता है.
0: That's right. Scientists have found microplastics almost everywhere, from drinking water to seafood and even in the human body. It's a reminder that plastic pollution eventually comes back to us.
1: लेकिन प्लास्टिक बैग कम करने का मतलब ये भी है कि लैंडफिल में कम कचरा जाए. चूंकि प्लास्टिक आसानी से सड़ता गलता नहीं है, इसलिए दशकों तक लैंडफिल की जगह को घेरे रहता है.
0: And here's another issue many people don't think about. Plastic bags often clog drains and sewage systems. During heavy rains, blocked drains can lead to waterlogging and also urban flooding.
1: जी हाँ, जलवायु से भी इसका गहरा संबंध है. दरअसल प्लास्टिक बैग बनाने में फॉसिल फ्यूल्स और ऊर्जा की जरूरत होती है जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है.
0: So by simply choosing reusable bags, we are not only reducing plastic waste, but also helping conserve natural resources and lowering the carbon emissions.
1: दरअसल भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और सस्टेनेबल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए. सन 2022 में सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कई चिन्हित चीजों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया. इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ने प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन, रिसाइकलिंग और सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया को और मजबूत किया.
0: एंड थ्रू द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, मैन्युफैक्चरर्स एंड ब्रांड ओनर्स आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड बाई देयर प्रोडक्ट्स. Initiatives like the Swachh Bharat Mission have also encouraged citizens to adopt better waste management practices and reduce plastic use, making the journey towards a cleaner and greener India a collective responsibility.
1: जी हाँ, और इसीलिए मैं तो अपने बैकपैक में हमेशा एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला कपड़े का बैग मोड़ करके रख लेता हूँ. ये बहुत कम जगह लेता है और इसकी वजह से मुझे घर पर दर्जनों प्लास्टिक बैग

0: ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: That's a great habit, Munish. I recently started keeping one in my car as well. It's such a small step, but when millions of people do the same thing, it creates a powerful movement.
0: और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा चैलेंज, अनुजा देखिए, आज घर से निकलने से पहले आप देख लें कि आपके पास दोबारा इस्तेमाल होने वाला बैग है या नहीं, और अगर नहीं है तो अब से इसे अपने साथ रखना अपना मिशन बना लीजिए।
1: Of course, and don't stop there. Encourage your friends, family and neighbors to do the same. Sometimes change begins with one conversation and one simple action.
0: याद रखिए, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा का मतलब कोई एक बहुत बड़ा त्याग करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर दिन समझदारी भरे फैसले लेना।
1: So on this World Plastic Bag Free Day, let's make a promise to say no to single-use plastic bags whenever possible, and yes to a cleaner, greener future.
0: क्योंकि हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले हर दोबारा इस्तेमाल लायक बैग का मतलब है हमारे ग्रह को प्रदूषित करने वाला एक कम प्लास्टिक बैग। आइए सिंगल यूज प्लास्टिक से हम छुटकारा पाएं और एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में मिलकर काम करें।
1: And yes, Munish, moving on, we have another topic also to discuss on today. Let's talk about something that's extremely important, women's safety and access to timely support. We have a dedicated platform for women's support, that is the NCW Women Helpline number 14490.
0: बिल्कुल, हर महिला को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने और अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अगर कोई हिंसा, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का सामना कर रहा है तो ये जानना कि मदद कहां से मिल सकती है, ये बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।
1: And that's where the National Commission for Women, or NCW, steps in. As the country's apex statutory body for women's rights, it works to safeguard and promote the interests of women across India.
0: और मदद को ज्यादा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए NCW 24/7 महिला हेल्पलाइन 14490 यानी 14490 चलाता है। ये एक टोल फ्री और आसानी से याद होने वाला नंबर है, आपको याद हो गया होगा 14490, जिस पर महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं और फौरन मदद मांग सकती हैं।
1: And what's more reassuring is that the helpline is staffed by trained psychological counselors, ensuring that women receive professional guidance and compassionate support during difficult times.
0: जी हाँ, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की कोई भी महिला या कन्या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकती है, चाहे घरेलू हिंसा हो, उत्पीड़न हो या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, मदद बस एक फोन कॉल की दूरी पर है।
1: And this initiative is also a great example of how technology is making public services more accessible under the vision of Digital India.
0: तो आइए जरूरी नंबर यानी 14490 को याद रखें, हो सकता है कि आपको खुद इसकी जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन इसे जानने से किसी और की मदद हो सकती है जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत हो।
1: So, friends, stay informed, stay aware, and let's work together to build a safer and more empowered society for every woman.
0: और दोस्तों, वक्त हो गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ही जानने का क्या कुछ है खास उनके पास। श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: बोलो बाबा अमरनाथ की जय। बाबा अमरनाथ बम बम।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
4: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
5: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वो खूबी बहुत अच्छा।
3: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
2: बाबा अमरनाथ की जय।
0: दोस्तों, हरियाणा के सिरसा जिले में पैदा होने वाले रसीले और स्वादिष्ट फल किनू को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है। आइए सुनते हैं इसी पर ये प्यारी सी रिपोर्ट।
6: राज्य के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि ये कृषि में हरियाणा का पहला स्वतंत्र जीआई टैग है। इससे पहले हरियाणा को बासमती चावल और फुलकारी के लिए अन्य राज्यों के साथ संयुक्त जीआई टैग मिले हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे गौरवमयी क्षण बताते हुए कहा कि ये सम्मान क्षेत्र के किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाएगा और उनके उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि जीआई टैग मिलने से अब केवल सिरसा के निर्धारित मानकों पर उगे किन्नू को ही आधिकारिक रूप से सिरसा किन्नू के नाम से बेचा जा सकेगा। इससे बाजार में नकली उत्पादों और गलत ब्रांडिंग पर पूरी तरह रोक लगेगी। इसके अलावा इस प्रमाण पत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिरसा के किन्नू की साख बढ़ेगी और किसानों को सीधा निर्यात करने के अवसर मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि अकेले सिरसा जिले का राज्य में कुल किन्नू उत्पादन में लगभग 55% का योगदान है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा बागवानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिरसा के वीटा दुग्ध संयंत्र परिसर में लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
1: And now from Haryana to Jaipur, where the North Western Railway has said that the newly developed mega coaching terminal in Katipura Railway Station in Jaipur will significantly strengthen railway maintenance infrastructure and support the growing demand for train services in Rajasthan. Talking to Media Chief Public Relations Officer of the North Western Railway, Amit Sudarshan said that the terminal has been developed to meet Jaipur's increasing coaching maintenance requirements in view of the city's rapid growth and the rising demand for rail connectivity across the state.
7: कि ये मेगा कोचिंग टर्मिनल जो है जयपुर की लगातार बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट को देखते हुए डेवलप किया गया। पहले जयपुर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से राजस्थान में ट्रेन की डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें जयपुर में एक एडिशनल कोचिंग मेंटेनेंस मेगा टर्मिनल की हमें रिक्वायरमेंट थी, तो इस मेगा कोचिंग टर्मिनल से वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। मैं ये कह सकता हूँ कि जयपुर में जयपुर जंक्शन जैसा ही एक और स्टेशन यहाँ पे डेवलप कर दिया गया है, जहाँ से ट्रेनें ओरिजिनेट हो सकती हैं, टर्मिनेट हो सकती हैं। ये एकदम एडवांस है, जो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको इसमें यूज किया गया है, चाहे वो रिट्रेक्टेबल ओएचई हो, चाहे ड्रॉप पिट्स हो, चाहे वंदे भारत के मेंटेनेंस हो, तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं।
1: Mr. Sudarshan also informed that Gandhi Nagar Railway Station in Jaipur is undergoing a major redevelopment to become a world-class transit hub under the Amrit Bharat Station Scheme.
0: दोस्तों, महाराष्ट्र में धाराशिव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में हीमोफीलिया रक्त विकार पर अनुसंधान करने के बाद एक दवा तैयार की गई है। एक रिपोर्ट।
8: धाराशिव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4 अगस्त 2025 से 27 जून 2026 तक इस दवाई की क्लिनिकल ट्रायल ली गई, जिसमें पूरे राज्य से 130 मरीज शामिल हुए। अनुसंधान की इस प्रक्रिया के बारे में अनुसंधानकर्ता डॉक्टर शुभम धूत ने आकाशवाणी से और अधिक जानकारी साझा की।
9: हेमोफिलिया एक जन्मजात दुर्लभ अनुवांशिक रक्तस्राव विकार है। इसमें शरीर में रक्त को जमाने वाले क्लॉटिंग फैक्टर, विशेष रूप से फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की कमी होती है। इसके कारण जो को रक्तस्राव, जोड़ों में खून जमना, तीव्र दर्द और आजीवन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित रक्तामृत वटी और रक्तामृत तेल विकसित किए गए हैं तथा उन्हें एक पूरक उपचार पद्धति के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से मूल्यांकित किया गया। रक्तामृत वटी आयुर्वेद की दुर्लभ एवं प्रभावी औषधि वनस्पति के आधारित पर तैयारित की गई है। इस औषधि ने अब तक अनेक हेमोफीलिया मरीजों को दैनंदिन जीवन में सामान्यता की ओर लौटने और राहत अनुभव कराने में सहायता की है। यह प्रारंभिक वैज्ञानिक निष्कर्ष है और इन्हें आगे बड़े तथा नियंत्रित अध्ययन में और वैज्ञानिक रूप से परखा जाएगा।
8: आशा है कि धाराशिव में तैयार हो रही इस दवा से पूरे विश्व में मरीजों को हीमोफीलिया से राहत मिलेगी। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
0: और दोस्तों, आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल।
1: So we begin with the FIFA World Cup. Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. Meanwhile, Portugal also advanced to the round of 16 after defeating Croatia 2-1 in their round of 32 match in Toronto, Canada.

0: Captain Manoj Kumar Pandey, six other soldiers were martyred during this entire operation. The other martyred bravehearts, Kalubar, was eventually captured, and Captain Manoj Kumar Pandey, with his supreme sacrifice, not only set an example of unparalleled bravery, but changed the course of the Kargil War. Captain Manoj Kumar Pandey was given the nation's highest gallantry award, Paramveer Chakra, for his outstanding courage, leadership, and devotion to duty. We salute the brave souls who made the ultimate sacrifice for a nation.
1: Amar Shaheed Manoj Kumar Pandey ko hamara naman. Aur dosto yaad aata hai main ki sanyog vash us din hum bhi wahan duty par the aur ek tarah se yadi hum apna kaam kar paaye to usme Manoj Kumar Pandey ka ye balidan tha ki aakashvani se jo seva honi chahiye wo wahan balastur jari rahi aur unka ye balidan rashtra kabhi bhulega nahi.
2: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं.
1: दोस्तों, आज है अभिनेता राजकुमार साहब की पुण्यतिथि. राजकुमार, जिन्होंने फिल्मों में भले ही कुछ कम काम किया हो, लेकिन एक से बढ़कर एक फिल्में, बड़ी ही यादगार फिल्में जो इतिहास में उनको अमर कर गईं. असल नाम था उनका दरअसल कुलभूषण पंडित, कश्मीरी पंडित परिवार के थे, लेकिन बलूचिस्तान में पैदा हुए आज़ादी से पहले, और फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने अपनी पुलिस की अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ दी, और फिर उन्होंने बहुत सी यादगार फिल्में हमें दी, जैसे पैगाम, मदर इंडिया, दिल एक मंदिर, वक्त, लाल पत्थर, तिरंगा, और बहुत बाद में आई थी सौदागर. और फिर वर्ष 1957 में, लेकिन जो उनकी फिल्म थी, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, जिसमें उन्होंने गांव के एक छोटे से किसान की भूमिका की थी, उसके लिए वो बहुत याद किए जाते हैं. और उन पर फिल्माए गए जो संवाद और गीत हैं, उन्हें आज भी लोग फिल्मों से अलग ज़रूर सुनते रहते हैं, कभी रील्स की शक्ल में, कभी रिकॉर्डिंग्स में. तो आइए सुनते हैं फिल्म वक्त में राजकुमार का ये संवाद, और फिर एक उन पर फिल्माया गया प्यारा सा गीत.
2: ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है.

0: But brought to it her brought some own charm of her individuality in it, creating a whole new Bani. And Madras Lalithangi Vasantakumari was a prodigy, giving a public performance when she was all of 13 only. We have a rendition in her voice.
1: और दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का. आज्ञा दीजिए हमें, यानी मुझे मुनीश शर्मा और अनुजा को. कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in. आज्ञा दीजिए हमें.
0: नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना स्थायी रूप से बंद करना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM गोल्ड। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। और अब समय हो चला है 5:11। यह समय है पानी पर लिखी कहानी वापसी आप तक पहुंचाने का, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती द्वारा।

नमस्कार, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम वही आपका अपना पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाती हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेरी ही कलम से निकली एक कहानी जिसका शीर्षक है वापसी। आइए सुनते हैं।

डॉक्टर दिवाकर आज किधर की ओर? अस्पताल की नर्स ने डॉक्टर दिवाकर से पूछा। बस घर जा रहा हूँ माँ के पास, ये कहकर डॉक्टर दिवाकर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में गाड़ी शहर से बाहर थी और धूल धुआं छोड़कर सामने नजर आ रहे थे हरे भरे पहाड़। शुरू हो रहे थे जंगल, ऊंचे पहाड़ों के बीच और बीच में से जाती वो सड़क जिसमें खुली खिड़की से आ रही थी बर्फीली हवा। उन्होंने अपनी जैकेट को कस के बंद कर लिया। हवा की ताजगी उनके मन को छूने लगी। पत्थर उन्हें हमेशा से पसंद थे और पत्थरों से बने वो पहाड़ भी। उसकी खूबसूरती, वहाँ की सर्दियाँ, वहाँ के जाड़े

उन्हें याद आने लगे बचपन के वो दिन जब वो दौड़ते हुए दूर पहाड़ पर बने छोटे से प्राइमरी स्कूल के लिए निकल जाते थे और रास्ते में प्यास लगती थी तो छोटे छोटे जंगली आंवले खा लेते थे और फिर पहाड़ी सोतों से निकलता मीठा पानी पीते तो आंवले की मिठास और बढ़ जाती। वही थी उनकी पहाड़ी मिठाई। ये जंगल तब भी जानवरों से भरा हुआ था लेकिन उन्हें डर नहीं लगता था। वो अपनी माँ के साथ पलाश और बुरांस के वनों में घूमता रहता। दिवाकर था ही अपनी माँ का दाहिना हाथ। दो ही तो प्राणी थे घर में। अनाज पीसती माँ का अथक परिश्रम देखकर किताब पढ़ता दिवाकर सोचता, कब करेगा वो अपनी माँ की परेशानियों को दूर। उस अनाज को देखकर कितनी ही गौरैया आंगन में उतर आती। अभी भी वो दिन उसकी यादों में बसे थे। अब तो वो कल्पना भी नहीं कर पाता था कि इन्हीं पगडंडियों पर दौड़ते भागते हुए वो स्कूल पहुंच जाता था और कंधे पर रहता था उसका बस्ता। माँ पीछे से देखती रहती जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। उन दिनों ना तो कोई फोन था, बस मन में ये संतोष था कि उनका बेटा स्कूल पहुंच गया है। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था पर माँ के आंचल में संघर्ष महसूस ही नहीं होता था। उसे तो हमेशा छांव ही लगती।

गाड़ी पहाड़ी रस्तों पर हिचकोले खाते खाते उसको अपना घर दिखाई देने लगा, अपना गांव दिखाई देने लगा और साथ ही दिखाई देने लगा छोटा सा बाग, घर के सामने अखरोट के वृक्ष और पहाड़ी बेरियों की झाड़ियां। ये वो बगिया थी जहां पर बरसों पहले उसके बाबा ने पेड़ लगाए थे। आज उनके फल टूट टूट कर गिरते थे, देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने दौड़कर एक फल तोड़ा और खाता हुआ घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसको माँ दिखाई दी, बोली, अरे मैंने वहीं से देख लिया था, और तुम यहाँ से क्यों खा रहे हो, घर में तो बहुत सारे फल हैं। वो हंस पड़ी। उसने माँ को गले लगा लिया और गोदी उठा लिया। अरे मुझे जमीन पर रखो भाई। वो दोनों घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर दिवाकर ने ज्ञान विज्ञान की राह चुनी थी। उनके बाबा कहते थे दिवाकर को बहुत पढ़ना है,

इस बात को कितने वर्ष बीत गए, जब कड़ी मेहनत से उसने MBBS की परीक्षा पास की थी तो पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। सबको बहुत सी उम्मीदें थी दिवाकर से। सब कहीं ना कहीं सोचते थे, गांव का लड़का डॉक्टर बना है, कल को वो उन्हीं का इलाज करेगा, क्योंकि गांव में दूर दूर तक अस्पताल की सुविधा नहीं थी। MBBS करके और आगे की डिग्री हासिल करके आज डॉक्टर दिवाकर दिल्ली के जाने माने

सर्जनों में से माने जाते हैं। सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में उसे अपना घर बहुत याद आता था। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी कि अम्मा को दिल्ली लेकर आ जाएं, पर अम्मा ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, ये घर हमारे पुरखों की धरोहर है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो यहाँ कौन रहेगा? देखो ना, वैसे भी सब लोग तो घर छोड़कर जा ही रहे हैं शहरों की ओर। लेकिन माँ, मैं आपको कब तक यहाँ अकेला रहने दूँ? दिवाकर ने कहा था। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। तुम आते जाते भी रहोगे तो फिर यहाँ अकेलापन भी नहीं लगेगा। ये पहाड़, ये जंगल, ये सारे मेरे ही तो हैं। उसे वो पुरानी बातें याद आ रही थी। जब डॉक्टर दिवाकर ने माँ की ओर देखा तो लगा माँ का चेहरा थोड़ा और पीला हो गया है, वो और कमजोर दिख रही थी। बोले, माँ तुम कितनी कमजोर हो गई हो, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार अपने साथ दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। अरे, अभी तो तू आया है और आज ही जाने के लिए कहने लगा। घर पहुंचकर लकड़ी के चूल्हे पर बनी मोटे अनाज की रोटी, हरी चटनी और घी के साथ खाकर उसका मन और आत्मा तृप्त हो गई। दोनों माँ बेटे बतियाते रहे और कब नींद की गोद में सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह दिवाकर उठा तो पास ही के मोहन चाचा के घर चला गया, पर वहां कोई नहीं था, न कोई आवाज सुनाई दी। वापस घर लौटकर पूछा, माँ मोहन चाचा किधर है? क्या मोहन चाचा का परिवार इन छुट्टियों में गांव आया हुआ है? अरे नहीं, उन्होंने अपना घर किराए पर दे दिया है। किराए पर? यहाँ? किसको? अंकिता को। अंकिता? दिवाकर के दिमाग में घंटी सी बजी। उसके बचपन की एक साथी थी अंकिता। दोनों मिर्ची के खेत में मिर्च खाने की शर्त लगाते थे और अक्सर वो शर्त हार जाया करता था। अपने बचपन के उस खेल को सोचकर वो मन ही मन हंस पड़ा। वो जानता था कि ये वो अंकिता नहीं हो सकती। ये लो बेटा, आ गई अंकिता, माँ ने कहा। उसने सर उठाया तो साड़ी में एक दुबली पतली सी लड़की लंबी चोटी किए सामने से चली आ रही थी। माँ ने चाय का कप दिया, बेटा चाय पी लो। अरे नहीं चाची, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठ, आकर मिलूंगी। हंसकर वो निकल गई। दिवाकर ने सीढ़ियों से देखा और अनदेखा कर दिया। उसने प्रश्न सूचक नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने बताया कि अंकिता पड़ोस के गांव की लड़की है और बेटा ये जो नया स्कूल खुला है ना, सरकारी स्कूल, उसी में टीचर लगी है, तभी तो इधर आ गई। वहीं पढ़ाती है और यहाँ किराए पर रहती है। बहुत अच्छी लड़की है, याद है ना तेरे साथ पढ़ती थी बचपन में, तेरी ही तो क्लास में थी। मेरी बहुत मदद करती है बेचारी। पिछले हफ्ते भी तेज बुखार में तप रहे एक बच्चे को लेकर रातों रात शहर गई थी। यहाँ कोई तो है नहीं जो देखता उसे। शुक्र करो अंकिता बच्चे को लेकर गई और उसकी जान बच गई। अरे दिवाकर, तू जा कहाँ रहा है, बात तो सुन ले। दिवाकर बोला, माँ मैं कल्याण के यहाँ जा रहा हूँ। अपने दोस्त कल्याण से बातें करते करते दिन कैसे बीत गया दिवाकर को पता ही नहीं चला। वो कल्याण से मिलकर नदी की ओर निकल गया। तभी दूर से घंटे की आवाज सुनाई दी। उसे लगा किसी मंदिर से ये आवाज आ रही है, पर देखा तो ये आवाज तो स्कूल से आ रही थी। देखा कि खुली कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगा है, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। पास आया देखा तो अंकिता ही थी। फिर वो लंबे लंबे डग भरते हुए घर की ओर निकल गया। सोचा सामने ही पहाड़ी पर तो छोटा सा मंदिर है, क्यों ना देवता के दर्शन करता हुआ जाए। पुजारी बाबा भी तो वहीं रहते थे और वहीं रहता था उनका छोटा सा परिवार। शांत सलोने मंदिर में कोई दिया जला गया था, धूप की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी का छोटा लड़का केशव दिखाई दिया। अरे दिवाकर भैया नमस्ते, कब आए? कल शाम को ही आया हूँ केशव, कैसे हो तुम? पिताजी कहाँ हैं? ये सुनते ही केशव वहीं थम गया। पिताजी तो इस बार, कहकर उसने सर झुका लिया। दिवाकर का दिल धक से रह गया। वो डॉक्टर जो दिन रात मौत को देखता था, दिन रात उसका सामना करता था, पता नहीं क्यों ये वाक्य उसके दिल में तीर सा घुप गया। वो दयालु बाबा, वो पुजारी और उनके साथ बचपन के बिताए वो दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। डॉक्टर दिवाकर ने आगे बढ़कर केशव का कंधा थपथपाया, इधर उधर की बातें की और गांव लौट आए, पर एक गहरी उदासी उनके मन पर छा गई।

पूछा, तो क्या पुजारी काका ने कोई दवाई वगैरह नहीं ली थी? बेटा यहाँ कहाँ दवाई, ना यहाँ कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, ना ही कोई वैद्य, बस प्रकृति ही माँ है, वही डॉक्टर वही वैद्य। तुम तो जानते हो बेटा, पंडित जी अस्थमा के रोगी थे और कोरोना के बाद तो बहुत झटका खा गए थे। किसी कथा के लिए गांव से दूर शहर में गए थे, बस वहीं उनको दिल का दौरा पड़ा और क्या कहें बेटा, कहने को कुछ नहीं। दिवाकर को अब समझ में आया, उसके मन में अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंता रहती थी। वो जानता था पहाड़ों के अकेलेपन में उसकी माँ। माँ, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगी बेटा, अगर मैं चली गई तो अंकिता तो यहाँ अकेली रह जाएगी ना। दिवाकर ने नजरें उठाकर देखा तो अंकिता सामने खड़ी थी। ये मेरा बहुत ध्यान रखती है बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अंकिता बोली, ये लो चाची, मैं आपकी दवाइयां लेकर आ गई हूँ। अरे दवाइयां? दवाइयां मैं लेकर आया हूं ना, दिवाकर बोला। अरे नहीं, ये तो आयुर्वेदिक टॉनिक है जो मैं चाची के लिए लेकर आई हूँ। आप दिल्ली जाओगे ना तो ये भी लेकर जाना। ठीक है अंकिता बेटी, माँ बोली, अब तू भी यहीं बैठ, यहीं खाना खा ले। कमरा जैसे भरा भरा सा लगने लगा, खिला खिला सा। दिवाकर वहीं बैठ गया पसंदीदा आराम कुर्सी में। उसने आंखें बंद कर ली और बस रसोई में काम करती अपनी माँ को देखने लगा।

0: क्या इशारा।
1: उसके मन का तनाव और दिमाग की चिंताएं कपूर बनकर उड़ गई थीं। बेटा बहुत रात हो गई है, जरा अंकिता को घर तक तो छोड़ाओ। वो आगे आगे निकल पड़ा और अंकिता पीछे। गांव कितना सुनसान हो गया है, पहले जैसा समय होता तो छोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप कष्ट मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, यहाँ सुविधाएं भी तो नहीं है, सब कुछ बहुत दूर है। सही कहा आपने, दुकान से अस्पताल, स्कूल, बाजार, दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। पर इस वजह से कोई अपना घर तो नहीं छोड़ देता ना। मैं तो यहीं पर हूँ, मेरी दुनिया यही है और मेरा स्कूल भी यहीं, और हाँ चाची जी भी तो यहीं हैं। पर मेरा अस्पताल तो दिल्ली में है ना, दिवाकर बोले। आप यहाँ भी तो अस्पताल खोल सकते हैं डॉक्टर दिवाकर, अंकिता ने धीरे से कहा। वो चुप रह गया, बोला लीजिए आपका घर आ गया। डॉक्टर दिवाकर वापस मुड़े तो एक जोड़ी आंखें अंधेरे में उनका पीछा करती रहीं। अगले दिन डॉक्टर दिवाकर को वापस दिल्ली जाना था। वो जानते थे कि अस्पताल के कई मरीज उनका इंतजार कर रहे होंगे, बहुत सा काम बाकी था। माँ लगी थी सामान बांधने में, अपने बेटे के लिए अपने हाथ से बनाया गया कितना ही खाने पीने का सामान गाड़ी में रख दिया था। जब डॉक्टर दिवाकर अपना सूटकेस गाड़ी में रखने आए तो देखा साथ में अंकिता भी खड़ी है और माँ की मदद कर रही है। पता नहीं क्यों उनके मन के एक कोने में संतोष भर गया, एक मन जो हमेशा यहीं रहता था इन्हीं घाटियों में, उस मन में घाटियों की ठंडक उतरने लगी। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ गाड़ी की ओर निकल गया और दरवाजा खोल दिया। ध्यान से जाना बेटा, माँ ने कहा। डॉक्टर दिवाकर ने माँ के चरण छुए। माँ क्या तुम सच में साथ नहीं आओगी, माँ मुस्कुरा दी बोली। मेरी जगह वो नहीं है बेटा, और हंस पड़ी और मुस्कुरा दी। डॉक्टर दिवाकर की नजरें माँ के पीछे खड़ी अंकिता से टकराई, बोले सोचता हूँ अस्पताल की नौकरी छोड़कर यहीं पास में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लूँ। माँ यहाँ के लोगों को भी तो मेरी जरूरत है। उनकी नजरें फिर अंकिता से मिली, दो बड़ी बड़ी आंखें जमीन को देख रही थी। इधर माँ कहे जा रही थी, बेटा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी धरती, तुम्हारा अपना गांव, तुम्हारी जरूरत है यहाँ। बच्चे बाहर पढ़ने तो जाते हैं पर यहाँ कोई लौट कर नहीं आता, उसके बाद बस शहरों में बस जाते हैं। काश वो वापस आते अपने गांव की ओर, यहाँ आकर डॉक्टरी करते। अगर तुम यहाँ आओगे तो पता नहीं कितने लोगों के प्राण बचेंगे। डॉक्टर दिवाकर ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो वापस आएंगे। उन्हें सामने अपना एक सुनहरा भविष्य दिखलाई दे रहा था। बोले माँ मैं लौट कर आता हूँ। माँ और अंकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।

तो दोस्तों, ये थी कहानी वापसी जिसे मैंने आपके लिए लिखा था। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से निकल कर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर बनते हैं और उनके अपने गांव तरस जाते हैं आधारभूत मेडिकल सुविधाओं के लिए। हालांकि कितने ही ऐसे डॉक्टर घर वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने गांव में ही प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारी जरूरत हमारे घर में है, हमारे अपने गांव में। ऐसी ही

थी ये कहानी डॉक्टर दिवाकर की, जो वापस अपने गांव आए और अपने गांव वालों के लिए उन्होंने काम किया। और इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम यानी पानी पर लिखी कहानी से चाहती हूँ आज्ञा। रश्मि कुकरेती आपसे कहती है नमस्कार।

0: साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal said India's development assistance for projects in Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap and is regularly reviewed. The Defence Acquisition Council has approved capital acquisition proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness of defence forces. The proposals for which approval has been given include procurement of anti-unmanned aerial vehicles, electronic warfare system Akash Tarang, man-portable anti-tank guided missile systems, medium-range surface-to-air missile weapon system, very short-range air defence system, among others. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has directed the constitution of a high-level expert committee under the Indian Council of Agricultural Research to examine the challenges being faced by Totapuri mango growers in Andhra Pradesh. The decision follows the Union Minister's recent visit to Andhra Pradesh, during which farmers informed the minister that prices of the Totapuri mango variety, which is cultivated extensively for the processing industry, have declined significantly in recent months. Mr. Chauhan said safeguarding the income and livelihoods of Totapuri mango growers is a priority for the government. The Ministry of Information and Broadcasting has directed the Broadcast Audience Research Council to stop publishing television ratings across both news and non-news genres until its license is renewed under the Television Ratings Policy 2026. The government has ordered the removal of the BAT BMS, Epoch iIron and Losigi apps from the Google Play Store and Apple App Store over security concerns. The action followed after allegations that the applications were being used to remotely disable e-vehicles, including e-rickshaws. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Ministry of External Affairs said the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela. The Indian Embassy in Venezuela has said India's humanitarian relief efforts in the South American nation have received widespread acclaim from the public for its professionalism and quality of service. The India Meteorological Department IMD has issued red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and West Madhya Pradesh till tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied by lightning over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today, extending their rising streak for the third straight session. The Sensex rose 262 points to close at 77,764. The Nifty also added 95 points to settle at 24,271. In the FIFA World Cup, Australia will take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in the US tonight. In other round of 32 matches, Argentina will face Cabo Verde at Miami Gardens, while Colombia will clash with Ghana at Kansas City Stadium tomorrow morning. Switzerland, Spain, Portugal, Belgium, the United States, England, Mexico, France, Norway, Canada, Morocco, Brazil and Paraguay have already advanced to the round of 16. In the round of 32 matches this morning, Switzerland defeated Algeria 2-0 in Vancouver, while Portugal beat Croatia 2-1 in Toronto. Spain defeated Austria 3-0 at Los Angeles Stadium in US. And that is the end of this news.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका अभिनंदन। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बात भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की। 1 जुलाई को जीएसटी ने अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 9 वर्षों में जीएसटी ने न केवल देश की कर व्यवस्था को एक नई दिशा दी है, बल्कि कारोबार करने के तरीके, कर संग्रह की प्रणाली और करदाताओं के अनुभव में भी बड़े बदलाव आए हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं आखिर क्या हैं, जीएसटी 2.0 के माध्यम से इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं और कैसे इसने एमएसएमई और छोटे करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाया है। श्रोताओं, जीएसटी लागू होने से पहले देश में केंद्र और राज्यों के कई अलग अलग कर लागू थे। अलग अलग नियम, अलग अलग प्रक्रियाएं और टैक्स ऑन टैक्स जैसी व्यवस्था व्यापार और उद्योग के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती थी। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र एक कर की सोच के साथ 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी लागू होने के साथ केंद्र और राज्यों के 17 अलग अलग करों तथा 13 उपकरों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल कर दिया गया। समय के साथ सरकार ने जीएसटी व्यवस्था को और सरल तथा प्रभावी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। पिछले साल सितंबर में शुरू किए गए नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब समझते हैं कि जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है और जीएसटी 2.0 के माध्यम से क्या क्या बदलाव किए गए हैं।
2: जीएसटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये एक गंतव्य आधारित कर व्यवस्था है, यानी जिस राज्य में किसी वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग होता है उसी राज्य को उससे मिलने वाले कर का लाभ भी मिलता है। जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 में 66,50,000 थी, जो बढ़कर मई 2026 तक 1,65,00,000 हो गई है। ये इस बात का संकेत है कि पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यवसाय औपचारिक कर व्यवस्था का हिस्सा बने हैं। सकल जीएसटी संग्रह भी लगातार बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में ये लगभग 7,40,000 करोड़ रुपए था। पिछले 5 वर्षों में ये 2021-22 के लगभग 13,76,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 22,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये वृद्धि 2026-27 में भी जारी है। अप्रैल और मई 2026 के दौरान ही जीएसटी संग्रह लगभग 4,37,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। जीएसटी का संचालन जीएसटी परिषद के माध्यम से होता है। परिषद में केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर कर दरों और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी सहमति जताते हैं। इसे सहकारी संघवाद का एक सफल उदाहरण भी माना जाता है, क्योंकि इससे केंद्र और राज्य मिलकर कर व्यवस्था को समय समय पर बेहतर बनाने के लिए फैसले लेते हैं। जीएसटी को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन की स्थापना की गई। जीएसटी 2.0 के तहत कर ढांचे को और सरल बनाने के प्रयास किए गए हैं। पहले जहां अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर 5, 12, 18 और 28% के कई कर स्लैब लागू थे, वहीं इस सुधार के बाद अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर व्यवस्था को 5% और 18% के 2 प्रमुख स्लैब में व्यवस्थित किया गया है। वहीं तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड पेय, अत्यधिक महंगी कारों, नौकाओं और निजी विमानों जैसी विलासिता तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर 40% कर का प्रावधान किया गया है, ताकि राजस्व संतुलन भी बना रहे।
1: श्रोताओं, 9 वर्षों में जीएसटी ने केवल कर व्यवस्था को सरल बनाने का ही प्रयास नहीं किया है, बल्कि देश में पारदर्शी, डिजिटल और औपचारिक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। विशेषज्ञ जीएसटी को भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार क्यों मानते हैं और इस पूरे बदलाव को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के पूर्व अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल किस तरह देखते हैं, आइए सुनते हैं।
3: पिछले एक दशक यानी करीब 12 से 13 वर्षों में भारत ने जो 2 सबसे बड़े आर्थिक सुधार देखे हैं, उनमें से एक जीएसटी है। जीएसटी ने देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। पहले नगद आधारित अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा औपचारिक व्यवस्था

0: व्यवस्था से बाहर था, वह अब धीरे धीरे कर व्यवस्था के दायरे में आ रहा है। यही कारण है कि जीएसटी संग्रह में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। आज जीएसटी केवल कर संग्रह का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह सेंसेक्स, उपभोग, खुदरा माल ढुलाई, पीएमआई और डिजिटल लेनदेन जैसे कई आर्थिक संकेतकों का भी एक महत्वपूर्ण पैमाना बन चुका है। जब भी जीएसटी के आंकड़े आते हैं, उनसे यह पता चलता है कि आर्थिक विकास की रफ्तार क्या है और उपभोग का स्तर कैसा है। इसलिए आज जीएसटी को देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक माना जाता है।
1: इकोनॉमिक बैरोमीटर।
2: श्रोताओं, बढ़ता हुआ जीएसटी संग्रह इस बात का भी संकेत है कि अधिक से अधिक लोग कर व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब कर प्रणाली सरल और सुविधाजनक हो। आइए जानते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत किए गए सुधारों ने छोटे कारोबारियों और एमएसएमई के लिए कर अनुपालन को किस तरह आसान बनाया है।
3: जीएसटी लागू होने के बाद समय समय पर ऐसे कई सुधार किए गए जिनका सबसे अधिक लाभ एमएसएमई, स्टार्टअप और छोटे करदाताओं को मिला है। सबसे पहले छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की सीमा बढ़ाई गई। अप्रैल 2019 से वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के लिए ये सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई। वहीं कंपोजिशन स्कीम की सीमा भी 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कर दी गई। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को कम दस्तावेजों और आसान रिटर्न व्यवस्था के साथ एक निश्चित दर पर कर चुकाने की सुविधा मिलती है। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया। वर्ष 2020 में शुरू की गई QRMP यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट योजना के तहत 5 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाता हर महीने रिटर्न दाखिल करने के बजाय हर तिमाही रिटर्न जमा कर सकते हैं। जिन करदाताओं का किसी महीने कोई कारोबार नहीं होता, वे केवल SMS के माध्यम से 0 रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं। छोटे व्यापारियों और ई कॉमर्स विक्रेताओं को भी राहत दी गई है। अक्टूबर 2023 से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ही राज्य में सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण से छूट दी गई है। वहीं कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 कार्य दिवस के भीतर पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई। जीएसटी व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में भी लगातार काम हुआ है। जीएसटी एन पोर्टल, ई इनवॉइसिंग, पहले से भरे हुए रिटर्न और इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्वचालित मिलन जैसी व्यवस्थाओं ने कागजी काम काफी कम किया है, गलतियों की संभावना घटी है और कर अनुपालन को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग भी किया जा रहा है। इनकी मदद से संभावित कर चोरी की पहचान अधिक सटीक तरीके से की जाती है। इससे ईमानदारी से कर चुकाने वाले कारोबारियों के लिए अनावश्यक जांच और अनुपालन का बोझ कम होता है, जबकि निगरानी का फोकस केवल उच्च जोखिम वाले मामलों पर ही रहता है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
2: फिलहाल पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, लेकिन ऐसे समय में जून महीने के जीएसटी संग्रह के आंकड़ों ने एक सकारात्मक तस्वीर पेश की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2026 में कुल जीएसटी संग्रह जून 2025 की तुलना में 13.9% बढ़ा है। घरेलू जीएसटी संग्रह 6.5% बढ़कर 1,34,774 करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात पर जीएसटी संग्रह में 34.6% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 60,038 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इन आंकड़ों का देश की अर्थव्यवस्था के लिए आखिर क्या महत्व है, इसी विषय पर आकाशवाणी समाचार ने आर्थिक मामलों के जानकार पुनीत जैन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि जून का महीना काफी डिफिकल्ट महीना है, महंगाई की दर बढ़ रही थी, कंजम्पशन कम होने की आशंका थी, बारिश नहीं हो रही थी। ये सब चिंताओं के बीच में हमको जीएसटी जो फर्स्ट इंडिकेशन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो अच्छा आता है। वो ऐसा दर्शाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही होगी। तो ये काफी अनएक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। हालांकि इसमें काफी बड़ा योगदान इंपोर्ट के नंबर्स का है। अगर आप देखें, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी मुद्रा पे प्रेशर हो रहा है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है। कुछ हद तक हम इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि इस दौरान भी उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको स्टेबल रखा है, स्ट्रॉन्ग रखा है, और कंजम्पशन जो है भारत में अभी भी अच्छी चल रही है। ये एक सरप्राइजिंग ट्रेंड है, बट दैट इज ट्रू।
2: तो श्रोताओं, आज जीएसटी केवल कर संग्रह का माध्यम नहीं, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों, औपचारिक अर्थव्यवस्था और व्यापारिक विश्वास का भी एक महत्वपूर्ण संकेतक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए पारदर्शी, डिजिटल और भरोसेमंद आर्थिक व्यवस्था पर विशेष जोर दिया है। ऐसे में जीएसटी विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूती देने वाला एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। इसी के साथ श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।
5: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। आतंकवादं प्रति पाकिस्तान पक्षतः अविरतं क्रियमाणं पोषणं मत्वा भारतेन सिंधु जलसन्धिः स्थगितावस्थायामेव रक्षितुं पुनः स्वप्रतिज्ञा दृढीकृता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पवित्रा अमरनाथ यात्रा राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायमिति व्याहृता। यात्रा प्रसंगे गच्छद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धालुभ्यः प्रकटिताः शुभाशंसाः। केन्द्रीय वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन विकसित भारतस्य गौरवपूर्ण लक्ष्य यात्रायै फ्रांस देशस्य निवेशकाः सोत्साहम् आहुताः। भूकंप पीड़िते वेनेजुएला देशे मृतकानां संख्या 2,000+ जाता। सहस्रशः जनाः सम्प्रति अपि अज्ञाताः सन्ति। भारतेन तत्र ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं मानवीय सहायता कार्याणि तीव्रीकृतानि। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेशस्य च कतिपय क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः संचेतना प्रख्यापिता। अपि च क्रीडा वार्तासु, फीफा विश्वकप क्रीडा मालिकायां कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य सायं नवदिल्ल्यां आयोजितं वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् भारतेन पुनः सबलं प्रतिपादितं यत् पाकिस्तान प्रशासन पक्षतः आतंकवादस्य निरंतर पोषकत्वात् सिंधु जलसन्धिः स्थगितावस्थायामेव वर्तते। विदेश मंत्रालयस्य प्रमुखाधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः प्रावोचत् यत् सिंधु जलसन्धेः विषये भारतस्य नीतिः सर्वथा स्पष्टा अस्ति। तेन गदितं यत् पाकिस्तानेन प्रथमतः आतंकवादं प्रति स्वकीयं समर्थनं सर्वथा परित्यक्तव्यम्। तीस्ता नदी समग्र प्रबंधन पुनरुद्धार परियोजनायाः विषये श्री जयसवालेन स्पष्टीकृतं यत् बांग्लादेशे विकास परियोजनाभ्यः दीयमाना भारतस्य सहायता कञ्चन पारस्परिक सम्मति प्राप्तं मार्गचित्रमाधृत्य वर्तते, यस्य नियतकाले समीक्षा विधीयते। तेन प्रोदीरितं यत् तीस्ता नदी परियोजनायां भारतस्य चिन्तनं पूर्वमेव बांग्लादेशं प्रति ज्ञापितं। सहैव भारतं तीस्ता विषये स्वकीय चिन्तने सर्वान् सम्बद्ध घटनाक्रमान् संयोजयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिवर्षं प्रवर्तमानां पवित्र अमरनाथ यात्रां राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायं व्यपादिशत्। तेन प्रोदीरितं यत् भगवतः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यमिदं दर्शनं कोटिशः श्रद्धालूनां जीवने एकः अविस्मरणीयः अत्यन्तं मंगलमयश्चानुभवो वर्तते। अनेन सहैव सः जम्मू कश्मीर क्षेत्रे वार्षिक यात्रां कुर्वद्भ्यः तीर्थयात्रिभ्यः हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयत्। श्रद्धालून् प्रति प्रेषिते पत्रे प्रधानमन्त्रिणा अस्यां पावन यात्रायां पञ्च संकल्पानां परिपालनार्थम् अभ्यर्थना विहिता। एते संकल्पाः सन्ति शुचितायाः सर्वथा संरक्षणं, सुरक्षा नियमानां निष्ठापूर्वकम् अनुपालनम्, स्थानीय स्वदेशीयोत्पादनानां संवर्धनम्, रक्षाबंधन पर्वणि भगिन्यै भ्रात्रे वा पादपस्य उपहार प्रदानम्, तथा विकसित भारतस्य राष्ट्रीय संकल्पाय स्वयोगदानम्। अद्य प्रातः

कालात् विधिपूर्वकम् आरब्धा इयं श्री अमरनाथ यात्रा नुनवान पहलगाम तथा बालताल इति द्वाभ्यामेव मार्गाभ्याम अतीव सुचारु रूपेण निर्बाधं च अग्रे प्रवर्धते। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यगादीत यद् भारत फ्रांसयोः रणनीतिक संधिः शाश्वत दृढ़ नवोन्मेष प्रेरित विकासस्य दिशि सर्वथा सर्वोत्कृष्टं स्थानं भजते। पेरिस नगरे आयोजितं भारत फ्रांस व्यापार सम्मेलनं संबोधयन्त्या तया सप्रमाणं प्रतिपादितं यत् प्रावधिक प्रगतेः आपूर्ति श्रृंखलायाः ऊर्जा संचारस्य भूराजनैतिक उद्भव परिवर्तनानां च कारणात् वैश्विक अर्थव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। वित्तमंत्रिणा फ्रांस देशस्य वाणिज्य नेतारः निवेशकश्च विकसित भारतमिति राष्ट्रीय संकल्पस्य महायात्रायां भारतस्य सहयात्रिणः भवितुं सोत्साहं आहूताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्यान्तर्गतं भूकंपग्रस्ताय वेनेजुएला देशाय स्वकीया मानवीया सहायता प्रेषिता। विदेश मंत्रालयेन सामाजिक संजालीय तंत्रे प्रचलितस्य चिकित्सा कार्यस्य चित्राणि प्रसारयता सम्मुलिखितं यत् भारतीय सेना क्षेत्र चिकित्सालयः प्रभावितेषु समुदायेषु निरन्तरं चिकित्सा सेवाः प्रयच्छति। वेनेजुएला स्थितेन भारतीय दूतावासेन कथितं यत् अस्मिन् दक्षिण अमेरिका राष्ट्रे भारतस्य व्यावसायिक सेवा गुणवत्तायाः जनसामान्यैः भूरिशः प्रशंसा कृता। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा सप्तदिवसीयस्य राष्ट्रिय शोकस्य घोषणां कृतवती। अनेन भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 95+500 संजाता। पश्चिम बंगाल विधानसभाया नवनिर्वाचितानां सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिरला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम्। उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः। उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तंत्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता। अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विदर्भ क्षेत्रेषु झंझावातस्य विद्युत प्रपातस्य चापि संभावना प्रकटीकृता। विभागानुसारं श्वः यावत् उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्येषु अपि अत्यधिक वृष्टिः भवितुं शक्या। फीफा विश्व चषके कनाडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। इतिहासे चतुर्वारं प्रागुपान्त्य चरणे गन्तुं स्विट्जरलैंड दलं आगामी मंगलवासरे अस्मिन्नेव स्थाने कोलंबिया अथवा घाना देशेन सह स्पर्धिष्यति। अन्यस्मिन् द्वन्द्वे स्पेन देशेन कैलिफोर्नियायाः लॉन्स एलेंजेस क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलं 3-0 इत्यनेन पराभूय राउंड ऑफ 16 चक्रे स्वस्थानं सुरक्षितम्।
अपरत्र केनडादेशस्य टोरेंटो नगरे प्रवृत्ते द्वन्द्वे पुर्तगाल देशः अपि क्रोएशिया दलं 2-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य

राउंड ऑफ 16 चक्रे प्राप्तवान। मंगलवासरे डलास नगरे राउंड ऑफ 16 चक्रे पुर्तगाल दलम स्पेन देशम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मामूली बढ़त हुई। सेंसेक्स 262 अंक यानी 0.3% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक यानी 0.4% बढ़कर 24,271 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग सपाट रहा। बाजार बढ़त के साथ खुले और पहले के आधे सत्र में तेजी का रुख रहा, लेकिन दूसरे सत्र में मुनाफा वसूली के कारण दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और आज मिलाकर लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए।
0: The benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 262 points or 0.34% to close at 77,764. The Nifty also added 95 points or 0.4% to settle at 24,271. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index slipped 0.2%, while the small cap 100 index ended nearly flat. Earlier, the markets opened higher and maintained upbeat momentum throughout the first half. However, in the latter half of the session, both indices paired their early gains amid profit booking, but managed to close higher for the third consecutive session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में HCL टेक 5.8%, बजाज फिनसर्व 2% से अधिक और टेक महिंद्रा तथा भारती एयरटेल 1.8% बढ़े। वहीं बात खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की करें तो एक्सिस बैंक 1.5% से अधिक, SBI तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% से अधिक गिरे और लार्सन एंड टूब्रो में 0.8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, realty jumped 2.2%, focused IT rose over 1.7%, and IT climbed more than 1.5%. In contrast, power plunged 2.4%.

0: Capital Goods fell almost 2.3%, and PSU banks lost over 1.6%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,257 companies advanced, 1,986 declined, and 198 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 17 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए और 22 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.71 पर कारोबार कर रहा था. विशाल, आज की ट्रेजेक्ट्री को आप कैसे आंकते हैं, मार्केट ट्रेजेक्ट्री को?
2: देखिए प्राची, आज तो सब तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है. अगर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, और सोने और चांदी की कीमतों में भी उछाल है. हालांकि ग्लोबल मिक्स्ड क्यूज हैं मोटे तौर पर अगर देखा जाए, और समझने की कोशिश करें तो आईटी सेक्टर जिसने पिछले हफ्ते काफ़ी नीचे खींचा था मार्केट को, खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सेक्टर से संबंधित जो स्टॉक्स थे उनमें जिस तरह की गिरावट दर्ज की गई थी वैश्विक स्तर पर, उसका सीधा असर भी देखने को मिला था. लेकिन ये आज अच्छा रिबाउंड है, लगभग 2% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी है आईटी सेक्टर के. और आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर रहा है आज बाजार के ऊपर पहुंचने में, ऊपर आने में. इसके अलावा कुछ ग्लोबल क्यूज हैं, जैसे कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अब लगभग राहत की बात यह है कि थोड़े पॉजिटिव संकेत इस तरह के मिल रहे हैं, और थोड़े पुख्ता संकेत मिल रहे हैं. पॉजिटिव संकेत तो लगभग हर हफ्ते मिलते थे और फिर वो नेगेटिव में बदलते थे, लेकिन इस बार शायद पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि अब ये लड़ाई खात्मे की ओर है. लेकिन उससे बड़ी बात, यूएस जो जॉब मार्केट का जो डेटा आया है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है. अब हालांकि सीधे सीधे देखा जाए तो पिछले 4 महीने में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है जो नई नौकरियां बनी है यूएस की मार्केट में, और इस लिहाज से देखा जाए तो वो कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए. लेकिन क्योंकि वहाँ फेड रिजर्व के नए गवर्नर आए हैं, उनका स्टैंड बहुत ही हॉकिश है, और उसके चलते ये जो डेटा है, शायद ये डेटा थोड़ी सी राहत प्रदान करे इस मामले में कि शायद जो फेड रिजर्व है वो उसका जो हॉकिश स्टैंड है उसमें थोड़ी सी ढील बरतें वो, और इसीलिए शायद जो इन्वेस्टर्स है, खासतौर पे जो यूएस के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनका नज़रिया मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही माना जाएगा. और अगर अमेरिकी बाजार में कुछ पॉजिटिव नज़र आता है तो उसका असर बाकी बाजारों पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पॉजिटिव ही दिखाई देता है, अगर कोई और बड़ी खबर या कोई और बड़ा कारण ना हो तो.
0: Vishal, I'd like to draw your attention to the broader market here. If you look at the mid-cap and the small-cap segment, you know, we have been seeing this uptick in the overall market for the past few sessions now, but this broader market has not been quite performing up to that level, you know, up to the, you know, the level which people would have expected. So what do you see the reason behind this?
2: Well, I think, you know, Nishit, let's not...
0: Mid-cap slipped, although it's a marginal slip, 0.2%.
2: Yeah.
0: And the small cap was flat today, but mostly it's not kind of picking up, you know, pace with the overall market.
2: I get the sentiment, you know. Usually it's not about it's not performing well. It's about, you know, why are we not picking? Why is the market not picking?
0: True.
2: You know, taking up that pace.
0: Yes.
2: Now let's not, you know, and when we look at this question largely, we should also look at a little bit of a context here. Now, if we contextualize it and if we go back a little bit, this is not the case today. This was not the case in the past 3 days. If we do a larger understanding of the scenario for the past month or 2 months or 3 months as well, let's also understand that there was a lot of pressure on the market in terms of a lot of negative global cues. The crisis in the energy sector, the oil prices going up and then coming down, then again going up. A lot of, confusion as far as investors are concerned. And that also led to a lot of, outflow of FII as well from the market. That is something which it takes a little bit of a time for the market to, take those positive cues which are coming in right now, absorb them, and you know, pick up the pace. It is picking up the pace in certain sectors, one here, two there, or maybe going a little flat on, in certain sectors as well. But it will take some time. I'm pretty sure it'll come back. There are positive cues coming in, but yes, they're absorbing it and perhaps realizing investors are very smart. You know, they're the smartest of the lot as far as you know, economic aspect is concerned. So they would not put their money where they don't think they will get some return in the long run.
0: Vishal, you mentioned about the energy crisis, of course, you know, courtesy of the West Asian crisis has happened. But if you look at the power sector here, you know, it has been, you know, it has performed exceptionally well over the past 2-3 months, if you may say. But over the past 10 sessions or 15 sessions, it's been kind of plateauing now, or rather slipping. Even today, if you look at the sector, it plunged 2.4%.
2: Well, that's a simple mathematics out there, Nishit. The point is that when the energy crisis hit, of course, the power sector was pretty much in demand. You know, there was a lot of it's like a demand and supply gap. That's one. And two, the power sector companies, you know, did not disappoint. They did not flounder when the focus was all on them. And that is why this demand and supply gap, which was there due to energy crisis and all that happening, all eyes on the power sector, you know, as long, let's look at what is it that can be done. And that perhaps was the momentum. Right now, you know, again, we come back to the same situation. The oil prices are coming down. The energy crisis is ebbing away. So, you know, that gives a bit of a elbow room as well. So it might sound very amusing, but this is how it happens, you know. In the stock market, this is how it's going to happen. Of course, that doesn't mean that the fundamentals of a particular sector or a particular company or their performance or their management does not count. It does count, but yes, if there are global factors, sometimes they overshadow the overall situation and the performance as well.
1: Vishal, आपने power के क्षेत्र की बात की, आपने IT के बारे में बताया, आपने ये भी बीच में बताया कि ऐसा कहीं पर भी अगर लगता है कि खतरा है पैसे को निश्चित, तो क्यों कोई जाएगा और उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में अपने पैसे लगाएगा? तो निवेशकों और हमारे प्रोग्राम के श्रोताओं की नजर से आप अगर देखें इसे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपके हिसाब से ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनका मोमेंटम आपको इस दौरान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है?
2: देखिए, मैं तो हमेशा इसी बात को कहता हूं कि निवेशकों के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर जो शॉर्ट टर्म असेसमेंट करने की कोशिश की जाएगी, तो मेरा मानना है कि वो शॉर्ट टर्म असेसमेंट हमेशा, अगर हमेशा नहीं तो ज़्यादातर समय पे गलत ही साबित होगी. क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं. आप अगर शॉर्ट टर्म मान के भी चलते हैं तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही रहेगी, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप सोचेंगे कि चलो थोड़े दिन और देख लेते हैं, तो वो अपने आप लॉन्ग टर्म हो जाएगी. तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को असेस करिए. आप ये मत देखिए कि पिछले एक हफ्ते में किसने अच्छा किया या पिछले 15 दिन में किसने अच्छा किया. ऑफ कोर्स पिछले 2 महीने में जब ये पूरी ग्लोबल क्राइसिस रही, तो रेजिलियंस किस सेक्टर का था, रेजिलियंस किस पर्टिकुलर कंपनी का था, वो बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन फंडामेंटल्स किसके अच्छे हैं, नंबर एक. नंबर दो, ग्रोथ किस सेक्टर में है. नंबर तीन, क्या केवल ग्रोथ इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं, या ग्रोथ इसलिए भी है कि जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको सपोर्ट कर रही है. तो इस तरह से जो सेक्टर्स को अगर चूज किया जाए, तो हमेशा से जो पिछले लगभग साल 2 साल से जो सेक्टर्स बने हुए हैं और अभी भी वही बने हुए हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुआ, या फिर स्पेस हुआ, या फिर उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी रिसोर्सेज हुआ, पावर सेक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कभी गिरावट दिखाई दे सकती है. आईटी सेक्टर इज ऑलवेज अ ग्रीन सेक्टर. एआई ऑफ कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप में थोड़ी सी एब्जॉर्ब करने की ताकत है और शक्ति है, तो अगर जो झटके बीच बीच में मिलेंगे उसको, तो मेरा कहना है कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचिए.
0: राइट,
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और रुख करते हैं यूरोपीय और एशियन बाजार की तरफ. आज एशिया का शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 5.8% बढ़ा. पिछले सत्र में हुई भारी बिकवाली के बाद निवेशकों ने कम कीमत वाले सेमीकंडक्टर शेयरों की आज खरीदारी की. इधर जापान का निकेई 1.5%, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.5%, और ताइवान का ताइएक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. उधर यूरोप के प्रमुख शेयर सूचकांक मिले जुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स लगभग आधा प्रतिशत, जबकि लंदन का फुटसी 0.3% से अधिक लुढ़का और फ्रांस का कैक मामूली रूप से नीचे आया।
0: एंड मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स, द यूएस इक्विटीज एंडेड ऑन अ मिक्स्ड नोट यस्टरडे। इन्वेस्टर्स रिएक्टेड टू अ सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड यूएस जॉब्स रिपोर्ट फॉर जून, व्हिच ईज्ड कंसर्न्स ओवर इंटरेस्ट रेट हाइक्स, while technology stocks remained under pressure. Among the major indices, the Nasdaq composite fell 0.8%, while the S&P 500 ended largely unchanged. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average surged more than 1.1% to close at a record high of 52,900. Markets in the United States will remain closed tonight on account of Independence Day. Vishali, we're talking about the U.S. Jobs report, you know, which has kind of, even as the story says, it has eased concerns over the interest rates. So, you know, in the coming days, you know, talking of the Fed, of course, you know, what Fed does, the world follows, right? So how do you see kind of stacking up? Will it be continuing with that, you, the hawkish stance that you talked about some time back?
2: It's going to be really, really important, not only for the U.S. economy and the investors in the United States, but as you pointed out, across the world for the other global markets as well. Because and this is a very, very piquant situation for both the United States government and, of course, the U.S. Fed as well. Because their policies have to, you know, move in sync with each other. That's one. They cannot let inflation go beyond a particular level,
0: right,
2: but they cannot overlook the data like the job data, the unemployment data, and the investors do want a relaxation, you know, they're looking forward to that. So will that happen, will that not happen? I believe I think the US Fed is going to keep its fist clenched at least for some time now.
0: Right.
1: विशाल, अगर हम वैश्विक टेक ट्रेंड की बात करें तो नैसडैक एक महीने में तकरीबन 3% गिरा है, कॉस्पी 13% गिरा है, वहीं जो महीने भर में निफ्टी है वो 3.3% उसमें बढ़त आई है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल टेक ट्रेंड में रिवर्सल है?
2: देखिए, मैं टेक ट्रेंड में रिवर्सल तो इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि जब हम कॉस्पी की बात करें या नैसडैक की बात करें और भारतीय बाजारों की बात करें, एक इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं
1: जी।
2: और जहां गिरावट ज्यादा दर्ज हुई है, वहां अगर आप थोड़ा सा उनकी इकोनॉमी पे और गहन तरीके से नजर डाल के देखें तो ये भी समझ में आएगा कि वहां जितने पॉजिटिव क्यूज डोमेस्टिकली मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले उन बाजारों को। भारतीय बाजारों को पॉजिटिव क्यूज हमेशा मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात के जो ग्लोबल क्राइसिस थी, जो वेस्ट एशिया में जो हो रहा था, मध्य पूर्व में जो हो रहा था, उसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस थी, उसका सीधा और बड़ा असर इन बाजारों और इन देशों में देखने को मिला। हम पर भी असर पड़ा, ऐसी बात नहीं है कि हम पे नहीं असर पड़ा, लेकिन उस हद तक नहीं पड़ा, उस लेवल तक नहीं पड़ा। और हमारे जो जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक और बाजार के, मार्केट्स के भी, उनमें इतनी कुव्वत थी कि वो उसको, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए। इन बाजारों में और इन देशों में भी है, लेकिन इनकी निर्भरता हमसे कहीं ज्यादा है
1: जी।
2: इस मायने में, क्वांटिटी के मायने में नहीं, लेकिन इस मायने में कि उसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पे किस तरह से पड़ता है। हमारे पास और भी तरीके हैं, और भी हमारे पास खपत के जरिया है, हमारे पास सप्लाई का जरिया है, हमारे पास डिमांड को मीट करने का जरिया है, उनके पास उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और इसीलिए आईटी सेक्टर और इस तरह के सेक्टर्स में जब ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो उसका सीधा असर पहले वहां देखने को मिलता है, उसके बाद यहां देखने को मिलता है।
0: राइट। एंड इन सम अदर स्टोरीज, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India is on track to achieve $1 trillion export targets for the year, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that India's export strategy is being built around a stronger, more inclusive approach in which every state, district and industry segment is treated as equally important.
3: Our aim is not small. Our aim is to grow in the current year. We were 863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach $1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about 530. $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470. That is how we'll reach a trillion, which is a growth of about 11%.
0: The minister highlighted that the central government is planning to expand the export base beyond the traditional hubs by making every district in the country an export hub. He said that the government is simplifying procedures, reducing compliance burdens, and improving the ease of doing business to support the export ecosystem. Mr. Goyal emphasized the role of export promotion.

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीसरा नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मूले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: ज्ञानेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप जापान में रह चुके हैं, तो क्या ये सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक सम्मेलन रहा है या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बदलती हुई रणनीतियां हैं उनके लिए कोई संकेत है, या फिर आपको लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि इस मुलाकात से हासिल हुई है?
2: मैं समझता हूं कि हमारे जो रिश्ते हैं विदेशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देशों के तुलना में जिस देश के साथ हमारे रिश्ते सबसे बड़ा महत्व रखते हैं मेरे ख्याल से, वो है जापान। जापान और भारत के रिश्ते की खूबी अगर कोई अगर है तो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दोनों को खलता है या किसी तरह से नीचे खींचता है। ये आगे जाने वाला रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि जो जापान की विद्यमान प्रधानमंत्री है वो पहली बार भारत आ रही है, और वो भी जापान की पहली प्रधानमंत्री है, वो तो वो भी एक अपनी विशेषता रखते है। और 16वां जो शिखर वार्तालाप है ये रिश्ते को दिखाता है कि कितने उच्च स्तरीय बैठकें होती है और उसको कितना इस रिश्ते का महत्व है। सिर्फ प्रशांत महासागर ही नहीं, दुनिया में जहां जहां अलग अलग तरीके से इसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं उनके बारे में भी जिक्र आया है। प्रशांत महासागर के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, अमेरिका ने इसको इंडो पैसिफिक के बजाय यूएस पैसिफिक कहना शुरू कर दिया, और हालांकि बहुत राजनयिक प्रयत्नों के बाद इंडो पैसिफिक ये बात जो है रिकॉग्नाइज होती आई है पिछले कुछ एक दो दशकों में। तो ये प्रशांत महासागर जो है हमारे लिए सभी तरह से महत्वपूर्ण है। वहाँ बहुत सारे संसाधन है, वहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण देश है जिनके साथ हमारे रिश्ते है, और एक दुनिया का महत्वपूर्ण जो रिसोर्स बोलते हैं सागरी रिसोर्स।
1: भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान के संबंध वास्तव में बेहद विशेष हैं।
3: हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती हैं। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती हैं तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: दोनों प्रधानमंत्रियों की मीटिंग के बाद जो संयुक्त वक्तव्य दिया गया उसमें रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क को आपसी रिश्ते के 3 बड़े स्तंभ के रूप में बताया गया है, तो आपको लगता है कि भारत और जापान के जो संबंध है एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुके हैं?
2: ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये रिश्ता ऑलरेडी उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों की ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाए और मजबूत कैसे बनाए और इसके आयाम जो है वो किस तरह से बढ़ाए, ये अभी विषय है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात तो है ही है, इसके साथ ऊर्जा की सिक्योरिटी की बात है, इसमें AI से लेकर कोलैबोरेशन की बात है, रेयर अर्थ और प्रेशियस मटेरियल जो होता है उसके बारे में, जैसे बैटरी का बड़े पैमाने पे दोनों देशों में निर्माण होने के लिए प्रयत्न, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रशांत महासागर में शांति प्रस्थापित हो तो भारत का है ही महत्वपूर्ण उद्देश्य। उसके साथ साथ अन्य मामलों पे भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है जिसका प्रतिबिंब जो है हम लोग इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं जो कि 10 पन्नों तक चला जाता है।
1: अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया तमाम चीजों का, तो सेमीकंडक्टर का भी काफी बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया, हाई टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने की बात है, साइंस या फिर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी, लिपिक्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मिशन की कई सारी चीजों में बात कर रहे हैं, तो ये भविष्य की कूटनीति और विज्ञान को मिला जुला करके दोनों देश आपसी संबंधों को आगे ले जा रहे हैं?
2: बिल्कुल ले जा रहे हैं। कि हमारा जैसे व्यापार है, व्यापार के बारे में चर्चा ये हुई है कि भारत से निर्यात जापान बढ़नी चाहिए। आज के दिन में जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं वो जापान के फेवर में बड़े पैमाने पे है। भारत की निर्यात जो है वो करीबन 6 बिलियन के आसपास है और कुल मिलकर जो 27 बिलियन डॉलर ट्रेड है उसमें 5 बिलियन बहुत कम लगता है, इसलिए इसके बारे में कोशिश की जाएगी। करीबन 10 ट्रिलियन जापानीज एन की इन्वेस्टमेंट में आ रही है। इसमें रेलवे का भी जिक्र है, इसमें नए नए उद्योगों का जिक्र है। बड़े पैमाने पे सुमितोमो ने भारत में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लिया है। तो इस तरह से एक कमी ढूंढने की मुश्किल लगती है इस पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट में। इतना सारा इसका आयाम जो है विशाल है, दोनों देश के बीच में संबंधों को दर्शाता है।
1: जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि जापान और भारत को अपनी अपनी ताकत का पूरा लाभ उठाते हुए साथ मिलकर और अधिक सशक्त तथा समृद्ध बनना चाहिए।
4: We confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation.
1: आपने ट्रेन की बात की है तो मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन परियोजना है इसका भी जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी परियोजना है भारत के लिहाज से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जापान ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, निवेश भी किया है। तो ये परियोजना जो है एक तरह से कह सकते हैं भारत और जापान की साझेदारी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रतीक बन चुकी है। व्यापक अहमियत अगर हम देखें इकोनॉमिक दृष्टि से तो आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट होगा? ये
2: बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जैसा कि मैंने कहा, व्यापार की चर्चा हुई है, निवेश की चर्चा, ज्वाइंट कोलैबोरेशन की चर्चा हुई है, बैटरी और अन्य उत्पादों के प्रोडक्ट्स की बात हुई है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जितनी चीजें जरूरत है उन सब के बारे में चर्चा हुई। AI के बारे में कोलैबोरेशन का जिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर आर्थिक जो नीतियां हैं, वित्तीय नीतियां हैं, उसके बारे में काफी प्रगति इसमें हो चुकी है और जापान ने कमिटमेंट दिया है कि वो बड़े पैमाने पे भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा।
1: और उसपे एक चीज ये भी देखने में आई है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कई अहम फैसले हुए हैं और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र किया गया, क्लीन अमोनिया की बात हुई, बायोगैस क्षेत्र की नई साझेदारी शुरू करने की बात हुई है। भविष्य की ऊर्जा को लेकर के भारत के अपने एजेंडा है, भारत ने बहुत कुछ सोच रखा है कि हमें कितना ज्यादा करना, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने पर लगातार बात होती है। तो आपको लगता है कि ये जो नई चीजें शुरू हो रही भारत और जापान के बीच में, तो इससे हमारे जो अपने गोल्स हमने डिसाइड किए हैं भारत ने, उसमें उन्हें प्राप्त करने में बड़ी भूमिका होगी?
2: बिल्कुल। जैसे हमारे लिए हॉर्मुज का जो कन्फ्लिक्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा हमारे देश के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए। उसी तरह से बिल्कुल जापान भी ऊर्जा के लिए बहुत निर्भर है। तो दोनों देशों ने जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए कदम उठाने का इसमें जिक्र किया है। ये मैं समझता हूँ कि ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी चर्चा हुई है कि किस तरह से यूक्रेन में शांति प्रस्थापित होना जरूरी है, किस तरह से कोई एक देश खुद के टर्म पे ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। गाजा जो है, पैलेस्टीनियंस और इसराइल का जो वहां मुद्दा उठा है, उसके पुनर्स्थापन के लिए, रिसेटलमेंट के लिए, रिडेवलपमेंट के लिए चर्चा हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि भारत जापान के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत आगे ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में भारत और जापान जो है सदस्य रूप में आना चाहिए, इसके ऊपर भी सहमति पहले ही हो चुकी है, उसके ऊपर दोबारा एक बार स्टैंपिंग जो है मैं कहता हूँ इस बैठक में हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर ये बहुत सफल यात्रा रही है।
1: भारत और जापान कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात रखते हैं, क्वाड की हम बात करें, आसियान का जिक्र करें या फिर बिम्स्टेक जैसे मंचों का उल्लेख करें। ऐसे स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं जहां पर दोनों देश मिल करके बहुत ही स्पष्ट नीति के साथ में काम करना चाहते हैं। तो जो नई रणनीतिक व्यवस्थाएं वर्तमान समय में बनी हुई हैं, उनको देख करके भविष्य को कैसे देखते हैं?
2: भारत और जापान मुझे लगता है कि दुनिया की जो डेस्टिनी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हैं और उसकी नींव जो है भविष्य की, आगे आने वाले दशकों की तैयारी जो है इसमें ये डॉक्यूमेंट जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट दर्शाता है। किस तरह से दो देशों के बीच संबंध होने चाहिए और किस तरह से उनको विश्व में शांति और समृद्धि लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
1: भारत के आंतरिक हिस्सों की अगर हम देखते हैं तो जापान का बहुत ज्यादा उत्साह रहता है पूर्वोत्तर भारत में निवेश करने का। हालांकि ये हमारे लिए क्षेत्रीय विकास की बात है, लेकिन भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जापान की क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं?
2: देखिए, जापान दूसरे विश्व युद्ध में हमारे पूर्वोत्तर तक पहुंच गया था, जैसे अंडमान निकोबार में पहुंच गए थे उसी तरह से। तो जापान अच्छे से इससे एक उनका कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है उस इलाके से। दूसरा जो है कि उनकी ये सोच है कि जहां विकास

0: काम है वहां जाके हम विकास के कार्यों में सहभाग दे। तो जापान का पूर्वोत्तर में रुचि लेना जो है भारत के लिए भी बहुत सहायक है। वहां से बड़े पैमाने पे जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी की ट्रेंड मैन पावर जो है बहुत बड़े पैमाने से पूर्वोत्तर के राज्यों से जापान आज के दिन में जा रही है और ये बहुत ही स्वागत करने वाली बात है।
1: संयुक्त बयान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और दोनों देशों ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा भी की है। तो जापान का इतना खुलकर भारत के पक्ष में आना, इसे भारत के दृष्टिकोण से कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं और वैश्विक स्तर पर इसके क्या असर होंगे, क्या मायने होंगे?
0: जापान और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन ने दिया है और चीन और जापान के रिश्ते जो है वो भी काफी संघर्ष वाले रिश्ते रहे हैं, बहुत नकारात्मक रिश्ते रहे हैं भूतकाल में भी और आज भी उसमें काफी संघर्ष के मुद्दे हैं। तो इसलिए भारत और जापान की जहां तक बात है एक कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों के हित संबंध जो है इंटरेस्ट जो है वो एक इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए जापान भी और भारत भी आतंकवाद को लेकर बहुत मजबूती से विरोध करते हैं उसका।
1: ज्ञानेश्वर जी, अक्सर जब इस तरह के समझौतों की या स्टेटमेंट पर हम चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है कि लोगों के बीच संपर्क, खासतौर पर दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच संपर्क हो, उनकी बातचीत, जापान की भाषा हो, पर्यटन हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, इस पर जोर देने का लगातार जिक्र होता है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट का जो एक थॉट है उसको लेकर के जापान का हमारे प्रति दृष्टिकोण, हमारा जापान के प्रति दृष्टिकोण, दोनों में आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है?
0: 7वीं शताब्दी में पहला बुद्ध मंदिर जो है जापान में प्रस्थापित हो चुका था और ये बौद्ध धर्म जो है यहाँ से चीन होके तिब्बत, चीन और कोरिया होके जापान चला गया। उसके अलावा जो है गांधी और नेहरू के विचारों का जापान में बहुत प्रभाव शुरू के सालों में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान की जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो भारत के राधा विनोद पाल जज थे, उन्होंने ये कहा कि हारने वाले राष्ट्र पर आप अपना जो है शर्तें लाद नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ी बात थी उस जापान के लिए। बुद्धिज्म के अलावा बोनसाई हो या अन्य कलाएं हो, सुमिए हो, जहाँ पर जापान भारत के कवियों पर हाइकू का बड़ा प्रभाव है, तो ये सब चीजें जो है एनिमेशन जो है बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरह से आदान प्रदान जो रहा है वो सदियों का रहा है सांस्कृतिक संबंधों का। मुझे लगता है कि इस तरह के जब राजनयिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं उसका असर सहज अन्य आयामों पर भी हो जाता है।
1: ज्ञानेश्वर जी, भारत लगातार अपने महासागर, पहले जो सागर था उसे महासागर में चेंज किया गया, उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं जापान की अगर बात हम समझे तो वो उनका कहना है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की हम बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो दोनों पहल दोनों देशों की तरफ से हो रही है पूरे क्षेत्र में ये एक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से मजबूत करेंगे? और अगर चीन को लेकर के इसे हम समझें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
0: बहुत जरूरी है कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है विश्व में अलग अलग तरीके से, सिर्फ राजनयिक नहीं, वो तो मिलिट्री भी है, इकोनॉमिक पावर भी है और अलग अलग तरीके से वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए भारत और जापान का एक साथ आना बहुत जरूरी था और इस जो शिखर वार्ता के समय इस पे मुहर लग चुकी है कि हम जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे और इकट्ठे जो है इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बना के रखें।
1: ज्ञानेश्वर जी, अगर हम इस पूरे संयुक्त वक्तव्य को देखें, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को देखें, ऐसे समय में जब वैश्विक हालात काफी उथल पुथल हो रखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही है ऐसा एजेंडा हमारा, या फिर भारत जापान संबंधों को और भी लंबा ले जाने के लिए खासतौर पर एक दशक की रणनीतिक रूपरेखा को यह तय करेगा?
0: मेरे ख्याल से ये हर साल प्रधानमंत्री के स्तर पर शिखर वार्ता होती है, इसका अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब है। इस तरह से द्विपक्षीय वार्तालाप हर साल होना ये अपने आप में बहुत विशेष बात है।
1: ज्ञानेश्वर जी, आपने इस चर्चा में तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, जिज्ञासाओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मूले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में

एक मेगाहर्ट्ज़ सुन रहे हैं आप और एफएम गोल्ड के सभी सुधी श्रोता संगीत में इस प्रोग्राम का करते हैं बेसब्री से इंतज़ार, ये हम सब जानते ही हैं। 7:25 पर शुरू होता है प्रोग्राम सांझ ढले।

किशोर कुमार की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म से आपने गीत सुना। फिल्म आई थी 1971 में, यानी 70s का वो दौर था। उस दौर में जहां खूबसूरत संगीत हुआ, वहीं उस दौर में राजेश खन्ना एक ऐसा नाम था जो हर दिल को भाता था और हर दिल पर उसने राज किया। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सांझ ढली।

1973 में आई थी आने में का फिल्म, जिससे आपने ये गीत सुना, बाहों में चले आओ। इस फिल्म पर पर्दे पर थे संजीव कुमार और जया भादुरी। और हम सभी जानते हैं कि संजीव कुमार वर्सटाइल एक्टर रहे हैं अपने दौर के। उसी दौर में उन्होंने अपने जया भादुरी के साथ प्रेमी की भूमिका भी निभाई और एक ही फिल्म में उन्होंने उनके पिता की भूमिका भी निभाई। और अपने इसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण संजीव कुमार को आज भी हम याद करते हैं।

0: प्लान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जाए। 1967 में आई फिल्म फर्ज से आपने गीत सुना रफी साहब की आवाज में। इस गीत के साथ ही सांझ झले प्रोग्राम को यहीं संपन्न करते हैं। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए

0: सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए सलाहकार परिषद की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास रोडमैप की समीक्षा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति और श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2026 की आधिकारिक पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 स्वच्छ वायु, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में दिल्ली सरकार का एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ईवी पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी वाहन खरीदने और RC प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 60 दिनों के भीतर DBT के माध्यम से सब्सिडी उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अगले 4 वर्षों में नई ईवी नीति के क्रियान्वयन पर 7000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 30000 रुपए तक, इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर 50000 रुपए तक और N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1,00,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर भी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों के लिए सरल, तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, ताकि पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सके और पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, पारदर्शी और सिटीजन सेंट्रिक बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू होने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। परियोजना के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करने, प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से उत्सर्जन कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और आधुनिक निगरानी प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर सभी से संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि ये केवल विशेष दिन तक सीमित न रहे, बल्कि सभी की रोजमर्रा की आदत बनना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घर से निकलते समय कपड़े या जूट का थैला साथ रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक थैलों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें और अपने छोटे छोटे प्रयासों से स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त दिल्ली के निर्माण में सहभागी बने। दिल्ली के भागीरथी जल शोधन संयंत्र में आज स्कूली बच्चों ने वाटर ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया को करीब से समझा, साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़ी संख्या में पौधारोपण भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास के रोड मैप की समीक्षा की गई।
3: बैठक के दौरान आगामी मास्टर प्लान, नागरिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने तथा शहर के लिए नियोजित समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर व्यापक चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने डीडीए को निर्देश दिए कि वे जमीन के टुकड़ों और इमारतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल करके अवैध कब्जों और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की बदलती शहरी चुनौतियों से निपटने

0: नगर कॉलोनी अस्पताल में आज नवनिर्मित फ्रंट ब्लॉक और आधुनिक फिजियोथेरेपी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस फ्रंट ब्लॉक में 6 बेड का डे केयर सेंटर, 12 कंसल्टिंग रूम, 1 डे केयर रूम और 1 कॉन्फ्रेंस रूम विकसित किए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके तहत सभी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, ऑनलाइन जुड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नई सुविधाओं से देश के हजारों नागरिकों को बेहतर और त्वरित उपचार का लाभ मिलेगा।
1: हमने एक नया सिस्टम बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा, ताकि आपको एक क्लिक में पता चले कि कहाँ आईसीयू बेड खाली है, आप सीधा अपने पेशेंट को वहाँ लेके जा सके। हमने दिल्ली राज्य में सोटो ऑर्गन डोनेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ दानदाता और रिसीवर दोनों को कनेक्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ऑर्गन डोनेशन का काम कर सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
0: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में आज चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में प्रारंभ की गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SRIR प्रक्रिया को लेकर प्रथम समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली भाजपा महामंत्री और SIR प्रक्रिया प्रमुख योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि दिल्ली में अन्य दलों की तरह ही भाजपा के भी बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल 13,033 पोलिंग बूथ हैं और इनमें 12,000 से अधिक पर भाजपा के BLA2 चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 21 छात्रों को HCL टेक बी नामक निजी कंपनी में अर्न वाइल यू लर्न, सीखते हुए कमाएं प्रोग्राम के जरिए रोजगार मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि यह उपलब्धि सभी छात्रों की क्षमता को दर्शाती है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत की समग्र शासन की अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं के समन्वय की आवश्यकता है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में दक्ष के तीसरे बैच के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: दक्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक वर्षीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम है, जिसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग और लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण से संस्थानों में तालमेल स्थापित होना चाहिए, ताकि 2047 तक विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम शासन प्रणाली तैयार की जा सके। उन्होंने वर्तमान बैच में महिला अधिकारियों के बढ़ते प्रतिनिधित्व की सराहना करते हुए इसे भारत के बदलते नेतृत्व परिदृश्य का सकारात्मक प्रतिबिंब बताया। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि आज नेतृत्व विकास का दायरा व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने से कहीं अधिक है, जिसमें तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकियों और शासन मॉडल के अनुकूल होने में सक्षम संगठनात्मक और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि आयोग AI, उभरती प्रौद्योगिकियों और संस्थागत अनुकूल क्षमता जैसे भविष्योन्मुखी विषयों को अपने क्षमता निर्माण ढांचे में एकीकृत कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर योगेश सिंह की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका नया कार्यकाल इस साल 8 अक्टूबर से अगले 5 वर्षों तक रहेगा। प्रोफेसर सिंह ने वर्ष 2021 में कुलपति का पद संभाला था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों ही श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीकरण नहीं मिल जाता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की इस तीर्थ यात्रा के दौरान

0: पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अमरनाथ यात्रा के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये यात्रा सनातन संस्कृति की अटूट आस्था और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बर्फानी की असीम कृपा से सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा मंगलमय और सफल हो। सरकार ने बैट बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर, एप्पल एप स्टोर से भी हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन्हें ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार करके एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी भारत नेपाल बॉर्डर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। युवा कार्यक्रम विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित करवाना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू कर दी है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर शाम के समय हल्की बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रह सकता है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए सलाहकार परिषद की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास रोड मैप की समीक्षा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति हुई और श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद

0: को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के समक्ष उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों ने बताया कि कीमतों में लगातार गिरावट ने उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना और केप वर्डे आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड का सुरीला सफर पूरे 24 घंटे और 7 दिन आपके समक्ष प्रस्तुत है। और इस वक्त जो प्रोग्राम प्रस्तुत हम करने पहुंच चुके हैं, यानी 8:10 समाचारों के पश्चात जो कार्यक्रम शुरू होता है, उसका नाम है मधुरिमा, जिसका रहता है आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार।

कार्यक्रम मधुरिमा में आज हम जिस राग की बात करने वाले हैं, उस राग का नाम है राग जौनपुरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है राग जौनपुरी। असावरी थाट से उत्पन्न इस राग में गांधार और धैवत और निषाद कोमल लगते हैं। ये अन्य सभी स्वर जो हैं इसमें वो शुद्ध होते हैं। इसके आरोह में षड्ज यानी छह स्वर हैं और अवरोह में संपूर्ण सात स्वर हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मधुरिमा। और जैसा कि हमने बताया कि राग जौनपुरी में आरोह में ग वर्जित होता है, यानी कि उसमें छह स्वर ही लगते हैं, सारे म प ध नि सा, यानी ग वर्जित।

और अवरोह में सभी सातों स्वर लगते हैं, सा नि ध प म ग रे सा। पकड़ में इसकी यदि बात की जाए तो म प नि ध प ध म प ग रे म प। इस राग में गंधार को वक्र यानी टेढ़े रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि म प ध ग रे सा। दैवत इस राग का मुख्य और रंजकता उत्पन्न करने वाला स्वर है, जिस पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। यह राग काफी हद तक राग आसावरी के समान है, लेकिन इसमें शुद्ध रे का प्रयोग किया जाता है। ये अत्यंत ही शांत, गंभीर और श्रृंगार भक्ति रस से परिपूर्ण राग है।

राग जौनपुरी पर आधारित फिल्मी गीतों की यदि बात की जाए तो टैक्सी ड्राइवर 1954 में जो फिल्म आई थी उसमें गीत था कि जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। और जोगन जो 1950 में फिल्म आई थी उसमें घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। सत्यमेव जयते की बात की जाए जो कि 1985 में, दिल में हो तुम आँखों में तुम, मदहोश फिल्म आई थी 1951 में, तेरी मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। और यदि इन फिल्मों को आप नहीं भी पहचान पा रहे हैं तो शाहरुख खान अभिनीत 2004 में आई स्वदेश फिल्म को आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें पल पल है भारी गीत राग जौनपुरी पर ही आधारित था। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रोग्राम मधुरिमा में आज हमने बात की राग जौनपुरी की। उम्मीद है इससे जुड़ी हुई जितनी भी हमने आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। इस अंतिम गीत के साथ आपको छोड़े जाता हूँ।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से और अर्जेंटीना

0: अर्जेंटीना का सामना केप वर्डे से होगा। स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में यानिक सिनर, डैनियल मेदवेदेव और नोवाक जोकोविच का मुकाबला जारी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू और तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की हार के साथ कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज रात 11:30 ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 अर्जेंटीना और केप वर्डे आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: बीसी प्लेस स्टेडियम में हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को 2-0 से हराया। स्विट्जरलैंड की ओर से इस मुकाबले में ब्रील एम्बोलो और डैन नडोय ने गोल दागे। मैच की शुरुआत से ही स्विट्जरलैंड ने आक्रामक खेल दिखाया। 10वें मिनट में ब्रील एम्बोलो ने गोल करके स्विट्जरलैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही स्विट्जरलैंड ने अपनी बढ़त 2 कर दी। डैन नडोय ने शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में भेज दिया। यह वर्ल्ड कप में नडोय का पहला गोल था। 2-0 से पीछे होने के बाद अल्जीरिया मैच में वापसी नहीं कर सका।
2: And they should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now. The Swiss stride proudly on into the last 16 of the World Cup.
1: इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। यह पहला मौका है जब स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच जीते हैं। अब स्विट्जरलैंड का अगला मुकाबला 7 जुलाई को कोलंबिया और घाना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर एक शानदार गोल दागा। इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का नॉकआउट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने 41 साल और 147 दिन की उम्र में यह मुकाबला खेला। इसके साथ ही रोनाल्डो नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। उन्होंने पूर्व खिलाड़ी पेपे का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 39 साल और 283 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से गोंजालो रामोस ने निर्णायक गोल किया।
2: Cristiano Ronaldo, the World Cup journey continues.
1: वहीं स्पेन ने भी प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 का टिकट हासिल कर लिया है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया।
3: Bucarea is a well-timed run, it's 3. Austria put to sleep. And Mikel Oyarzabal says I'm in the picture for the golden boot at the FIFA World Cup 2026.
1: स्पेन की ओर से इस मुकाबले में मिकेल ओयारजाबल ने 2 गोल किए, जबकि पेड्रो पोरो ने अपने देश के लिए पहला गोल किया। साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद स्पेन की यह नॉकआउट मुकाबले में पहली जीत है। टीम का राउंड ऑफ 16 में सामना पुर्तगाल से 7 जुलाई को होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख करते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में इस समय यानिक सिनर का मुकाबला जेंसन ब्रुक्सबी से और डैनियल मेदवेदेव का सामना जॉन लेनार्ड स्टफ से हो रहा है। नोवाक जोकोविच का मुकाबला आर्थर रिंडकनेक से जारी है। वहीं कल हुए मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रांस के वेलेंटीन रॉयर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सुनते हैं इस मुकाबले का हाल।
4: फ्रेंच ओपन चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं इटली के माटेओ बेरेटी ने और मेजबान ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2 घंटे 4 मिनट तक चले मुकाबले में फ्रांस के वैलेंटिन रॉयर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले 2 सेट आसानी से अपने नाम कर लिए। तीसरे सेट में रॉयर ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टाई ब्रेक में ज्वेरेव ने बेहतर खेल दिखाया।

0: और मैच अपने नाम कर लिया। मेजबान ब्रिटेन के 23 वर्षीय आर्थर फेरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने फिनलैंड के ओटो विर्टानेन को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहले सेट में हारने के बाद फेरी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वे वर्ष 2000 के बाद विंबलडन मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचने वाले केवल चौथे ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल शाम 7 बजे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर टिकी हुई है।
2: युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को स्क्वाड में शामिल किए जाने के बाद से ही उनके डेब्यू पर सभी की निगाहें हैं। घरेलू क्रिकेट श्रृंखलाओं, विश्व कप और आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव को टीम में शामिल किया गया। आयरलैंड सीरीज में मिली हार के बाद वैभव को अंतिम 11 में लिए जाने पर अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड के साथ पहले मुकाबले में भी वैभव को खेलने का मौका नहीं मिला। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे मुकाबले में युवा स्टार को डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं। उधर बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत को विश्व कप जिताने वाले संजू सैमसन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। विश्व कप के बाद से सैमसन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी सैमसन महज 1 ही रन बना सके। आयरलैंड श्रृंखला में सैमसन कुल 5 ही रन बना सके थे। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने पिछले 3 मैचों में से 2 में 49 और 59 रन बनाकर अपना स्थान पुख्ता किया। सैमसन के अलावा तिलक वर्मा को भी मध्य क्रम में तेज खेलना होगा। इस साल 12 T20 में तिलक सिर्फ 12 छक्के ही लगा सके। दूसरी ओर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटोन जैसे बल्लेबाज श्रृंखला में अपनी दावेदारी पेश कर इस मुकाबले को जीतना चाहें। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भी 2 फाइनलिस्ट टीम का ऐलान हो गया है। उधर इंग्लैंड ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। कैनिंगटन ओवल में टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: इंग्लैंड ने 5वीं बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एमी जोन्स महज 2 रन बनाकर शबनम इस्माइल की गेंद पर आउट हुई। वहीं डेनी व्याट को 12 रनों के स्कोर पर मारिजाने कैप ने पवेलियन भेजा। एलिसा कैप्सी भी महज 1 रन ही बना सकी। 23 के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही इंग्लैंड की लड़खड़ाती हुई पारी को कप्तान नेट साइवर ब्रंट और हीथर नाइट ने संभाला। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 90 गेंद में 133 रन जोड़े। नाइट ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। वहीं साइवर ब्रंट ने 75 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्का जड़ा, जिसके दम पर इंग्लैंड 5 विकेट खोकर 169 रन बनाने में सफल रही। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका की ओर से शबनम इस्माइल ने और नॉन कुलुलेको मलाबा ने 2-2 विकेट निकाले। इंग्लैंड ने 5वीं बार T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड से मिले 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। टीम की कप्तान लॉरा वोलवार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। वोलवार्ट 15 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुई। हालांकि इसके बाद प्रोटियाज टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। एनेरी डकसेन ने महज 3 रन बनाए। वहीं टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आई मारिजाने कैप भी सेमीफाइनल में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और सिर्फ 5 रन बनाकर चार्ली डीन का शिकार बनी। सुने लोस 11 रन ही बना सके, जबकि क्लो ट्रायोन को 12 रन के स्कोर पर सोफी एक्लेस्टोन ने क्लीन बोल्ड किया। ब्रिट्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंद में 51 रन की दमदार पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। नादिन डी क्लर्क ने 14 और अयाबोंगा खाका ने 4 रन बनाए। गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल ने 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि चार्ली डीन ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: मुकाबले के दौरान इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर को पछाड़कर सबसे ज्यादा 38 विकेट अपने नाम किए।

0: बात निशानेबाजी पर, ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू होगा। भारतीय निशानेबाज पिछले दो विश्व कप के प्रदर्शन को भुलाकर इस वर्ष प्रतियोगिता में मजबूती से वापसी करना चाहेंगे। सुनते हैं किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजर।
1: भारतीय निशानेबाजों ने लगातार राइफल और पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने इसी प्रदर्शन को निशानेबाज इस विश्व कप में भी दोहराना चाहेंगे। भारतीय निशानेबाजों के लिए ये विश्व कप और इसके बाद इसी महीने चीन के हांगझोऊ में होने वाला ISSF विश्व कप एशियाई खेलों से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के दो बड़े मौके होंगे। भारतीय टीम को अपने विदेशी कोच ब्रिटेन के ओलंपिक डबल ट्रैप चैंपियन पीटर विल्सन के मार्गदर्शन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारत की ओर से किनान चेनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष ट्रैप स्पर्धा में उतरेंगे। घरेलू ट्रायल और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ये तिकड़ी इस सत्र के दोनों विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने में असफल रही। पुरुष स्कीट स्पर्धा में भी निशानेबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ट्रैप स्पर्धा में नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत तथा स्कीट में परिनाज ढालीवाल, ओलंपियन रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान इस सत्र के विश्व कप मुकाबलों में कोई सफलता हासिल नहीं कर सकी। महिला ट्रैप में आशिमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मोरक्को विश्व कप में 111 अंक के साथ 14वां स्थान रहा। नीरू अलमाटी विश्व कप के फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में 7वें स्थान पर रही। वहीं मनीषा 112 अंकों के साथ 26वें स्थान पर रही। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात शतरंज पर। क्रोएशिया में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने सफेद मोहरों का शानदार उपयोग करते हुए दिन के अंतिम गेम में नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर अनिश गिरी को मात दी। सुनते हैं करिश्मा की ये रिपोर्ट।
2: ईरान के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा ने अपने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 12 में से 10 अंक हासिल करके अपनी बढ़त 3 अंक तक पहुंचा दी है। जर्मनी के विंसेंट कीमर, फ्रांस के मैक्सिमम वाचियर लाग्रेव, रोमानिया के डियग बोगदान डैनियल और गुकेश के समान 7 अंक हैं और वो संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। भारत के आर प्रज्ञान नंदा, गिरी और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव उनसे आधा अंक पीछे हैं, जबकि क्रोएशिया के इवान सारिक और नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट सिर्फ 2-2 अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे हैं। रूई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन में गिरी के खिलाफ मिले अवसरों का गुकेश ने भरपूर फायदा उठाया। प्रज्ञान नंदा के लिए दिन और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन उन्हें अलीरेजा के खिलाफ एक गलती भारी पड़ी और आखिर में वह हार गए। प्रज्ञान नंदा ने फॉरेस्ट के खिलाफ दिन का पहला गेम जीता था। दिन की शुरुआत में गुकेश ने बोगदान डेनियल के खिलाफ अप्रत्याशित हार के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर शानदार वापसी करते हुए फॉरेस्ट पर जीत हासिल की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात बैडमिंटन पर। तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर में हार के साथ ही प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। तीसरी वरीयता प्राप्त जापान की रिको गुंजी ने तानिया हेमनाथ को सीधे गेम में 21-11, 21-11 से हराया। वहीं आकर्षि ने चौथी वरीयता प्राप्त अमरीका की बेवेन झांग को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 1 घंटे 7 मिनट तक चले मुकाबले में उन्हें 20-22, 21-17, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। उधर बास्केटबॉल में अहमदाबाद फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर की मेजबानी कर रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: India's position on the Indus Waters Treaty.
5: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
3: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
4: India's development assistance.
5: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
3: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
6: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
3: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों

0: एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ

0: में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Now, there is an ample scope for the cooperatives. They can also involve themselves for manufacturing the green hydrogen mission through government support. We could also develop the renewable energy by way of producing green hydrogen. This is one more information. So these are the ample opportunities since we are running the government, and we could make it happen through cooperatives, how we could make
1: Right.
0: produce the green hydrogen mission.
1: Dr.
0: Yes, sir.
1: Murugan, very quickly, the financial goal is to
0: Yes, sir.
1: triple the cooperative sector's economic contribution by 2034-35. It's to triple. Now, how realistic this is and
0: Yes.
1: how do you feel that we can get there?
0: We are moving towards that one. Now our economy, it is about 25 trillion. And by 2036, if we move in this line, we would attain only 16 to 17 trillion. But our focus is towards attaining 55 trillion. So digital transformation and all transactions, and one more information, there is a concept called a CBDC, Central Bank Digital Currency Model, already launched in India.
1: Right.
0: So world over, once the CBDC concept is evolved, natural global inclusion, it could happen. Once global inclusion is happened, naturally economy would be improved like anything. And AI also. So the artificial intelligence with the, what you call now, we are using classical computing, quantum computing model. So one, these things we could incorporate in our cooperative model instant then and there. And we have to develop a different business model, especially for the bank is concerned. So
1: Right.
0: regarding our bank system is concerned, we are not charging any fund fee-based income. Fund-based income only, we are showing our competitiveness to the private sector banks or public sector. Even with this struggle, we have more challenges to achieve things, and certainly we would attain along with the national economy. At present, our GDP growth rate is 2 to 3%, hopefully, approximately. I do not know exactly, but certainly by 2036, cooperative GDP, it will be more than 11%, double
1: Right,
0: digit
1: right,
0: percentage.
1: right. Thank you so very much, Dr. Asthana
0: What
1: and
0: is
1: Dr. Murugan, both of you for having joined us and shared your valuable inputs for the benefit of our listeners. Thank you so very much.
2: Thank you very much.
0: Thank you.
3: You were listening to a discussion on the blueprint of Sahakar Se Samriddhi and the new National Cooperation Policy 2025. The participants were Dr. A.K. Asthana, former director of the Udaibhan Singhji Regional Institute of Cooperative Management, Gandhinagar, and Dr. A. Mayil Murugan from Institute of Cooperative Management, Madurai. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
4: Current Affairs.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
6: India's development assistance.
7: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
5: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र

0: को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said, India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism.
4: India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism.
3: On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development assistance to Bangladesh. Replying to a query, Mr. Jaiswal informed that India has raised concerns with Venezuela over reports alleging removal of vital organs from an Indian seafarer's body and has sought an urgent investigation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India is on track to achieve $1 trillion export targets for the year, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that this will require goods exports to rise from about $440 billion to around $530 billion and services exports to increase from roughly $421 billion to about $470 billion. The ministry noted that India's export strategy is being built around a stronger, more inclusive approach in which every state

0: तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि वाराणसी में निर्मित 40 मीट्रिक टन बिस्किट भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत ओमान निर्यात किए गए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि लगभग 700 मीट्रिक टन बिस्किट की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन भी किया गया, जो वित्त वर्ष 2026-27 में ओमान और खाड़ी सहयोग परिषद के अन्य देशों को भेजी जाएंगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XAAIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस द्वारा यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों पर किए गए हमलों के बाद देश के हवाई सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इन हमलों में लगभग 30 लोग मारे गए और 100 घायल हुए। एक रिपोर्ट।
3: यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने राजधानी कीव में रूसी हमलों के बाद का वीडियो साझा किया, जहां आपातकालीन और बचाव अभियान जारी है। श्री ज़ेलेंस्की ने रूस पर नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करने और युद्ध अपराध का आरोप लगाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा अपने नागरिक बुनियादी ढांचे पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में था। रूस का दावा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा 40 दिन के अभियान के रूप में वर्णित यूक्रेन के हमलों में मुख्य रूप से तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया, जिससे रूस में ईंधन संकट की स्थिति पैदा हो गई। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: रूस ने कहा है कि ज़ापोरोज़्ये क्षेत्र के टोकमक में आज एक बाजार पर ड्रोन हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 18 अन्य घायल हो गए। ज़ापोरोज़्ये क्षेत्र के गवर्नर येवगेनी बालित्स्की ने कहा कि बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों के अनुसार हमले में घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं रूस के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के मिसाइल हमले में एक महिला की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन अब युवाओं को अपने साथ जोड़ने और प्रशिक्षण देने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की की पत्रकार उजाय बुलुत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद और

0: इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकवादी संगठनों ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब ये संगठन सोशल मीडिया के जरिए प्रचार धन जुटाने, नए लोगों की भर्ती और ऑनलाइन प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं। उजाय बुलुत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहले ये आतंकवादी संगठन प्रशिक्षण शिविरों, धार्मिक उपदेशों और सीधे संपर्क के जरिए लोगों को कट्टरपंथ की ओर ले जाते थे, लेकिन अब वे इन तरीकों के साथ साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण और इनक्रिप्टेड संचार का भी उपयोग कर रहे हैं। इससे इनका पता लगाना अधिक कठिन हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अब भी कई क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाने और संचालन केंद्र के रूप में काम कर रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर है। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीजों को शामिल कर लिया गया है। इस अध्ययन के तहत इबोला वायरस के इलाज के लिए दो दवाओं की प्रभावशीलता की जाँच की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसुका पेगुला और जापान के नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। यानिक सिनर ने जेनसन ब्रुक्सबी को और नोवाक जोकोविच ने आर्थर रिंडरनेक को पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी निलंबित है, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस द्वारा यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच सहायता की अपील की। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी के दौरान 2000 अतिरिक्त मौतें दर्ज। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with World News. The headlines. New Delhi says Indus Waters Treaty remains suspended. Asks Pakistan to renounce support to cross-border terrorism. Focus on Act East engagements during Prime Minister Narendra Modi's visit to Indonesia, Australia and New Zealand next week. Ukrainian President Volodymyr Zelensky calls for aid as Russian strikes on Ukraine continue. France records more than 2,000 additional deaths during record-breaking heat wave last week. And in FIFA World Cup, Australia to take on Egypt in round of 32 match at Arlington in US tonight. And now the news in detail. India has reiterated that the Indus Waters Treaty, IWT, remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said, India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism.
2: India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism.
1: On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development assistance to Bangladesh.
2: India's development assistance for projects in Bangladesh

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, वो भी 100.1 MHz पर। दोस्तों कहते हैं चेहरा बहुत कुछ कह देता है और आंखें उससे भी ज्यादा। शायद यही समझ का अनुभव कहता है कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए शब्दों की नहीं सिर्फ एक नज़र की ज़रूरत होती है। उस नज़र पर पड़े पर्दे अक्सर हट ही जाया करते हैं समय के साथ साथ। जी हाँ, हर श्रृंगार लेकर आज स्टूडियो से साथ हूँ मैं रोहिणी। मेरी दुआ सलाम आप तक पहुँचती है इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है मेरे हुजूर फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में रचा ये गीत। और इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज और आगाज़ करते हैं आज के हर श्रृंगार का।

बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं हुजूर के, कुछ लोग बिछड़ कर भी नहीं बिछड़ते, वो सांसों में नहीं एहसासों में बसा करते हैं। और ये एहसास यादों के ज़रिए हमारे जहन को हमेशा अपने खुशबू से तरोताज़ा महकाते रहते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही एहसासों से सजा ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं प्यार ही प्यार फिल्म से। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत आप सुनेंगे। इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी।

कहते हैं आंखें भी होती हैं दिल की जुबां। अब ये जुबां कभी तकरार चाहे है तो कभी प्यार का प्यारा सा एहसास। बड़े प्यारे अल्फाज हैं दोस्तों के, लड़ने को जी लड़ने को दिल जो चाहे तो आंखें लड़ाइए, हो जंग भी अगर तो मज़ेदार जंग हो। एक ऐसा ही प्यारा अंदाज इस गीत में भी आप महसूस करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, ये जो गीत है वो है झुक गया आसमां फिल्म से। लता जी और रफ़ी जी की प्यारी आवाज़ से सजा ये गीत है। इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने।

14.1 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। संगीत के क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान अपने नाम करने वाले समीर अंजान साहब का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे दोस्तों। और आपको बता दें कि ये गीत जिस फिल्म से है वो है सड़क, और इस गीत को अपनी आवाज दी अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास साहब ने। इस गीत को संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण साहब ने। तो श्रोताओं अगला गीत तो आपकी नजर करेंगे ही, साथ ही बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं और बड़े ही प्यारे जबरदस्त ख्याल हैं। ये कि माना कि इश्क जबरदस्ती नहीं होता, मगर ये कमबख्त होता जबरदस्त है, और इस जबरदस्त एहसास के साथ न जाने कितने दिल जीवन का अनुभव ले रहे हैं। जिंदगी के इन अतरंगी रंगों के साथ फिलहाल हर श्रृंगार को समेटने की मुझे रोहिणी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और ये अगला गीत जो कि राजकुमार फिल्म से है, इस गीत को लिखा है शैलेंद्र साहब ने, आवाज दी रफी साहब ने, और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज़।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। मार्केट मंत्र आप सुन सकेंगे 11:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मामूली बढ़त हुई। सेंसेक्स 262 अंक यानी 0.3% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक यानी 0.4% बढ़कर 24,271 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग सपाट रहा। बाजार बढ़त के साथ खुले और पहले के आधे सत्र में तेजी का रुख रहा, लेकिन दूसरे सत्र में मुनाफा वसूली के कारण दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और आज मिलाकर लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए।
1: The benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 262 points or 0.34% to close at 77,764. The Nifty also added 95 points or 0.4% to settle at 24,271. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index slipped 0.2%, while the small cap 100 index ended nearly flat. Earlier, the markets opened higher and maintained upbeat momentum throughout the first half. However, in the latter half of the session, both indices paired their early gains amid profit booking but managed to close higher for the third consecutive session.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में HCL Tech 5.8%, बजाज फिनसर्व 2% से अधिक और टेक महिंद्रा तथा भारती एयरटेल 1.8% बढ़े। वहीं बात खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की करें तो एक्सिस बैंक 1.5% से अधिक, SBI तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% से अधिक गिरे और लार्सन एंड टूब्रो में 0.8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, Realty jumped 2.2%, Focused IT rose over 1.7%, and IT climbed more than 1.5%. In contrast, Power plunged 2.4%, Capital Goods fell almost 2.3%, and PSU banks lost over 1.6%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,257 companies advanced, 1,986 declined and 198 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 17 पैसे मजबूत होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.71 पर कारोबार कर रहा था। विशाल, आज की ट्रेजेक्ट्री को आप कैसे आंकते हैं, मार्केट ट्रेजेक्ट्री को?
2: देखिए प्राची, आज तो सब तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है। अगर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी ऊपर है और सोने और चांदी की कीमतों में भी उछाल है। हालांकि ग्लोबल मिक्स्ड क्यूज है मोटे तौर पर अगर देखा जाए, और समझने की कोशिश करें तो आईटी सेक्टर जिसने पिछले हफ्ते काफी नीचे खींचा था मार्केट को, खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सेक्टर से संबंधित जो स्टॉक्स थे उनमें जिस तरह की गिरावट दर्ज की गई थी वैश्विक स्तर पर, उसका सीधा असर भी देखने को मिला था। लेकिन ये आज अच्छा रिबाउंड है, लगभग 2% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी है आईटी सेक्टर के, और आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर रहा है आज बाजार के ऊपर पहुंचने में, ऊपर आने में। इसके अलावा कुछ ग्लोबल क्यूज हैं, जैसे कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अब लगभग राहत की बात यह है कि थोड़े पॉजिटिव संकेत इस तरह के मिल रहे हैं और थोड़े पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। पॉजिटिव संकेत तो लगभग हर हफ्ते मिलते थे और फिर वो नेगेटिव में बदलते थे, लेकिन इस बार शायद पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि अब ये लड़ाई खात्मे की ओर है। लेकिन उससे बड़ी बात, यूएस जो जॉब मार्केट का जो डेटा आया है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अब हालांकि सीधे सीधे देखा जाए तो पिछले 4 महीने में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है जो नई नौकरियां बनी है यूएस की मार्केट में, और इस लिहाज से देखा जाए तो वो कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां फेड रिजर्व के नए गवर्नर आए हैं, उनका स्टैंड बहुत ही हॉकिश है, और उसके चलते ये जो डेटा है शायद ये डेटा

0: आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही रहेगी, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप सोचेंगे कि चलो थोड़े दिन और देख लेते हैं, तो वो अपने आप लॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को एसेस करिए, आप ये मत देखिए कि पिछले एक हफ्ते में किसने अच्छा किया या पिछले 15 दिन में किसने अच्छा किया। ऑफकोर्स पिछले 2 महीने में जब ये पूरी ग्लोबल क्राइसिस रही तो रेजिलियंस किस सेक्टर का था, रेजिलियंस किस पर्टिकुलर कंपनी का था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फंडामेंटल्स किसके अच्छे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ग्रोथ किस सेक्टर में है। नंबर तीन, क्या केवल ग्रोथ इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं, या ग्रोथ इसलिए भी है कि जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से जो सेक्टर्स को अगर चूज किया जाए तो हमेशा से जो पिछले लगभग साल दो साल से जो सेक्टर्स बने हुए हैं और अभी भी वही बने हुए हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर स्पेस हुआ या फिर उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी रिसोर्सेज हुआ, पावर सेक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कभी गिरावट दिखाई दे सकती है। आईटी सेक्टर इज ऑलवेज अ ग्रीन सेक्टर। एआई ऑफ कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप में थोड़ी सी एब्जॉर्ब करने की ताकत है और शक्ति है तो अगर जो झटके बीच बीच में मिलेंगे उसको, तो मेरा कहना है कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचिए।
1: राइट,
2: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और रुख करते हैं एशियन बाजार की तरफ। आज एशिया का शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 5.8% बढ़ा। पिछले सत्र में हुई भारी बिकवाली के बाद निवेशकों ने कम कीमत वाले सेमीकंडक्टर शेयरों की आज खरीदारी की। इधर जापान का निकेई 1.5%, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.5% और ताइवान का ताइएक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। विशाल, अगर हम वैश्विक टेक ट्रेंड की बात करें तो नैसडैक एक महीने में तकरीबन 3% गिरा है, कॉस्पी 13% गिरा है, वहीं जो महीने भर में निफ्टी है वो 3.3% उसमें बढ़त आई है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल टेक ट्रेंड में रिवर्सल है?
0: देखिए, मैं टेक ट्रेंड में रिवर्सल तो इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि जब हम कॉस्पी की बात करें या नैसडैक की बात करें और भारतीय बाजारों की बात करें, एक इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं
2: जी।
0: और जहां गिरावट ज्यादा दर्ज हुई है वहां अगर आप थोड़ा सा उनकी इकोनॉमी पे और गहन तरीके से नजर डाल के देखें तो ये भी समझ में आएगा कि वहां जितने पॉजिटिव क्यूज डोमेस्टिकली मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले उन बाजारों को। भारतीय बाजारों को पॉजिटिव क्यूज हमेशा मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ग्लोबल क्राइसिस थी, जो वेस्ट एशिया में जो हो रहा था, मध्य पूर्व में जो हो रहा था, उसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस थी, उसका सीधा और बड़ा असर इन बाजारों और इन देशों में देखने को मिला। हम पर भी असर पड़ा, ऐसी बात नहीं है कि हम पे नहीं असर पड़ा, लेकिन उस हद तक नहीं पड़ा, उस लेवल तक नहीं पड़ा। और हमारे जो जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक और बाजार के, मार्केट्स के भी, उनमें इतनी कुवत थी कि वो उसको, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए। इन बाजारों में और इन देशों में भी है, लेकिन इनकी निर्भरता हमसे कहीं ज्यादा है
2: जी।
0: इस मायने में क्वांटिटी के मायने में नहीं, लेकिन इस मायने में कि उसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पे किस तरह से पड़ता है। हमारे पास और भी तरीके हैं, और भी हमारे पास खपत के जरिया है, हमारे पास सप्लाई का जरिया है, हमारे पास डिमांड को मीट करने का जरिया है, उनके पास उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और इसीलिए आईटी सेक्टर और इस तरह के सेक्टर्स में जब ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो उसका सीधा असर पहले वहां देखने को मिलता है, उसके बाद यहां देखने को मिलता है।
1: राइट, एंड इन सम अदर स्टोरीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे सेड दैट इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव $1 trillion एक्सपोर्ट टारगेट्स फॉर द ईयर विद नियरली 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that India's export strategy is being built around a stronger, more inclusive approach in which every state, district and industry segment is treated as equally important.
3: Our aim is not small. Our aim is to grow in the current year. We were $863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach $1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about 530. $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470. That is how we'll reach a trillion, which is a growth of about 11%.
1: The minister highlighted that the central government is planning to expand the

0: Asian stock markets settle in the positive zone and an Indian bullion market, gold and silver prices rise. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गीत मेरे मन मीत लेकर स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूँ मैं रोहिणी। जी हाँ दोस्तों, इस गहरी काली रात में सदाबहार गीतों का साथ जो कि बना रहेगा आपके साथ। वो कहते हैं ना, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है चरागों का सफर कितना है। ये सफर आप तय कर रहे हैं दोस्तों 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आइए आगाज करें आज के इस प्यारे सफर का तेरे घर के सामने फिल्म के गीत से। और इस गीत में आवाज दी है रफी साहब ने, लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने, संगीत से सजाया ST परमन जी।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। तो और ये रात जो कि महक रही है चांदनी से, और इस प्यारे से समय में ये बेहद प्यारे सदाबहार गीत आप तक पहुंच रहे हैं। ये अगला गीत प्यार का मौसम फिल्म से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस गीत को लिखा है मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है ST बर्मन जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज़।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। तो ये अगला अंदाज शागिर्द फिल्म से आप तक पहुंच रहा है। रफ़ी और लता जी की आवाज़ में इस गीत को अल्फाज से सजाया मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज़।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि और आज के इस सफ़र को आगे ना बढ़ाएं। तो फिलहाल मुझे आज के इस सफ़र को यहीं समेटने की दें इजाज़त, और बड़े ही प्यारे अल्फाज जो कि आपसे साझा करना चाहूँगी, बेशक दिन में भुला दो तुम उजालों के मायने, स्याह रात में तो रहेगा ही इंतज़ार चांद का। जी हाँ, इंतज़ार और ये सफ़र आप तय करते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। फिलहाल आपको छोड़े जाती हूँ इस प्यारी सी आवाज़ के साथ, इस प्यारे से गीत के साथ। मुझे रोहिणी को दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे

0: वे सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: तीसरा इशू,
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबर पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैड बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका के डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानरे को 6-1 6-3 से मात की दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, पर अब भी बारिश देखकर लगता है जैसे कोई जादू पहली बार देख रहे हो। तुम्हें मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ कि रोज़ तुम्हें देखना कैसा होता है।

मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 2 सेकंड। निशिकंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

0: वाकई हवा के साथ साथ और घटा के संग संग चलना ही जिंदगी है। कुछ गाने हमें ये एहसास दिलाते हैं कि सफर हो या मंजिल, रंगत तभी आती है जब मन खुश हो। अगला गीत फिर से आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

मोहब्बत में कश्मकश ही ऐसी होती है, समझ ही नहीं आता, दिल की बातें जुबा तक आकर ठहर जाती है, रुक जाती है, समझ नहीं आता कि उन्हें बयां कैसे किया जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि कह देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आती है। क्या कहते हैं आप? अब ये भी कोई पूछने की बात है, सफ़र वही जो साथ साथ तय किया जाए। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

देखो आपस में जंग, हाँ हाँ आपस में जंग, हाँ हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

सच में मुंबई की बात ही अलग है। मुंबई का नाम आते ही बहुत सी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। वहाँ की लोकल ट्रेनें, समंदर, सब कुछ जहन में फिर से एक बार याद आने लगता है। मुंबई का अपना ही एक रंग है, अपनी ही एक दौड़ है, कहीं पहुँचने की, कुछ पा लेने की, कुछ ख्वाबों को पूरा करने की। फिलहाल हम भी एक दौड़ में शामिल हैं और इस दौड़ को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। छिपने की जितनी कोशिश करोगे उतना करीब आएगा, और जब

वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा, वो इतना गहरा होगा कि तुम्हारी प्रेम पर लिखी कविता फीकी पड़ जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त वह है 12:38 और 42 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

जब दीवानगी का ऐलान हो ही गया है तो फिर दीवानों को रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी हो या फिर मोहब्बत, दोनों को दीवाने ही सबसे ज़्यादा समझ पाते हैं। और वैसे भी दिल में जब प्यार का जज्बा होता है तो कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। इस दीवानेपन को और आगे बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ।

अपनी दुनिया में और शायद अपने लोगों के पास। कभी कभी अपनी दुनिया में लौट आना ही सही विकल्प होता है, खुद को बेहतर तरीके से समझने के लिए। हम दूसरों को समझते और समझाते हुए अक्सर खुद को समझना भूल जाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। खुद को समझना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैट, BMS, इपॉक, IIN और लॉसिंगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1, 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1, 6-3 से मात दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रीड बाय तन्वी गुप्ता। The government has reiterated that the Indus Waters Treaty IWT remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi last evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randeep Jaiswal, said India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development assistance to Bangladesh. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve $1 trillion export targets for the year, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that this will require goods exports to rise from about $440 billion to around $530 billion and services exports to increase from roughly $421 billion to about $470 billion. He further said that it expected that merchandise exports growth will show 15% growth and services exports is about 10 to 11% in the first quarter. Mr. Goyal also highlighted that India had concluded financial year 2025-26 with its highest ever exports of $863 billion, registering growth of 4.6% despite tariff realignments, freight disruption and slowing global demand. He also announced a time-bound 90-day drive under the Districts as Export Hubs initiative, covering 120 priority districts across 27 states and union territories. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat today. In Rajasthan, the Prime Minister will inaugurate the terminal building of Jodhpur Airport and launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, he will travel to Balotra to dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.6 lakh crore rupees in petrochemicals, urban transport, renewable energy and power transmission. During Gujarat visit today, in a major boost to the India Semiconductor Mission, the Prime Minister will inaugurate the CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility at Sanand. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and her French counterpart Roland Lescure yesterday co-chaired the India-France Economic and Financial Dialogue in Aix-en-Provence in France. Both the ministers recognized the value of the French Development Agency's work in India for economic development and welcomed the prospects for future projects. The ministers have pledged to use the Economic and Financial Dialogue as the main platform for addressing economic, financial, technological, investment and trade matters between India and France. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has said that India endured the closure of Hormuz without any shortages anywhere in the country. Sharing his thoughts in a blog, Mr. Puri said that today stocks are full, pumps are open and the Indian consumer has paid less for energy through the crisis than any other consumer in the world. The minister said that at the peak of war, when no vessel was moving out of Hormuz, over 12 Indian LPG vessels were quietly moved out of Hormuz without paying any tolls, which is the largest number for any country. Mr. Puri said that during the crisis, the country's crude basket widened from 27 countries to 41 and the import terminals doubled. Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized as of yesterday. According to Office of Chief Electoral Office of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of special intensive revision of electoral rolls in Delhi. As part of the exercise, over 13,000 booth level officers will visit every household till 29th of this month to redistribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electorals for verification and updation of the electoral rolls. Now onto the sports. In the FIFA World Cup, the match between Egypt and Australia is underway. Both teams are at 1-1 when news last came. Egypt was leading Australia in the first half of the game. Imam Ashour scored the solitary goal in the 13th minute. In another round of 32 matches, Argentina will face Cabo Verde at Miami Gardens, while Colombia will clash with Ghana at Kansas City Stadium this morning. And that is the end of this news bulletin.

100.1 MHz पर अब आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी एक ऐसा दौर जो इतिहास से, स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, हमें पुकारता है। तो चलिए फिर इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ।

चौदहवीं का चांद से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत बहुत ही सुरीली आवाज़ में, यानी रफ़ी साहब की आवाज़ में। संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। फिल्म चौदहवीं का चांद 1960 में प्रदर्शित हुई थी और इसका निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने और निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त साहब के लिए ये फिल्म कामयाब फिल्म रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक फिल्म थी ये। रवि द्वारा निर्मित संगीत को काफ़ी लोकप्रियता मिली और दर्शकों द्वारा इस फिल्म के संगीत को खासा सराहा भी गया। और अब अगला गीत हम सुनते हैं फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: करूंगा।
1: रफी साहब की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत, फिल्म का नाम था असली और नकली, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। फिल्म असली नकली 1962 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, देवानंद, साधना, लीला चिटनीस, अनवर हुसैन, संध्या रॉय और केस्टू मुखर्जी ने इस फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। और अब अगले गीत की बारी, लेकिन अगले गीत को अब तक पहुंचाने से पहले अगर आप जाग रहे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला गीत रात के जज्बात को और गहरा करता है। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आप ही के लिए।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म अनाड़ी से। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। अगर फिल्म अनाड़ी की बात की जाए तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 1959 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और मोतीलाल ने। इस फिल्म के गीत लिखे थे शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब। अब जब रात की बात छिड़ी है तो फिर रात का मुसाफिर क्या कह रहा है, सुन लिया जाए अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म मिस मैरी से।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। एक ऐसा दौर जो इतिहास और स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, तो ज़रूरत है उन गीतों को महसूस करने की। तो चलिए फिर सुनते हैं हम अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत चित्रगुप्त का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। अगर इस फिल्म की बात करें यानी कि ओपेरा हाउस फिल्म की हम बात करें तो ये फिल्म आई थी 1961 में और ये एक रहस्यमय फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में अजीत बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने अभिनय किया था। और अब अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म बहू बेगम से।

फिल्म का नाम बहू बेगम और आवाज़ें थी आशा जी और रफ़ी साहब की। संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। फिल्म बहू बेगम 1967 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था एम सादिक ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। संगीत रोशन साहब का था और इस फिल्म के संगीत को दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया और ये गीत, इस फिल्म के जो गीत हैं वो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म तीसरी कसम से।

गीतों का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा। अभी वक्त है समाचारों का। 2 बजे सुनेंगे आप समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता को सच्चाई, ईमानदारी और सबसे ऊंचे पेशेवर मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नई दिल्ली में साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र तब फलता फूलता है जब प्रेस अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए लोगों को जानकारी देता है, सवाल पूछता है और जानकारी पूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देता है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस, इपॉक आई आयन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1, 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1, 6-3 से मात दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

उसने बड़े अदब से पूछा, अगली मुलाकात कहाँ होगी? मैंने कहा, आसमानों में, दो बादलों की टकरार में, भीनी माटी की खुशबू में, खिड़की पे बारिश की बूंदों में, मोगरे के फूलों में, अदरक वाली कड़क मीठी चाय से उठते उस धुएं में, रहमान के किसी गाने की धुन में, रुके हुए से ट्रैफिक जैम में, शर्ट के टूटे हुए बटन में, गहरे काले काजल में, पहाड़ों में, बहते झरनों में, कहीं साहिल तो कहीं किनारों में, मौसम की बहारों में हम मिलेंगे ज़रूर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 15 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी कि जज्बातों की रात, एहसासों की रात। और इस प्रोग्राम में हम रात के जज्बात को, रात के दर्द को अपनी बातों से, गीतों से और कुछ कुछ शायरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

आपको पता है, जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो में हवाएं चलने लगी हैं सच में, और टेम्परेचर भी कुछ कम हो गया है। इस गाने का एक एक सुर सीधे दिल में लगता है, और दिल में लगने के साथ सीधे दिल में असर करता है। अगर आप भी इस गाने को सुनकर किसी के ख्यालों में खो गए हैं, किसी की यादों ने आपको घेर लिया है, तो अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

0: साथ कभी कभी।
1: वैसे ये तो सच बात है कि मोहब्बत किस्मत वालों को ही मिलती है, और जब मिलती है तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर ये मोहब्बत इतनी ही अनमोल है, इतनी ही कीमती है, तो लोग इसे संभाल कर क्यों नहीं रखते, छोटी छोटी बातों पर रूठ क्यों जाते हैं। खैर, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपका ख्याल रखता है, तो आपको खुदा को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में।

मन में तितलियां उड़ी, कुछ जादू सा लगा। सच में इस गाने की खासियत ही यही है, एक जादू सा एहसास से भर देता है ये गाना। वैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप बस यूं ही बैठे हों और अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए और फिर बिना कुछ कहे आपके दिल में समा जाए? आपको पता है फिर कैसा लगेगा? फिर ऐसा लगेगा शायद इस गाने जैसा। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, नए किरदार आने लग गए हैं। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, परिंदे आने जाने लग गए हैं। हम अपने दुख गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। एक मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:42 और 6 सेकंड, और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। रात की सुरों को, रात के जज्बात को, रात के एहसास को, रात की दर्द को गीतों से, बातों से समझने की, महसूस करने की एक छोटी सी कोशिश। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, अभी के लिए

वैसे ये तो सच बात है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल लगता है। वो चाहे हमारे पास हों या हमसे दूर हो, उनकी मौजूदगी हर पल हर सांस में महसूस होती है, बिल्कुल हवा की तरह, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर उसके बिना जी भी नहीं सकते। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। हम रोज ना जाने कितने अनजान रास्तों से गुजरते हैं, कितने ही चेहरों को देखते हैं, पर कभी कभी बस यूं ही चलते चलते कोई ऐसा मिल जाता है जो अजनबी से सीधे हमारी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन जाता है, खास इंसान बन जाता है। ना कोई प्लानिंग होती है, ना कोई तैयारी होती है, बस एक मुलाकात होती है और पूरी तकदीर बदल जाती है, जिंदगी की कहानी बदल जाती है। अगला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में आप ही के लिए।

गीतों का ये सुरीला सफ़र यहीं तक, रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपॉक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। फीफा विश्व कप में अमरीका के आर्लिंगटन में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बना ली है। मैच के पहले हाफ में मिस्र ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। इमाम अशूर ने 13वें मिनट में एकमात्र गोल किया। राउंड ऑफ 32 के अन्य मैचों में अर्जेंटीना का मुकाबला मियामी गार्डन्स में काबो वर्डे से होगा, जबकि कोलंबिया आज सुबह कैंसस सिटी स्टेडियम में घाना से भिड़ेगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही समाचार

दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं FM गोल्ड पर और हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

यादों की बारात। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरु सुल्तानपुरी की रचना थी और संगीत आर डी बर्मन का। अगला गीत आप सुनेंगे कस्मे वादे फिल्म से, आशा भोंसले और किशोर कुमार और अमित कुमार का गाया हुआ है। शब्द रचना गुलशन बावरा की है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, ये तो हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में खुशियों की बहारें आती रहें, लेकिन बहुत बार आप छोटी सी बात का बुरा मान जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। और नाराज़ आप क्यों होते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि वो आपको मनाएंगे।

दोस्तों, एफएम गोल्ड पर हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत आप गीत सुन रहे हैं, यानी युगल गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।

दोस्तों, बहुत बार प्यार भी मुसीबत बन जाता है, या नहीं यूं कहें कि अफसाना बन जाता है कोई ना कोई। आपको बता दें कि ये गीत आपने सुना प्यार बना अफसाना फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ थी, गीत के रचयिता थे अज़ीज़ कैसी और धुन बनाई थी इकबाल कुरैशी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं घर फिल्म से, गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में है, शब्द रचना गुलजार की और संगीत आरडी बर्मन का।

0: दोस्तों, पहले के दौर में जब मोहब्बत की बात हुआ करती थी तो बात सुनकर प्यार करने वाले शर्मा जाया करते थे और प्यार करने वाले उसका प्यार आंखों से ही पढ़ लिया करते थे।
1: झुके जो तेरे ने

झुके जो तेरे नैना। कंगन फिल्म से ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर और उषा खन्ना का गाया हुआ गीत था अनजान का, और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं साथ साथ फिल्म से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का गाया हुआ है, जावेद अख्तर के बोल हैं और कुलदीप सिंह का संगीत।

सागर फिल्म से ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत को रचा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं प्यार का, सागर फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, प्रेम धवन ने गीत को लिखा है और रवि का संगीत।

दोस्तों सच में जो प्यार करने वाले होते हैं वो यही सोच कर डरते रहते हैं कि कहीं उनका साथ छूट ना जाए। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ। संतोष आनंद का लिखा गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, हमराही कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। जुड़े रहिएगा FM गोल्ड के कार्यक्रमों के साथ। अगले कार्यक्रम अरुणिमा में 4:11 पर फिर से मुलाकात होगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे

0: बालूतारा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़ंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉन्सगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिम राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों बहुत से गाने जब चलते हैं तो साथ साथ गुनगुनाने में भी उनको बहुत मज़ा आता है। आपने ये गीत सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी, SH बिहारी के बोल थे और OP नैयर का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं खुशबू फिल्म से, गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है, गुलजार ने गीत के बोल दिए हैं और संगीत से संवारा है RD बर्मन ने।

दोस्तों, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान को लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं रहा, और वैसे भी अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं मंजिलों को पाने के लिए।

दोस्तों, इस गीत में बहुत अच्छी पंक्तियाँ थी कि बिछड़े दिलों को मिलाते चलो। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी में भी आपस में अगर कोई बात हो जाती है तो लोग आपस में बोलना छोड़ देते हैं, फिर कोई ऐसा काम करता है तीसरा बंदा आकर कि उन दोनों के बीच में और लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समझदारी से उन दोनों को, दोनों का ही पक्ष लेते हुए समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, बात हो गई तो आया जाई करो, आया गया करो इस बात को। तो यहाँ पर बिछड़े दिलों को मिलाने की बात सही साबित होती है। तो हमारा भी काम यही रहना चाहिए कि अगर किसी की बात में कोई आपस में मन में रंजिश पैदा हो गई है तो हम उनको मिलाने का काम करें, ना कि उनका दिल में जो प्यार पहले था उनमें दूरियां पैदा करें।

0: चले।
1: लेकिन हम अभी कहीं भी नहीं जा रहे हैं। प्यासा सावन फिल्म से आपने गीत सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ, और लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया हुआ था ये गीत। आनंद और गुलशन बावरा का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दूसरों अगला गीत सुनवाएंगे लेकिन अंतराल के बाद।

हिमालय की गोद में, इस फिल्म में से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, हर इंसान सपने बुनता है।

और सपनों को पूरा करने के लिए पूरे दावपेश लगा देता है और फिर उसको लगता है कि अब उसका जीवन बहारों जैसा हो गया है।

आखिरी खत। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ, कैफी आजमी की रचना थी और खयाम का संगीत। दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है गीतों के साथ।

दो बदन। इस फिल्म से आपने गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में, शकील बदायूं की रचना थी और संगीत रवि का। ठंडी हवाओं में दोस्तों अगर यूं ही कोई मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना।

बेटी बेटे, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। दोस्तों, अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ सुजाता फिल्म से, जो बचपन की याद दिलाता है। बचपन दोस्तों वाकई में ही गुजर जाता है, वो लम्हे, और बड़े होने तक हमें वो बातें याद आती रहती हैं।

0: याद कभी कभी।
1: और अब कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ आया सावन झूम के इस फिल्म से ये गीत।

जाने का तो दोस्तों किसी का भी मन नहीं करता, लेकिन जाना तो पड़ेगा इस कार्यक्रम को खत्म करके। और इसके साथ ही अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और

0: क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र बांटने का काम अभी चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 13,000 से ज्यादा बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन और अपडेट करने के लिए पहले से छपे हुए गणना प्रपत्र की दो प्रतियां देंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भी भर सकते हैं। सरकार ने बैट बीएमएस ईपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और गूगल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इस एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से हॉकर 800A विमान की नीलामी की है। विमान को 3 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। निदेशालय ने एक बयान में बताया कि इस विमान को पिछले वर्ष 7 मार्च को तलाशी अभियान में जब्त किया गया था। ईडी की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान को जब्त किया था। जांच में 792 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना मिली है। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल वास्तविक निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakhs passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Mr. Modi will also hand over appointment letters to around 54

दोस्तों, जब भी मैं ये प्रार्थना सुनती हूँ तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी वो कविता याद आ जाती है, आत्मत्राण, जिसमें कवि ने कहा है, विपदाओं से

मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो कितनी अच्छी कविता की पंक्तियां हैं और इस गीत में भी, इस रचना में भी हमें सुनने को मिलती हैं कि हमें शक्ति देना दाता। इंसान तो दोस्तों काम करता ही रहता है, लेकिन उस काम में हिम्मत वो दे दे तो शक्ति बढ़ जाती है, यानी काम करने में मन दोगुना हो जाता है।

दोस्तों सच बात है, ये तो इंसान के बनाए हुए नियम हैं। भगवान तो हमें विवेक से भेजते हैं, हमारी बुद्धि यहाँ आकर इस दुनिया में कैसी हो जाती है ये हम पर निर्भर करता है, और हमारी बुद्धि सही रहनी चाहिए।

दोस्तों, हम भी तो यही चाहते हैं कि आराधना सबकी सफल होनी चाहिए। आराधना फिल्म से ये गीत आपने सुना, सचिन देव बर्मन का गाया हुआ था। आनंद बख्शी ने गीत को रचा था और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान अपने व्यवहार से ही अपने आप को बता देता है कि वह कैसा है, और उसके बातचीत करने का ढंग या हाव भाव हम पर कैसा असर छोड़ते हैं, ये सब पता चल जाता है।